0: ইংৰাজী বাতৰি দিল্লী কেন্দ্ৰৰ পৰা ৰিলে কৰি শুনোৱা হ'ব।
1: নমস্কাৰ, আকাশবাণী সমাচাৰ কে সাথ মই বৈষ্ণৱী। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन आज सिंगापुर में होगा। सम्मेलन के इस चौथे संस्करण में भारत की ओर से वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा वाणिज्य उद्योग इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद भाग ले रहे हैं। इस बीच विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कल सिंगापुर पहुंचने पर सिंगापुर के विदेश मंत्री विवियन बालकृष्ण के साथ द्विपक्षीय बैठक की। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिनमें 4 रेलवे परियोजनाएं और 1 राजमार्ग परियोजना शामिल है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने 13,041 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं को मंजूरी दी है। गृहमंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के महाबलीपुरम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप शामिल है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। दोनों नेता मेक इन इंडिया ढांचे के अंतर्गत समुद्री रक्षा सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने तथा रक्षा उपकरणों और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में घनिष्ठ सहयोग पर विचार विमर्श करेंगे। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने आर्मेनिया की अपनी 2 दिन की यात्रा संपन्न कर ली है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बातचीत में रक्षा और सैन्य तकनीकी सहयोग के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई। दिल्ली में जारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान SIR के अंतर्गत आवेदन जमा करने की समय सीमा 24 अगस्त तक बढ़ा दी है। प्रारूप मतदाता सूची 31 अगस्त को प्रकाशित की जाएगी। दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की आखिरी तारीख 30 सितंबर है। आपत्तियों के समाधान की प्रक्रिया 31 अक्टूबर तक पूरी कर ली जाएगी और 4 नवंबर को अंतिम मतदान सूची प्रकाशित की जाएगी। शिक्षा मंत्रालय ने युवा संगम के 7वें चरण के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा 31 अगस्त तक बढ़ा दी है। 18 से 30 वर्ष के युवा, जिनमें उच्च शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थी, NSS वॉलंटियर और युवा पेशेवर शामिल हैं, युवा संगम के आधिकारिक पोर्टल पर पंजीकरण करा सकते हैं। राजस्व आसूचना निदेशालय ने लखनऊ में हाथी दांत की कलाकृतियों के गैर कानूनी व्यापार में शामिल एक वन्यजीव तस्करी गिरोह का पर्दाफाश किया है। छापेमारी में जब्त 54 नक्काशीदार चीजें, जिसमें बैल, हाथी जैसे जानवरों की मूर्तियां शामिल हैं। गिरफ्तार 4 लोगों को आगे की जांच के लिए उत्तर प्रदेश वन विभाग को सौंप दिया गया है। बांग्लादेश में 35 साल के लंबे अंतराल के बाद राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव आज दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक संसद में होगा। इसमें सत्ताधारी दल के सांसद BNP नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर और 11 पार्टियों के विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार कर्नल ओली अहमद के बीच मुकाबला होगा। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति कल शाम बंग भवन के दरबार हॉल में बांग्लादेश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे। इंडिया डे फेस्टिवल आज मॉस्को में शुरू हो रहा है। 4 दिन चलने वाले इस महोत्सव में भारत और रूस के लोगों को आपसी संस्कृति और परंपराओं को देखने का अवसर मिलेगा। संस्कृतियों की एकता, लोगों की मित्रता थीम पर आयोजित ये फेस्टिवल मॉस्को की गोस्तनी द्वोर में आयोजित किया जाएगा। और अब खेल खबरें। BWF बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में महिला सिंगल्स में PV सिंधु का मुकाबला चीन के खिलाड़ी से होगा। पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी और इंडोनेशिया के अलवी फरहान आमने सामने होंगे। वहीं पुरुष डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी चुनौती पेश करेंगे। महिला डबल्स में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद का मुकाबला जापान की जोड़ी से होगा। मिक्स डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो चीन की जोड़ी से खेलेंगी। उधर नीदरलैंड्स के अम्स्टरडैम में FIH हॉकी विश्व कप के पूल डी के मैच में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हरा दिया है। इसके अलावा श्रीलंका के गोल में भारत ने 2 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका को भी 165 रन से मात दी है। भारत ने श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में

0: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के 8 जिलों को कवर करने वाली रेलवे की 4

0: मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 22 के मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सोनबरसा खंड को 4 लेन बनाने को भी स्वीकृति दी। गृह मंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के कोवलम में दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन का 4th दौर आज सिंगापुर में आयोजित किया जाएगा। बांग्लादेश में आज नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान के खिलाफ आर्थिक युद्ध की घोषणा। ईरान की मदद करने वाले देशों को दी बुरे आर्थिक नतीजे भुगतने की धमकी। और FIH हॉकी विश्व कप में पूल डी के अपने अंतिम मैच में भारतीय महिला टीम आज शाम एक्सल्टफेन में इंग्लैंड से खेलेगी। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के 8 जिलों को कवर करने वाली 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिससे भारतीय रेल के वर्तमान नेटवर्क में लगभग 410 किलोमीटर की वृद्धि होगी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इन परियोजनाओं की लागत 9,450 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है और इन्हें 2030-31 तक पूरा करने का लक्ष्य है।
1: 5 बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं। और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का 3rd एंड 4th लाइन। और 5वां प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा तक ये 4 लेन हाईवे बनाने का। टोटल 13,041 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट्स कैबिनेट ने अप्रूव किए।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 22 के मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सोनबरसा खंड को 4 लेन वाले मानक राजमार्ग में अपग्रेड करने को भी मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित परियोजना बिहार के बढ़ते राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क से जुड़ने के कारण रणनीतिक और आर्थिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है।
1: ये प्रोजेक्ट नेपाल के बॉर्डर से लेके स्टार्ट होता है। 83 किलोमीटर का ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट है। एग्जिस्टिंग लाइन को अपग्रेड किया जाएगा 4 लेन हाईवे में और 3,591 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट इसमें होगा। कई मेजर टूरिज्म के स्पॉट्स हैं, प्लस एक तरीके से ये सारा इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है।
0: गृह मंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के कोवलम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप शामिल हैं। बैठक में दक्षिणी क्षेत्र के सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और प्रशासक तथा प्रत्येक राज्य से 2 वरिष्ठ मंत्री उपस्थित रहेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इस बैठक से द्विपक्षीय रक्षा संबंध और मजबूत होंगे, रणनीतिक भरोसा और सहयोग बढ़ेगा तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा। दोनों देश समुद्री सुरक्षा में गहरे सहयोग और मेक इन इंडिया फ्रेमवर्क के तहत रक्षा उपकरणों और तकनीक के क्षेत्र में करीबी सहयोग पर विचार विमर्श करेंगे। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने आर्मेनिया की अपनी 2 दिन की यात्रा पूरी कर ली है। यात्रा के दौरान उन्होंने आर्मेनिया के उप रक्षा मंत्री करेन ब्रुटियान और जनरल स्टाफ प्रमुख एडवर्ड अस्रियान के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बातचीत में रक्षा और सैन्य तकनीक सहयोग के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन का 4th संस्करण आज सिंगापुर में आयोजित किया जाएगा। ये सम्मेलन नए और उभरते क्षेत्रों सहित सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है। एक रिपोर्ट।
2: सम्मेलन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा वाणिज्य उद्योग इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद भाग ले रहे हैं। इसकी पहली बैठक सितंबर 2022 में नई दिल्ली में हुई थी। इसके बाद दूसरी बैठक अगस्त 2024 में सिंगापुर में और तीसरी बैठक अगस्त 2025 में नई दिल्ली में हुई। इन बैठकों में

0: उन्नत विनिर्माण, डिजिटलीकरण, स्वास्थ्य सेवा और चिकित्सा, कौशल विकास तथा स्थिरता पर हुई चर्चाओं से भारत सिंगापुर व्यापक रणनीतिक साझेदारी की रूपरेखा तैयार हुई। इसे पिछले वर्ष सितंबर में सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग की भारत यात्रा के दौरान लागू किया गया था। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यह सम्मेलन दोनों पक्षों के बीच जारी पहलों की प्रगति की समीक्षा करने और आपसी सहयोग को और मजबूत करने के अवसर प्रदान करेगा। इसके साथ ही भारत सिंगापुर व्यापारिक गोलमेज सम्मेलन का चौथा संस्करण भी आयोजित किया जाएगा। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तत्काल सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया है। भारत ने कहा है कि परिषद की संरचना और निर्णय लेने की प्रक्रिया वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों के अनुरूप होनी चाहिए और इसमें विकासशील देशों को अधिक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। परिषद में कार्यप्रणाली पर चर्चा में संयुक्त राष्ट्र में भारत की प्रतिनिधि योजना पटेल ने कहा कि सुधारों की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक आवश्यक है। उन्होंने स्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार की सदस्यता में विस्तार और विकासशील देशों के लिए अधिक प्रतिनिधित्व की भारत की मांग दोहराई।
2: सुरक्षा परिषद में सुधारों पर भारत का रुख स्पष्ट रूप से ज्ञात है। हम ग्लोबल साउथ के लिए अधिक प्रतिनिधित्व के साथ दोनों श्रेणियों में विस्तार चाहते हैं। इसे केवल स्पष्ट रूप से परिभाषित बिंदुओं और वार्ताओं के माध्यम से ही हासिल किया जा सकता है।
1: उन्होंने कहा कि वर्ष 1945 के बाद से संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। इंडिया डे फेस्टिवल आज मॉस्को में शुरू हो रहा है। चार दिवसीय इस फेस्टिवल में भारतीय और रूसी समुदायों को संस्कृति, परंपराओं और लोगों के बीच आपसी संबंधों का जश्न देखने को मिलेगा। एक रिपोर्ट।
3: यह फेस्टिवल मॉस्को के गोस्टिनी द्वोर में आयोजित किया जाएगा। संस्कृतियों की एकता, लोगों की दोस्ती थीम पर आयोजित इस फेस्टिवल में कई जगह पर अलग अलग तरह के कार्यक्रम होंगे। यहाँ बने लगभग 20 खास जोन में आने वाले लोगों को भारतीय संस्कृति के अलग अलग पहलुओं जैसे योग, शतरंज, भारतीय शादियाँ, नृत्य, भारतीय व्यंजन और आयुर्वेद को जानने समझने का मौका मिलेगा। इस फेस्टिवल में पूरे रूस से लगभग 75 योग स्कूल और दूसरे देशों के इंस्ट्रक्टर भी शामिल होंगे। भारतीय नृत्य की विविधता और कलात्मक परंपराओं को दिखाने वाले कार्यक्रमों में 200 से ज्यादा भारतीय और रूसी डांसर भी हिस्सा लेंगे। समाचार कक्ष से विकास नापा।
1: बांग्लादेश में 35 साल के लंबे अंतराल के बाद राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक संसद में मतदान होगा। सत्ताधारी दल के सांसद बीएनपी के नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर का मुकाबला 11 पार्टियों के विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार कर्नल ओली अहमद के बीच होगा। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति कल शाम बंग भवन के दरबार हॉल में बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ नए आर्थिक युद्ध की घोषणा की है। ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान को अमेरिका के साथ समझौता करने के कई अवसर दिए गए लेकिन वो विफल रहा। एक रिपोर्ट।
4: ट्रंप ने ईरान की मदद करने वाले किसी भी देश को आर्थिक प्रतिबंध लगाने की धमकी भी दी है। उन्होंने चेतावनी दी है कि कोई भी देश जो अपने वित्तीय संस्थानों, व्यवसायों, हवाई अड्डों या सरकारी एजेंसियों को ईरान को समर्थन देने की अनुमति देता है उसे भी भारी आर्थिक परिणामों का सामना करना पड़ेगा। साथ ही अपनी चेतावनी को दोहराया कि ईरान को कभी भी परमाणु हथियार हासिल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ट्रंप ने कहा कि बातचीत भविष्य में फिर से शुरू हो सकती है लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि तेहरान को पहले समझौता करने के लिए तैयार होना होगा। इस बीच ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बगीर गालिबफ ने कहा ईरान होर्मुज जलडमरू मध्य को तब तक नहीं खोलेगा जब तक अमेरिका 14 सूत्री ज्ञापन के तहत अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं कर लेता। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
1: और अब खेल खबरों के साथ है मुकेश कुमार बल।
5: जी विशाल, खेल खबरों में शुरुआत करते हैं हॉकी से। FIH विश्व कप के पूल डी के अपने अंतिम मैच में भारतीय महिला टीम का सामना आज इंग्लैंड से होगा। ये मैच एम्स्टलवीन के वैगनर स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 6:30 बजे से शुरू होगा। दूसरी ओर भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कल अपने अंतिम ग्रुप मैच में चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को 5-3 से हराकर अगले दौर के लिए क्वालिफाई कर लिया है। हरमनप्रीत सिंह और हार्दिक सिंह ने 2-2 गोल किए जबकि अभिषेक ने 1 गोल दागा। और विशाल, अगर बात करें बैडमिंटन की तो BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में महिला सिंगल्स में PV सिंधु का मुकाबला चीन की खिलाड़ी से होगा। पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी और इंडोनेशिया के अलवी फरहान आमने सामने होंगे। वहीं पुरुष डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी चुनौती पेश करेंगे। महिला डबल्स में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद का मुकाबला जापान की जोड़ी से होगा। अगर बात की जाए मिक्स्ड डबल्स में तो ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो चीन

0: जोड़ी से खेलेंगे। और अब ले चलते हैं अपने श्रोताओं को क्रिकेट के मैदान की तरफ। तो श्रीलंका के गोल में भारत ने दो मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका को 165 रन से हराया है। भारत ने श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। तो विशाल, ये थी अब तक की कुछ महत्वपूर्ण खेल खबरें।
1: और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तेज बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्रों और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में कल तक तेज बारिश का अनुमान है। ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तरी ओडिशा के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है।
2: उत्तरी ओडिशा के कई इलाकों में बाढ़ का पानी गंभीर समस्या बना हुआ है। पानी का स्तर अभी भी ऊंचा है और धीरे धीरे कम हो रहा है, जिससे कई लोग फंसे हुए हैं। बालेश्वर जिले में बालियापाल सबसे बुरी तरह प्रभावित इलाकों में से एक है, जहां खबर है कि 45,000 से ज्यादा लोग अभी भी फंसे हुए हैं। भद्रक जिले में स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद है। सुवर्णरेखा नदी का जलस्तर भी बढ़ रहा है। राजघाट पर आज सुबह 6 बजे नदी 11.80 मीटर के स्तर पर बह रही थी, जबकि खतरे का निशान 10.36 मीटर है। सुवर्ण रेखा की बाढ़ से लगभग 2,80,000 लोग प्रभावित हुए हैं। IMD ने इस शनिवार से फिर बारिश का अनुमान जताया है और मयूरभंज, केंदुझर और सुंदरगढ़ जिलों के लिए येलो वार्निंग जारी की है, जिससे और ज्यादा बाढ़ आने की चिंता बढ़ गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: इस बीच राष्ट्रीय राजधानी के कई हिस्सों में बारिश से गर्मी से राहत मिली है। मौसम सुहावना हो गया है। कई इलाकों में कल रात से बारिश हो रही है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
3: धन्यवाद विशाल। जम्मू कश्मीर भारत का महत्वपूर्ण अंग। भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर का ये बयान आज की सभी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। दैनिक जागरण के अनुसार जम्मू कश्मीर के अपने पहले दौरे में सर्जियो गोर ने कश्मीर को लेकर अमेरिकी रुख में बड़े बदलाव का दिया संकेत। कहा, जम्मू कश्मीर के लिए यात्रा परामर्श की करेंगे समीक्षा। भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी के खिलाफ छात्र आंदोलन के बीच झारखंड सरकार की बड़ी कार्रवाई दैनिक भास्कर में है। 22 भर्ती परीक्षा रद्द, CID को सौंपी गई जांच। UPSC जैसा सिस्टम क्यों नहीं बनाते, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA से सुप्रीम कोर्ट का ये सवाल नवभारत टाइम्स में है। जेंजी को साधने की मोर्चाबंदी तेज, अमर उजाला लिखता है, भारतीय जनता पार्टी ने विश्वविद्यालयों में युवाओं से संवाद का जिम्मा केंद्रीय मंत्रियों को सौंपा। नए सिम कार्ड के लिए नए नियम सख्त, हिंदुस्तान लिखता है, साइबर धोखाधड़ी और डिजिटल अरेस्ट रोकने के लिए सरकार ने नए CM जारी करने की प्रक्रिया और कठोर की। और डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म के जरिए तय समय सीमा से अधिक मोबाइल कनेक्शन रखने वाले ग्राहकों की जाएगी पहचान।
1: धन्यवाद वैष्णवी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के 8 जिलों को कवर करने वाली रेलवे की 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 22 के मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, सोनबरसा खंड को 4 लेन बनाने को भी स्वीकृति दी। गृह मंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के कोवलम में दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन का चौथा दौर आज सिंगापुर में आयोजित किया जाएगा। बांग्लादेश में आज नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान होगा। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान के खिलाफ आर्थिक युद्ध की घोषणा। और FIH हॉकी विश्व कप में पूल डी के अपने अंतिम मैच में भारतीय महिला टीम आज शाम एम्स्टर्डम में इंग्लैंड से खेलेगी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। The headlines. Union Cabinet approves 4 multi-tracking railway projects covering 8 districts of West Bengal, Odisha, Tamil Nadu and Andhra Pradesh. Cabinet also clears 4 laning of Muzaffarpur, Sitamarhi, Sonbarsa section of NH-22 in Bihar. Union Home Minister Amit Shah to chair Southern Zonal Council meeting at Kovalam in Tamil Nadu this morning. 4th round of India-Singapore Ministerial Roundtable to be held in Singapore today. Bangladesh to go to polls today to elect a new president. US President Donald Trump declares economic warfare against Iran, threatens economic punishment for any country helping Tehran. and

Pregunta.

0: এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ খন্তেক পাছতে হিন্দী বাতৰি, 12:05 ইংৰাজী বাতৰি আৰু 12:10 পৰা সৈন্য বাহিনীৰ উদ্দেশ্যে প্ৰচাৰিত অনুষ্ঠানসমূহ শুনিবলৈ পাব।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत और जापान के रक्षा मंत्रियों की बैठक इस समय नई दिल्ली में चल रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापान के रक्षा मंत्री शिंजोरो कोइजुमी बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में दोनों देशों के रक्षा संबंधों को और मजबूत करने तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बढ़ाने पर चर्चा हो रही है। दोनों मंत्री समुद्री सुरक्षा और रक्षा उपकरणों तथा तकनीक के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी विचार करेंगे। दोनों मंत्री समुद्री सुरक्षा में सहयोग बढ़ाने और मेक इन इंडिया के तहत रक्षा उपकरणों तथा तकनीक के क्षेत्र में साझेदारी मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। इससे पहले आज सुबह जापान के रक्षा मंत्री ने राष्ट्रीय समर स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। जापान के रक्षा मंत्री ने कल मुंबई में पश्चिमी नौसेना कमान का दौरा किया। श्री कोइजुमी ने नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन और पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन के साथ बातचीत की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज सिंगापुर में वहां के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग से मुलाकात की। बैठक में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद भी उपस्थित थे। वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक साझेदारी के रोडमैप के क्रियान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा की और आर्थिक सहयोग, डिजिटलीकरण, संपर्क, कौशल विकास और स्थिरता सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ब्रिक्स अध्यक्षता को जन केंद्रित बनाने और मानवता सर्वोपरि की भावना के साथ आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री यादव ने एक अंग्रेजी दैनिक में प्रकाशित अपने लेख को सोशल मीडिया पोस्ट में साझा किया। उन्होंने कहा कि भारत मिशन लाइफ के सिद्धांतों पर आधारित सतत जीवन शैली को बढ़ावा देने के साथ साथ वनीकरण, जंगलों में आग की रोकथाम, आपदा से निपटने की क्षमता और पारंपरिक ज्ञान पर आधारित जन केंद्रित जलवायु अनुकूलन पर बल दे रहा है। गृहमंत्री अमित शाह चेन्नई के कोवलम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में अंतर्राज्यीय सहयोग, आर्थिक विकास, औद्योगिक निवेश, साझेदारी को मजबूत करना, अवसंरचना विकास, जल संसाधन बंटवारा, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, सूचना प्रौद्योगिकी, आपदा प्रबंधन, अपराध रोकथाम और सीमा विवाद जैसे विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। भारत ने काबुल के एक सरकारी अस्पताल को दवाइयां और चिकित्सा सामग्री भेजी हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह सहायता अफगानिस्तान के लोगों की स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका उद्देश्य अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ ने नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 68 लाख रुपए से अधिक की बेहिसाब नकदी बरामद की है। सीआईएसएफ ने बताया कि संदेह होने पर दो यात्रियों की विस्तृत जांच की गई। दोनों यात्री गुवाहाटी और फिर आगे अगरतला जा रहे थे। उनके सामान की विस्तृत जांच के दौरान उनसे कुल 68,53,000 रुपए बरामद हुए। सीआईएसएफ ने बताया कि यात्रियों नकदी और संबंधित यात्रा दस्तावेजों को कार्रवाई के लिए आयकर अधिकारियों को सौंप दिया गया है। रूस ने कल रात यूक्रेन की राजधानी कीव पर मिसाइलों से हमला किया। इसमें 6 लोग मारे गए और 33 घायल हुए। यह हमला ऐसे समय हुआ है जब रूस कीव पर बैलिस्टिक मिसाइल हमलों को तेज कर रहा है, जिससे यूक्रेन की सीमित हवाई रक्षा क्षमताओं पर और दबाव बढ़ रहा है। इस बीच यूक्रेन ने रूस के भीतर स्थित सैन्य और रणनीतिक ठिकानों पर लंबी दूरी के हमलों को तेज कर दिया है। एफआईएच हॉकी विश्व कप के पूल डी के अपने अंतिम मैच में भारतीय महिला टीम आज इंग्लैंड से खेलेगी। ये मैच एम्स्टर्डम के वैगनर स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 6:30 बजे से शुरू होगा। एंटिका सिंगापुर इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन में मोहित जागलान और लक्षिता जागलान की जोड़ी वॉकओवर मिलने के बाद

0: In the round of 16 in women's doubles, the Indian pair of Teresa Jolly and Gayatri Gopichand will face 7 seeds Rin Iwanaga and Kie Nakanishi of Japan. In mixed doubles, Dhruv Kapila and Tanisha Krasto will take on China's Kuo Shenhua and Chen Fanghui. And with that, we end this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्रागज्योतिषपुर है। मीडियम वेव 289.9 मीटर और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलो हर्ट्ज पर। दिन के 12:10 हुए हैं और अब हम आरंभ करते हैं सैनिक भाइयों के लिए आज का प्रसारण।

सैनिक भाई, आज के इस प्रसारण में हाजिर हूँ मैं ब्रजभुवन प्रसाद, आपके लिए ढेर सारे गीत और संगीत लेकर। लेकिन कार्यक्रम का आगाज करने से पहले प्रस्तुत है इसकी संक्षिप्त रूपरेखा।

अब से थोड़ी देर में सुनेंगे आज के प्रसारण का पहला कार्यक्रम फिल्म संगीत। 12:30 बजे हम आपको सुनवाएंगे दैनिक कार्यक्रम आज का गीत।

12:38 पर पेश किया जाएगा कार्यक्रम राग रंग, और 1:05 पर रिले होगा अंग्रेजी में समाचार।

समाचार के तुरंत बाद हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे लेकर कार्यक्रम स्वर छाया। समय होगा 1:10 और 1:40 से आप सुनेंगे कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत।

दिन के 2 बजे से बारी बारी से रिले किया जाएगा अंग्रेजी और हिंदी में समाचार। और आज के प्रसारण का आखिरी कार्यक्रम होगा गीत रंगीले, जिसे आप सुनेंगे दिन के 2:30 बजे से। और इसके साथ ही आज के प्रसारण का समापन होगा दिन के

3 बजे। तो ये थी आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। और आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत का ये पहला गाना, जिसे हमने लिया है फिल्म आर्यन से, आवाज आनंदराज आनंद की।

सैनिक भाई, अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत, जिसे प्रसारित किया जा रहा है आकाशवाणी गुवाहाटी के प्रागज्योतिषपुर से। मीडियम वेव 289.9 मीटर और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज पर। और आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म आंखियों से गोली मारे से। आवाजें हैं सोनू निगम, अलका याग्निक और संजीवनी की।

कार्यक्रम का आखिरी गीत सुनिए, अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाजों में। फिल्म का नाम है अलबेला।

ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्राग्ज्योतिषपुर है। मीडियम वेव 289.9 मीटर और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर। और अब सुनिए दैनिक कार्यक्रम आज का गीत। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं मैं खिलाड़ी तू अनारी फिल्म का गीत। आवाजें हैं कुमार शानू और अलका याग्निक की। गीत के बोल लिखे हैं रानी मलिक ने और संगीत है अनु मलिक का।

सैनिक भाई, हमारा अगला कार्यक्रम है राग रंग, लेकिन यह कार्यक्रम शुरू करने से पहले आइए डालते हैं कल के कार्यक्रमों पर एक नजर। कल शुक्रवार है और हर रोज की तरह हमारा कार्यक्रम शुरू होगा 12:10 पर। 12:12 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। 12:30 हम आपको सुनवाएंगे दैनिक कार्यक्रम आज के गीत और 12:38 पर पेश किया जाएगा भक्ति मूलक गीतों पर आधारित कार्यक्रम बंदगी के गीत और भजन। 1:05 पर रिले किए जाएंगे अंग्रेजी में समाचार।

1:10 का समय होगा कार्यक्रम सब रंग का, और 1:40 से हम आपको सुनवाएंगे गजलों का कार्यक्रम तरन्नम। दिन के 2 बजे से बारी बारी से रिले किया जाएगा अंग्रेजी और हिंदी में समाचार, और 2:30 बजे से आप सुनेंगे आखिरी कार्यक्रम गीतिका। और इस कार्यक्रम के साथ ही कल के प्रसारण का समापन होगा दिन के 3 बजे। तो ये थी कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की अग्रिम जानकारी, और आइए अब आपको सुनवाते हैं राग रंग। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं संगीत निर्देशक कल्याण जी आनंद जी द्वारा संगीतबद्ध किए गए कुछ गाने। इसमें सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं गीत फिल्म का यह गीत, जिसे गाया है मोहम्मद रफी ने।

सैनिक भाई, अभी आप सुन रहे हैं कल्याण जी आनंद जी के खूबसूरत संगीत को। कार्यक्रम है राग रंग। अगला गीत सुनिए, किशोर कुमार की आवाज़ में। फिल्म का नाम है सफ़र।

ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्रागज्योतिषपुर है। मीडियम वेव 289.9 मीटर और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर। सैनिक भाई, अब से हमारा यह कार्यक्रम आप आकाशवाणी के डिब्रूगढ़ केंद्र से भी सुन सकते हैं 529.1 मीटर पर।

सनक भाई, भारतीय संस्कृति में कुछ चीजें ऐसी हैं जो सिर्फ आभूषण नहीं बल्कि भावनाओं का प्रतीक होती हैं। ऐसी ही एक चीज है पायल। पैरों में बंधी यह छोटी सी डोरी जब छनकती है तो दिल के तार अपने आप झंकृत हो उठते हैं। कभी यह किसी के आने की आहट बनती है तो कभी किसी के जाने की जुदाई का पैगाम। हमारे हिंदी सिनेमा के गीतकारों ने भी इस नन्ही सी पायल के छनकार में न जाने कितने अफसाने बुने हैं। तो चलिए आज स्वर छाया की सुरीले महफिल में सुनते हैं पायल पर रचे के कुछ ऐसे नगमे जिन्होंने दशकों से हमारे दिलों पर राज किया है।

पायल की खनक सिर्फ संगीत ही नहीं रचती, यह तो किसी प्रेमी के दिल की धड़कन बयां करती है। जब नायक अपने प्रेयसी के कदमों की आहट का इंतजार करता है तो हवा में तैरती हुई पायल की आवाज ही उसके जीने की वजह बन जाती है।

जब हम हिंदी फिल्मों में गाने की बात करते हैं तो पायल सिर्फ एक गहना नहीं बल्कि मोहब्बत का सबसे बड़ा गवाह बनकर उभरती है। ढोलक की ताल और पायल के छनकार जब मेल खा जाए तो यह न केवल कानों को बल्कि दिल को भी सुकून देता है।

जब भी पायल की बात होती है तो पैर अपने आप थिरकने लगते हैं, यही तो तासीर है हमारे हिंदी गानों की। सैनिक भाइयों, पायल का एक रंग और भी है, इंतजार और जुदाई का रंग। जब कोई अपना दूर चला जाता है तो उसके पायल के खनक घर के सन्नाटों में गूंजती रहती है।

पायल की यही खासियत है कि यह खुशी में भी झूमती है और खामोशी में रोती है। अक्सर अपनी व्यस्तता में पैरों की पायल की आवाज़ को हम भूल जाते हैं, जबकि इसे भूलने की नहीं बल्कि महसूस करने की ज़रूरत है।

ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्रगतिसपुर है। मीडियम वेव 289.9 मीटर और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर। और अब हम हाजिर हैं लेकर कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत। तो आइए इस कार्यक्रम में सबसे पहले आपको सुनवाते हैं मनहर उदास की आवाज में गुजराती गजल।

0: of the FIH Hockey World Cup at Wagener Stadium in Amstelveen. The match will begin at 6:30 p.m. IST. And now before we end the bulletin, the headlines once again. India and Japan agree to deepen defence partnership, sign memorandum of arrangement on maritime security cooperation. Home Minister Amit Shah chairs 31st Southern Zonal Council meeting in Kovalam, Tamil Nadu to discuss interstate disputes, security and development issues. India-Singapore Ministerial Roundtable takes place in Singapore to strengthen bilateral cooperation in strategic areas including semiconductor and cyber security. Bangladesh to vote for the first time to elect its president today after a gap of 35 years. And Teresa Jolly and Gayatri Gopichand enter women's doubles quarterfinals of BWF World Championships. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता भारत और जापान के बीच रक्षा साझेदारी को और मजबूत करने पर सहमति समुद्री सुरक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में तमिलनाडु के कोवलम में 31वीं दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में महत्वपूर्ण अंतर्राज्यीय विवादों सुरक्षा और विकास के मुद्दों पर चर्चा भारत सिंगापुर मंत्रिस्तरीय गोलमेज बैठक में सेमीकंडक्टर और साइबर सुरक्षा सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श बांग्लादेश में 35 वर्ष के अंतराल के बाद राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान जारी और त्रिशा जौली तथा गायत्री गोपीचंद BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला डबल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची अब समाचार विस्तार से भारत और जापान के रक्षा मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में हुई रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमे ने बैठक की अध्यक्षता की बैठक में समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने मेक इन इंडिया के तहत रक्षा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने और रणनीतिक विश्वास बढ़ाने पर चर्चा हुई दोनों मंत्रियों ने समुद्री सुरक्षा सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्री कोइजुमे और उनके प्रतिनिधिमंडल का भारत में स्वागत किया उन्होंने जापान के कुमामोतो क्षेत्र में आए भीषण भूकंप के बाद भारत की ओर से संवेदना और एकजुटता व्यक्त की
2: हम यह दोहराते हैं कि कठिन समय में भारत किसी भी जरूरी असिस्टेंस रिलीफ और सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित है हमारे दोनों देशों के संबंध साझे लोकतांत्रिक मूल्यों परस्पर सम्मान और एक पुराने सिविलाइज्ड कनेक्ट पर आधारित है अगले वर्ष हम अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस के 75 ईयर्स मनाएंगे और इन वर्षों के दौरान हमारी यह दोस्ती सिर्फ हमारे दोनों देशों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्टेबिलिटी रेजिलियंस और रूल्स बेस्ड ऑर्डर का एक कॉर्नर स्टोन बन गई है
1: श्री सिंह ने कहा कि एशिया के दो प्रमुख लोकतंत्र होने के नाते भारत और जापान पर शांति स्थिरता और समृद्धि सुनिश्चित करने की बड़ी जिम्मेदारी है
2: हमारी मैरीटाइम लाइफलाइंस बढ़ती हुई वल्नरेबिलिटीज का सामना कर रही हैं फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ओवरफ्लाइट और अनहिंडर्ड लॉफुल कॉमर्स को सुनिश्चित करना सिर्फ इकोनॉमिक नेसेसिटी नहीं है बल्कि यह एक स्ट्रेटेजिक इम्परेटिव भी है इंडियन ओशन और पब्लिक ओशन की सुरक्षा आपस में गहरे रूप से जुड़ी हुई है इसलिए इंडिया के महासागर विजन यानी म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन और जापान के फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक इनिशिएटिव के बीच क्लोज अलाइनमेंट आज पहले से भी कहीं ज्यादा जरूरी है
1: श्री कोइजुमे ने कुमामोतो में भूकंप से प्रभावित लोगों के प्रति भारत की संवेदना पर आभार व्यक्त किया उन्होंने जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के एक जहाज में चिकित्सा आपात स्थिति के दौरान भारतीय नौसेना द्वारा दी गई सहायता की भी सराहना की उन्होंने कहा कि ये दोनों देशों के बीच सहयोग का प्रतीक है जहां मुश्किल समय में दोनों देश एक दूसरे की मदद कर सकते हैं दोनों नेताओं ने समुद्री संचार मार्गों की सुरक्षा के लिए दोनों देशों के बीच समन्वय मजबूत करने पर सहमति जताई इससे पहले आज सुबह जापान के रक्षा मंत्री ने राष्ट्रीय समर स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 31वीं दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक तमिलनाडु के कोवलम में शुरू हो गई है बैठक में दक्षिणी राज्यों के नेता और वरिष्ठ अधिकारी अंतर्राज्यीय विवादों सुरक्षा और विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं बैठक में महिलाओं और बच्चों के साथ दुष्कर्म

दुष्कर्म के मामलों की जल्द जांच और सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक विशेष अदालतें बनाने तथा शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हो रही है। इसके अलावा अंतर्राज्यीय सहयोग, आंतरिक सुरक्षा, आर्थिक विकास, औद्योगिक निवेश और स्वास्थ्य सेवाओं पर भी विचार विमर्श किया जा रहा है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ब्रिक्स अध्यक्षता को जन केंद्रित बनाने और मानवता सर्वोपरि की भावना के साथ आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री यादव ने एक अंग्रेजी दैनिक में प्रकाशित अपने लेख को सोशल मीडिया पोस्ट में साझा किया। उन्होंने कहा कि भारत मिशन लाइफ के सिद्धांतों पर आधारित सतत जीवन शैली को बढ़ावा देने के साथ साथ वनीकरण, जंगलों में आग की रोकथाम, आपदा से निपटने की क्षमता और पारंपरिक ज्ञान पर आधारित

0: सुरक्षित और गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। चौथी भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक आज सिंगापुर में हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य उद्योग इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने बैठक में हिस्सा लिया। एक रिपोर्ट।
1: बैठक में डिजिटल तकनीक, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संचालन और साइबर सुरक्षा जैसे रणनीतिक और उभरते क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की गई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक में उन्नत विनिर्माण, फिनटेक, डिजिटलीकरण, स्वास्थ्य और सतत विकास के क्षेत्रों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर बल दिया गया। डिजिटल कौशल विकास में सहयोग को नई गति देने पर भी चर्चा हुई। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक दोनों देशों के बीच नए और उभरते क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण मंच है। इसकी पहली बैठक सितंबर 2022 में नई दिल्ली में हुई थी, दूसरी बैठक अगस्त 2024 में सिंगापुर में और तीसरी बैठक अगस्त 2025 में नई दिल्ली में हुई थी। समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: भारत ने काबुल के एक सरकारी अस्पताल को दवाइयां और चिकित्सा सामग्री भेजी हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह सहायता अफगानिस्तान के लोगों की स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका उद्देश्य अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना है। भारत और नेपाल के बीच सीमा प्रबंधन पर चौथी संयुक्त कार्य समूह की बैठक आज उत्तराखंड के देहरादून में शुरू हुई। दो दिन की इस उच्च स्तरीय बैठक में सीमा सुरक्षा और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने तथा आपसी हित के अन्य मुद्दों पर ध्यान दिया जा रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कांग्रेस कार्य समिति के पूरा वंदे मातरम गाने के बजाय इसके केवल दो छंद गाने के फैसले की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि यह संसद से पारित कानून का खुला उल्लंघन है और राष्ट्र विरोधी है। संवाददाताओं से बातचीत में श्री शाह ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस एक बार फिर वोट बैंक की राजनीति के लिए तुष्टिकरण का रास्ता अपना रही है।
2: मैं देश की जनता को अपील करना चाहता हूं कि एक बार इस देश ने गलती करी थी वंदे मातरम के दो टुकड़े होने देने की, और एक गलती के गंभीर परिणाम हमने भुगते हैं। अब देश की जनता एकजुट हो और कांग्रेस पार्टी के इस फैसले के खिलाफ आवाज बुलंद करे कि अब इस देश में तुष्टिकरण की राजनीति नहीं चलेगी। आजादी के 80 साल के बाद 1937 में जो फैसला कांग्रेस ने किया था, जिसको नरेंद्र मोदी जी ने सुधारा है, उसके सामने का कोई विरोध इस देश की जनता नहीं सहन करेगी।
0: वंदे मातरम पर कांग्रेस कार्य समिति के प्रस्ताव को लेकर भारतीय जनता पार्टी द्वारा तुष्टिकरण की राजनीति करने का आरोप लगाए जाने के बाद कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी वर्ष 1937 से वंदे मातरम का गायन करती आ रही है। नई दिल्ली में श्री वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के लिए भावना का मामला है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीति का मुद्दा है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज पटना में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत बने 2,35,000 घरों की चाबियां लाभार्थियों को सौंपी। उन्होंने नए लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र भी वितरित किए। श्री चौहान आज पटना के बामेटी में आयोजित कृषि जनकल्याण संवाद में भी शामिल होंगे। वाणिज्य विभाग में अपर सचिव यशवीर सिंह ने कहा है कि भारत के निर्यात में प्रगति मुक्त व्यापार समझौतों के प्रभावी इस्तेमाल, विनिर्माण क्षेत्र में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं, आपूर्ति श्रृंखला को देश में ही विकसित करने और नए बाजारों तक पहुंच बनाने पर निर्भर करती है। उन्होंने ये बात भारतीय उद्योग विनिर्माण संघ के तीसरे सम्मेलन में कही। सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने आज नई दिल्ली में दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा के साथ एक पेड़ मां के नाम पहल के तहत पौधारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर श्री मल्होत्रा ने कहा कि दिल्ली में भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद से पर्यावरण संरक्षण सहित सभी क्षेत्रों में विकास कार्य में निरंतर प्रगति हो रही है।
3: हमारे पर्यावरण मंत्री सिरसा जी ने और रेखा जी ने मिलके दिल्ली के अंदर 70,00,000 पेड़ लगाने की मुहिम छेड़ी और बहुत अच्छा सिस्टम बनाया है। पोर्टल के माध्यम से दिल्ली में कोई भी व्यक्ति रजिस्ट्रेशन करवा करके उसके बाद दिल्ली सरकार उनको अप्रोच करेगी, उनको पेड़ देगी या उनको ऐसे

0: स्थान पर बुलाएगी जहां पर ग्रीन कवर बढ़ाने की बात है।
1: कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए एक पेड़ माँ के नाम अभियान को दिल्ली का अब तक का सबसे बड़ा अभियान बताया।
2: एक पेड़ माँ के नाम 2.0 जो देश के प्रधानमंत्री जी ने सेकंड मुहिम शुरू की है, इसमें अब तक 50 लाख पेड़ और पौधे लग चुके हैं। ये दिल्ली का अब तक का सबसे बड़ा अभियान है। पोर्टल के माध्यम से रजिस्टर करके अब तक 3.5 लाख पेड़ लगाए जा चुके हैं, जिसमें लगभग 1,58,000 पब्लिक के लोगों ने आकर साथ दिया। ऐसे अनेकों हमारे मुहिम चल रही है, हम दिल्ली के अंदर एक बड़ा प्रचार प्रसार इस पर्यावरण को बचाने के लिए कर रहे हैं।
1: जम्मू जिले के खेरी गांव में जमीन धंसने से करीब 12 मकानों को नुकसान पहुंचा है। इनमें 2 मकानों को काफी नुकसान हुआ है। कृषि भूमि और 1 सड़क भी प्रभावित हुई है। राजस्व तथा पुलिस की टीमों ने मौके का जायजा लिया है और राहत और बचाव कार्य जारी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। बांग्लादेश में 35 साल के लंबे अंतराल के बाद राष्ट्रपति चुनाव के लिए जातीय संसद में मतदान हो रहा है। मतदान 5 बजे तक चलेगा। सत्ताधारी दल के सांसद बीएनपी के नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर का मुकाबला 11 पार्टियों के विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार कर्नल ओली अहमद से होगा। रूस ने कल रात यूक्रेन की राजधानी कीव पर मिसाइलों से हमला किया। इसमें 6 लोग मारे गए और 33 घायल हुए। यह हमला ऐसे समय हुआ है जब रूस कीव पर बैलिस्टिक मिसाइल हमलों को तेज कर रहा है, जिससे यूक्रेन की सीमित हवाई रक्षा क्षमताओं पर और दबाव बढ़ रहा है। और अब खेल खबरों के साथ हैं जागृति शर्मा।
3: नई दिल्ली में BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद महिला डबल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। भारतीय जोड़ी ने जापान की 7वीं वरीयता प्राप्त रिन इवानागा और की नाकानिशी को हराया। खेल के बाद मीडिया से बातचीत में गायत्री और त्रिशा ने कहा कि वे मैच के शुरुआती 2-3 अंकों में ही विपक्षी खिलाड़ियों की रणनीति समझ गई थी। उन्होंने बताया कि पहले गेम के दूसरे हिस्से में उन्होंने आक्रामक खेल अपनाया और यही रणनीति दूसरे गेम में भी जारी रखी, जिसका उन्हें फायदा मिला। सिंधु समेत भारत के कई प्रमुख खिलाड़ी आज अपने प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेलेंगे। सिंधु का सामना चीन की वांग झी यी से होगा। युवा खिलाड़ी आयुष शेट्टी का मुकाबला इंडोनेशिया के अलवी फरहान से होगा। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का सामना मलेशिया के जुनैदी आरिफ और रॉय किंग याप से होगा। वहीं मिक्स्ड डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो की जोड़ी चीन के गुओ शिन वा और चेन फांग हुई से खेलेगी। और हॉकी में FIH विश्व कप के पूल डी के अपने अंतिम मैच में भारतीय महिला टीम आज इंग्लैंड के साथ मुकाबला खेलेगी। ये मैच अम्स्टलफेन के वैगनर स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार शाम 6:30 बजे से शुरू होगा।
1: घरेलू शेयर बाजार सूचकांकों में आज दोपहर के कारोबार में तेजी बनी रही। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 668 अंक बढ़कर 77,577 जबकि निफ्टी 169 अंक की बढ़त के साथ 24,248 पर कारोबार कर रहा था। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम और पश्चिमी मध्य प्रदेश में अगले 2 दिन तक तेज वर्षा हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और जापान के बीच रक्षा साझेदारी को और मजबूत करने पर सहमति। समुद्री सुरक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। तमिलनाडु के कोवलम में गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 31वीं दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में अंतर्राज्यीय विवाद, सुरक्षा और विकास के मुद्दों पर चर्चा। भारत सिंगापुर मंत्रिस्तरीय गोलमेज बैठक में सेमीकंडक्टर और साइबर सुरक्षा सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श। बांग्लादेश में 35 वर्ष के अंतराल के बाद पहली बार राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान जारी। और त्रिशा जॉली तथा गायत्री गोपीचंद BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के महिला डबल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: समाचार के बाद एक बार फिर आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है।

ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्रागज्योतिषपुर है। मीडियम वेव 289.9 मीटर और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर।

तो आइए इस कार्यक्रम का आगाज करते हैं लता मंगेशकर के गाए इस गीत के साथ। फिल्म का नाम है हम आपके हैं कौन। गीत के बोल लिखे हैं देव कोहली ने और संगीत है राम लक्ष्मण का।

कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं अली सचिनाई की आवाज में। फिल्म का नाम है कलयुग। गीत के बोल लिखे हैं सईद कादरी ने और संगीत है अनु मलिक का।

और आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का आखिरी गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म रहना है तेरे दिल से, और आवाज़ बॉम्बे जयश्री की।

इस गीत के साथ ही गीत रंगीले कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है और समाप्त होता है सैनिक भाइयों के लिए आज का प्रसारण। कल 12:10 पर हम आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए ब्रजमोहन प्रसाद को दीजिए इजाजत। जय हिंद।

0: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: श्रोताओं नमस्कार, रेडियो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त पूजा शर्मा। दोस्तों, बारिश का मौसम यूं तो चिलचिलाती गर्मी से राहत पहुंचाता है, लेकिन इसके साथ ही कुछ ऐसी परेशानियां भी ले आता है जो इस मौसम में आती हैं, और आज हम ऐसी ही परेशानी के बारे में बात करेंगे। यानी हमारा आज का विषय है वेक्टर बोर्न डिजीजेस। क्या है ये रोग और क्या है इससे बचने के उपाय, बताएंगी हमारी आज की विशेषज्ञ डॉक्टर तनु जैन, जो हैं डायरेक्टर नेशनल सेंटर फॉर वेक्टर बोर्न डिजीजेस, DGHS, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। डॉक्टर तनु जैन, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम में।
2: थैंक यू वेरी मच।
1: और अगर आप भी इस विषय से जुड़े, आपके पास हैं कुछ सवाल, तो आप हमें करिए कॉल। और इस लाइव फोन इन प्रोग्राम में कॉल करने के लिए हमारे नंबर्स आप नोट कर लीजिए, जो है 0112342108023421082। और 2342102। आप हमें व्हाट्सएप से मैसेज भी कर सकते हैं, जिसके लिए हमारा नंबर है 9868107070। मैं नंबर एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, कॉल करने के लिए आप लगा सकते हैं 0112342108023421082। और 2342102। व्हाट्सएप से मैसेजेस करने के लिए नंबर नोट कर लीजिए 9868107070। डॉक्टर तनु, हमारा सबसे पहला सवाल है कि वेक्टर बोर्न डिजीज क्या है और इन रोगों के होने का कारण क्या होता है?
2: जी पूजा जी, जैसा कि आपने पहले ही कहा कि बारिश हो रही है, और बारिश होने से पहले और बारिश होने के बाद कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो कि ज़्यादा देखने में आती हैं
1: जी।
2: और ये सारी बीमारियां तीन तरह की होती हैं। एक तो वाटर बॉर्न डिजीजेस, जो कि पानी, दूषित पानी पीने से या दूषित पानी में खाना पकाने से या उसका सेवन करने से होती हैं। दूसरी होती हैं जो हमारे मच्छर या मक्खियाँ होती हैं उनसे जो ट्रांसमिट होती हैं बीमारियाँ, उस तरह की बीमारी होती हैं। और तीसरा, आपने देखा होगा आजकल फ्लू की बीमारी भी काफ़ी हो रही है। तो ये तीनों बीमारियाँ जब मानसून आता है तो अपना प्रकोप बढ़ाती हैं। और ये अलग अलग तरीके की बीमारियां हैं। कुछ बीमारियां वायरसेस से होती हैं, कुछ पैरासाइट से होती हैं, तो ये और कुछ बैक्टीरिया से होती हैं। तो इन बीमारियों का एक तरह से शुरुआत जो होती है वो जस्ट मानसून से पहले, लगभग मई जून के अराउंड शुरू होता है, और मानसून के बाद नवंबर दिसंबर तक ये चलती हैं
1: जी।
2: और इनके लिए पूरी सावधानी बरतनी चाहिए। तो ये एक अच्छा माध्यम है जिसकी जिससे लोगों को जानकारी हम दे सकते
1: मिलेगी जी। मैम, आपने पैरासिस और बैक्टीरिया की बात करी, तो कैसे डिफरेंस आप करते हैं इनमें, कैसा क्या इनमें अलग?
2: तो अगर मैं हमारे सेंटर पे, जो नेशनल सेंटर फॉर वेक्टर बॉर्न डिजीजेस कंट्रोल है, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में आता है, और इसमें हम 6 बीमारियों के ऊपर देश भर में व्यापक कार्यक्रम चलाते हैं जिसके जरिए हम इन बीमारियों पे कंट्रोल करते हैं। तो जो हमारी वायरल बीमारियां होती हैं इसमें, वो है डेंगू है, चिकनगुनिया है, और जापानीज एनकेफेलाइटिस है, जिसे दिमागी बुखार भी कहते हैं। और डेंगू चिकनगुनिया तो बहुत कॉमनली लोग जानते हैं, तो ये वायरस से होती हैं। इसी के साथ जो मलेरिया है वो हमारी एक पैरासाइट से होती बीमारी है। तो लक्षण सारी ही बीमारियों के लगभग बुखार से शुरू होते हैं। तो फीवर अलग अलग तरीके का होता है, अलग अलग टाइम पे आता है, और उसका अलग अलग प्रोग्रेशन होता है। इसके साथ ही एक बीमारी होती है जिसे हम हाथी पांव या लिम्फैटिक फाइलेरियसिस कहते हैं। ये भी कुछ राज्यों में है, देश के लगभग 20 राज्यों में ये बीमारी है। तो ये क्यूलेक्स एक मस्किटो होता है, उसको मच्छर के काटने से ही होती है, और लोगों को कम जानकारी होती है कि ये मच्छर के काटने की बीमारी है। तो ये भी एक बीमारी है जो एक पैरासाइट से होती है। इसी के साथ एक और बीमारी है जिसको कालाजार कहते हैं, जिसको बहुत से लोग जानते होंगे। एक बिहार, झारखंड और आपका वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश वाला जो एक क्षेत्र है, उसकी एक बेल्ट है, उसी में ये बीमारी अधिकतर पाई जा सकती है। और ये एक सैंडफ्लाई से होती है, मतलब ये मच्छर से नहीं होती, ये एक सैंडफ्लाई होती है जो मच्छर के एक चौथाई साइज के बराबर होती है, उसके काटने से ये फैलती है। तो सभी का लक्षण बुखार से शुरू होता है, बट आगे प्रोग्रेशन डिफरेंट।
1: जी जी, तो सुना आपने कि आज का विषय कितना है इम्पोर्टेंट, और इस लाइव फोन इन प्रोग्राम में कॉल करने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। उसके लिए हमारे नंबर नोट कर लीजिए ना, 2342।

1080 2342 1082 व्हाट्सएप से मैसेज करने के लिए 9868107070। डॉक्टर जैन, हम आपसे इसी विषय पर आगे भी और जानकारी लेंगे। सुन लेते हैं पहले एक गीत।

0: कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं वेक्टर बोर्न डिजीजेस खास विषय पर, और हमारे साथ हैं डॉक्टर तनु जैन। डॉक्टर, हम आपसे पूछ रहे थे कि वेक्टर बोर्न डिजीज क्या है, जिसके बारे में आपने बताया, इन रोगों के होने का कारण क्या है?
1: जी, तो जैसा कि मैंने बताया कि ये बारिश के साथ में ये डिजीजेस शुरू होती हैं, तो सबसे कॉमन डिजीज है डेंगू
0: जी,
1: जिसको कि सारे लोग जानते हैं और काफी उससे डरते भी हैं कि डेंगू ना हो जाए। तो इसके होने का कारण है एक मच्छर जिसका नाम है एडीज एजिप्टाई, जो कि टाइगर मस्किटो भी कहलाता है
0: जी।
1: और इसको पहचाना जाता है, इसके ऊपर धारियां होती हैं व्हाइट एंड ब्लैक, तो टाइगर मस्किटो, इसलिए इसे स्ट्राइप मस्किटो होता है। तो ये कहा जाता है, और ये डे बाइटर है, दिन के वक्त में काटता है
0: जी।
1: और इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि ये पनपता है साफ ठहरे हुए पानी में
0: जी।
1: और इसीलिए कि बरसात शुरू होने के बाद कहीं पर भी जहां साफ ठहरा हुआ पानी है, चाहे तो वो आपकी छत की टंकियां हैं, या आपके जो गमले हैं उसके नीचे की ट्रे हैं, या छोटे छोटे कप्स आप बाहर रखते हैं, या बर्ड फीडिंग के लिए जो आप रखते हैं, या टायर्स हैं जो बाहर पड़े हुए हैं, या डिस्कार्डेड डब्बे बोतल छत पे लोग डाले रखते हैं, या इवन प्लास्टिक की शीट छत पे होती है, कुछ लोग लगा देते हैं कि बरसात का पानी नीचे ना आए, तो उसके अंदर में जब पानी जम जाता है तो एक हफ्ता के अंदर अंदर उसके अंदर ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। तो ये मच्छर डे बाइटर है, और ये विसिनिटी में ही काटता है, जिसे पेरिडोमेस्टिक ब्रीडिंग कहते हैं, घर और घर के आसपास ब्रीड करता है
0: जी।
1: और ये मच्छर दिन में एक 10 से 15 लोगों तक को बाइट कर सकता है। और सिंगल बाइट से ये वायरस ट्रांसमिट करता है, तो बहुत डेंजरस मस्किटो है और मुश्किल है उसको कंट्रोल करना, क्योंकि इसको जन भागीदारी और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की नजर से बहुत जरूरी है देखना। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस डेंगू के बारे में। इसी तरह अगर आप मलेरिया में आएंगे तो मलेरिया का मच्छर है एनोफिलीस, और ये सुबह जब हल्का धुंधला होता है उस वक्त, या शाम के टाइम ज्यादा उस वक्त काटता है, इसकी हैबिटेट थोड़ी डिफरेंट है
0: जी।
1: और इसके काटने से मलेरिया पैरासाइट ट्रांसमिट होता है
0: जी। डॉक्टर साहब, आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक कॉलर जुड़ गए हमारे साथ, कॉल लाइन पे ले लेते हैं उनका कॉल। हेलो,
2: हेलो
0: जी,
2: नमस्कार।
0: नमस्कार
2: मैडम, मेरा सवाल डॉक्टर तनु जैन मैडम से है
0: जी,
2: कि ये जो बीमारियां मैडम ने बताई हैं, ये बारिश के दिनों में ही ज्यादा क्यों होती हैं
0: जी?
2: और साथ ही कि सरकार का क्या प्रयास रहता है इन बीमारियों को कम करने के लिए, और आम आदमी इससे कैसे बच सकता है
0: जी?
1: तो पूजा जी, इन्होंने सारे सवाल आपके एक साथ पूछ लिए
0: जी।
1: तो जैसा कि बताया गया कि ये बीमारियां बारिश के मौसम में इसलिए होती हैं कि जगह जगह पे जल भराव हो जाता है,
0: जैसा अभी आपने
1: जी,
0: बताया
1: तो जी। वो जैसे साफ पानी में आपका डेंगू का मच्छर है, मलेरिया का मच्छर यूजुअली जो गंदा पानी होता है, ठहरा हुआ, रुका हुआ, बरसात का, जैसे नदी नाले उस तरह की जगहों पे, वहां पे ज्यादा पनपता है, जहां सॉलिड वेस्ट पड़ा होता है, गंदगी ज्यादा होती है, वहां पे मच्छर ज्यादा पनपता है। और सरकार के प्रयास जो है वो बहुत पहले शुरू हो जाते हैं। बेसिकली सरकार तो पूरे साल ही प्रयास करती है कि इस तरह की बीमारियां हमारे लोगों को ना हो और वो अपना बचाव कर सकें, तो उसके लिए तैयारियां तो पूरे साल ही चलती हैं। लेकिन एक नेशनल डेंगू डे होता है जो हम मई में मनाते हैं, 16 मई को
0: जी।
1: और उस दिन से खास करके हमारी तैयारियां और एक्सेलरेट हो जाती हैं, मतलब ज्यादा बढ़ाव के साथ चलती हैं जी।
0: और मैम, चिकनगुनिया के बारे में अगर बात करें तो उसके बारे में बताइए कि वो कैसे?
1: तो चिकनगुनिया भी ये एडीज काट के वायरस, एडीज मच्छर के काटने से ही होता है, अगेन ये वायरल बीमारी है। इसके लक्षण भी बुखार को लेके ही शुरू होते हैं, लेकिन इसका जो मेन एक लक्षण होता है वो जॉइंट पेन्स होता है। तो जॉइंट्स में जो बहुत पेन होता है और आप एकदम डबल अप हो जाते हो, इतना ज्यादा जॉइंट में पेन्स होता है कि आप डबल अप हो जाते हो, इसीलिए ये चिकनगुनिया जो वर्ड है वो आया है। और ये भी अगेन वही है कि ये मच्छर जो है साफ ठहरे हुए पानी में पनपता है। तो ये एडीज मच्छर 3 बीमारियां लगभग फैलाता है, एक बीमारी जीका भी, और एक येलो फीवर जो हमारी कंट्री में थैंकफुली नहीं है। तो ये सारी वायरल बीमारियां एडीज

0: मच्छर के फैलने से होती है। लेकिन बचाव देखिए कितना आसान है कि आपको बस अपने घर के आसपास ठहरा हुआ पानी नहीं जमा होने देना है और हर हफ्ते आपको एक ड्राइंग डे मनाना है। तो इसका बचाव बहुत ही आसान है और ट्रीटमेंट
1: सावधानी की जरूरत है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल
1: सावधानी। और मैम लिम्फेटिक फिलेरिसिस की बात अगर करें तो ये कैसे अपन?
0: तो अब इसके लिए भी एक एक्चुअली बहुत लोगों को पता भी नहीं है। हाथी पांव बहुत लोगों ने देखा भी होगा
1: बिल्कुल,
0: लेकिन कोई उसको ये नहीं सोच पाता कि ये हाथी पांव जैसी बीमारी मच्छर के काटने से होती है। लेकिन ये क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होती है और जिन एरियाज में अगेन ये क्यूलेक्स मच्छर भी जो गंदे पानी जहां पे इकट्ठा होते हैं या गंदगी जहां रहती है ज्यादातर वहां पे ये क्यूलेक्स मच्छर पनपते हैं। इनको न्यूसेंस मस्किटो भी कहते हैं, बहुत तादाद में होते हैं, शाम होते ही देखिएगा आप सिर पे आ जाते हैं। बट इनके काटने से ये बीमारी होती है, बहुत टाइम बाद इस बीमारी का पता चलता है। जैसे अगर बचपन में अधिकतर जो मच्छर काटते हैं उसकी जो इन्फेक्शन होता है उनमें माइक्रोफाइलेरिया होता है, एक छोटा पैरासाइट, वो ब्लड में होता है, फिर वो धीरे धीरे आपकी लिम्फ वेसल्स में चले जाता है। तो जब वो पैरों के लिम्फ वेसल्स में जाता है वहां इकट्ठा होता है तो लिम्फेटिक्स को डायलेट कर देता है।
1: तो मैम क्या ये मच्छर पैर पे काटता है या कहीं भी काट सकता है?
0: बहुत ही अच्छा सवाल पूछा जी मुझे। मच्छर तो कहीं भी काट सकता है बट हर किस्म के मच्छर की अपनी थोड़ी प्रेफरेंसेज होती है। यूजुअली एक्सपोज पार्ट पे ही मच्छर काटेगा क्योंकि उसको ब्लड मील चाहिए होता है, उसको अपनी रिप्रोडक्शन के लिए और अपने सर्वाइवल के लिए फीमेल मस्किटो को ब्लड मील चाहिए होता है। तो यूजुअली एक्सपोज पार्ट्स पे काटता है, तो पैर एक्सपोज्ड होते हैं, मोस्टली हाथ एक्सपोज्ड होते हैं, नेक का एरिया है, फेस इयर्स बहुत एक्सपोज्ड होते हैं,
1: फेस हमारा पूरा
0: फेस पे भी और आपके इस पे। यूजुअली कुछ लोगों की जैसे हैबिट होती है बरसात है गर्मी है या फील्ड में जो लोग काम कर रहे हैं तो वो अपना जैसे ऊपर खुला रखते हैं तो ताकि गर्मी ना लगे तो बैठते हैं, तो उसमें भी मच्छर कहीं भी काट सकते
1: हैं। मैम इनके लक्षण क्या है अगर जो हमने चिकनगुनिया डेंगू मलेरिया के बारे में बात की तो इन क्या लक्षण है जो समझ सकें कि कोई भी इससे प्रभावित हो गया है?
0: तो हम शुरू करेंगे डेंगू के साथ क्योंकि डेंगू बहुत ही कॉमन एक बीमारी है और लगभग हमारी पूरी कंट्री में ये बीमारी है, सिर्फ लद्दाख में इस वक्त ये बीमारी नहीं है। तो इसके लक्षण शुरू तो नॉर्मल जैसे वायरल के होते हैं, बुखार आएगा, हल्का बुखार भी आ सकता है, तेज भी आ सकता है, बट जो स्पेसिफिक लक्षण होते हैं वो आंखों के पीछे जिसे रेट्रो ऑर्बिटल पेन कहते हैं वो बहुत पेन होता है, बदन में भी बहुत दर्द होता है। तो ये दो चीजें हैं और क्योंकि खांसी जुकाम ज्यादा इसमें नहीं होता है तो ये एक डिफरेंशिएटिंग फीचर हो जाता है फ्लू से। अगर इन्फ्लुएंजा होगा तो वो ज्यादा खांसी जुकाम के साथ आएगा, अगर डेंगू होगा तो वो बॉडी एक के साथ, हाई फीवर के साथ और आंखों के पीछे पेन्स के साथ आ सकता है। कभी कभी बॉडी में रैशेज आ सकते हैं, कभी नौजिया भी आ सकता है, कभी आपको पेट दर्द भी हो सकता है। तो ये सारे लक्षण के साथ अधिकतर ये डेंगू दिखता है। मलेरिया के लक्षण थोड़े से फर्क होते हैं। मलेरिया का बुखार जो है वो कपकपी लग के आता है, जिसे हम हॉट कोल्ड फेज और परस्पिरेशन फेज कहते हैं। तो वो एकदम ठंड लग के बुखार आता है, तेज बुखार आता है और फिर वो सडनली उतरता है, बहुत तेज हाई फीवर हो जाता है, उसको हॉट फेज कहते हैं, और फिर पसीना छोड़ के वो बुखार उतरता है। और ये बुखार कभी एक दिन छोड़ के भी आ सकता है, कभी दो दिन छोड़ के भी आ सकता है। तो इस तरह का फीवर आए तो सोचें कि शायद ये मलेरिया हो सकता है।
1: मैम कितने दिन में हमें ये पता लगा लेना चाहिए कि अब हमें टेस्ट की जरूरत है?
0: जी ये तो बहुत ही अच्छा सवाल है क्योंकि लोगों को यही लगता है कि एक दिन रुक जाए, दो दिन रुक जाए, फिर टेस्ट कराएं। तो जब सीजन आपका डेंगू का मलेरिया का चल रहा है तो जितना जल्दी हो सके अपना जांच करा लें। अगर आपको लग रहा है कि ये वायरल नहीं है, नॉर्मल फीवर नहीं है, बुखार आ रहा है, तो 24 से 28 घंटे के अंदर आप जरूर जाके डॉक्टर को कंसल्ट कर लें या एक टेस्ट जरूर करा लें, और खास करके सीजन में।
1: जी और आपने बताया कि इसमें बुखार रह रहकर आता है और बॉडी बहुत ज्यादा। मैम हमारे सवाल आपसे जारी रहेंगे, इस बीच एक कॉलर जुड़ गए हमारे साथ कॉल लाइन पर। हेलो हेलो, लगता है इनसे संपर्क टूट गया है हमारा। और मैम अगर हम बात करें बचाव की तो क्या है बचाव के रास्ते?
0: तो बचाव के रास्ते तो जैसे हमने बताया कि एक तो सबसे इम्पोर्टेंट रास्ता यही है कि आप अपने घर के आसपास सफाई रखें, पानी जमा ना होने दें। दूसरा रास्ता ये कि शाम के वक्त भी और दिन के वक्त भी जब भी पॉसिबल हो अपने घर में जाली का दरवाज़ा बंद करके रखें ताकि मच्छर की एंट्री ना हो। साथ ही अपने घरों में जो जैसे आपकी टंकियाँ हैं उनकी नियमित रूप से जाँच करें। कई बार क्या होता है कि उनका लिड खुला रह जाता है और पानी उसके अंदर में ब्रीडिंग होती रहती है और हमको पता ही नहीं चलता कि वहाँ पर मच्छर है। फिर जब सोसाइटी सोसाइटी में कोई एक आध केस आता है और फिर जब म्युनिसिपैलिटी की टीम आती है चेक करते हैं तो मालूम देता है कि वहां पे, तो एक तो जन भागीदारी और खुद एक जागरूकता और अवेयरनेस बहुत जरूरी है। दूसरा कि इस सीजन में पूरी बांह के कपड़े पहने या अपने पैर कवर्ड रखें और अपने आप को मच्छर के काटने से बचाएं, कुछ भी आप यूज करना चाहें जो भी लोकली अवेलेबल चीजें हैं।

0: मैम एक कॉल कॉलर जुड़ गए हमारे साथ, कॉल लाइन पे ले लेते हैं कॉल इनका। हेलो
1: जी मैम।
0: जी
1: नमस्कार मैम।
0: नमस्कार
1: मैम, मैं बहराइच जिला से बोल रहा हूँ, गणेश।
0: हाँ जी
1: जी, मेरा सवाल मैम से है
0: जी, पूछिए।
1: क्या वेक्टर बॉर्न डिजीज के लिए भी कोई वैक्सीन या टीका उपलब्ध है?
2: जी, तो ये आपने सवाल जो पूछा है, इसमें जो जैपनीज इनकेफलाइटिस है, तो जिस एरिया में जेई या दिमागी बुखार ज़्यादा होता है, वहाँ पर रूटीन इम्यूनाइजेशन में ये टीकाकरण उपलब्ध है, तो ये आप ज़रूर ले सकते हैं। लेकिन बाकी बीमारियों के लिए टीकाकरण की कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बीमारियां बड़े आराम से प्रिवेंट कर सकते हैं आप। और इनके होने के बाद अगर आप देखेंगे तो हमारी कंट्री में तो बीमारियों के रेट में भी और मृत्यु दर में भी बहुत गिरावट आई है
0: जी,
2: पिछले 10 साल में बहुत गिरावट
0: बहुत
2: आई है, बहुत कमी आई है। और ये एक जनभागीदारी का भी हिस्सा है, लोग भी समझना शुरू किए हैं इस बात को। तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि देखिए, कोई भी वैक्सीन बॉडी में जाती है तो कोई ना कोई छोटा मोटा रिएक्शन करती है, तो जब तक बहुत जरूरत नहीं है सरकार ऐसी किसी वैक्सीन को रिकमेंड नहीं करती है। लेकिन जेई की जहां पे, क्योंकि जेई में डेथ्स हो सकती हैं और जेई में थोड़े डिसेबिलिटी के चांसेस भी ज्यादा होते हैं, उसकी वैक्सीन जरूर अवेलेबल है। बाकी बीमारियों के लिए वैक्सीन की कोई जरूरत नहीं है, बहुत ही सेफ ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं जिनसे कि आप अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं।
0: जी, हम आपको एक बार फिर बता दें, आज हम बात कर रहे हैं वेक्टर बोर्न डिजीजेज यानी मच्छर जनित रोग से बचाव के कारण जैसे खास विषय पर। अगर इससे संबंधित आपके पास भी है कोई सवाल या चाहते हैं आप अपनी परेशानी का समाधान, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं इन नंबर्स पर जो हैं 01123421080 और 23421082। व्हाट्सएप से मैसेज करने के लिए नंबर नोट कर लें 9868107070। डॉक्टर तनु, अभी आपने बताया कि अगर टैंकी का लिड खुला रह जाए तो क्या बंद लिड में भी मच्छर पैदा हो सकता है?
2: नहीं, क्योंकि देखिए, ये मच्छर को कोई तो स्पेस चाहिए जहाँ पे एग्स ले करती हैं, फीमेल मस्किटो एग ले करती हैं। और ये एक बहुत ही इनकी खासियत है जो मैं बताना चाहूंगी अपने श्रोताओं को, कि जो ये एग ले करती हैं, जैसे कूलर है,
0: हाँ,
2: है ना, कूलर के खास करके आप कहेंगे, कूलर में हम पानी भर देते हैं, उसके बाद बरसात हो जाती है, हम यूज नहीं करते और वो पानी ठहराव हो जाता है, बहुत ज्यादा ब्रीडिंग होती है उसमें, तो वो मच्छर ले करने के लिए तो उनको उसके अंदर एंट्री चाहिए। अगर कहीं से कोई टूटा हुआ है, कोई मच्छर वहां से एंटर कर गया, तो बंद लिड के अंदर में भी डेफिनेटली ब्रीडिंग सकती है। अब ये जो एग्स हैं, इनकी खासियत क्या है जो हम लोग अपने श्रोताओं को बताना चाहेंगे, हम कहते हैं कि आप जब अपनी टंकी या इस तरह के कोई कंटेनर साफ करें तो उनको रगड़ रगड़ के साफ करें। रगड़ के इसलिए कहा जाता है कि आप पानी खाली करके अगर सीधा रख देंगे तो उसके अंदर उसके अंडे जो है सर्वाइव कर जाते हैं और 1 साल तक भी सर्वाइव कर सकते हैं ड्राई कंडीशन में। तो अगर आपने कूलर खाली करके ऐसे रख दिया, अगले साल जब आप पानी डालेंगे तो वो अंडे फिर से वायबल हो जाएंगे, और वो वायबल होके फिर वो इन्फेक्टेड अगर हैं, अगर इन्फेक्टेड मस्किटो से वो एग्स आए हैं, तो वो नेचुरल इन्फेक्शन कैरी करते हैं, इसको हम ट्रांस ओवेरियन ट्रांसमिशन कहते हैं। तो वायरस जो है अगर फीमेल मस्किटो से आया है एग के अंदर में, तो वो एग 1 साल बाद भी जब डेवलप करेगा हफ्ता या 10 दिन में एडल्ट मस्किटो में और बाइट करेगा, तो वो डेंगू कॉज कर सकता है। तो काफी एक स्टर्डी एक डेंजरस मस्किटो है, जिससे कि हमको बचाव अपने आप करना
0: जी। डॉक्टर साहब, अगर ये कूलर की जो सफाई है, कितने दिनों में, खासकर बरसात के मौसम,
2: तो हम लोग हमेशा यही कहते हैं कि एक हफ्ता में एक बार, क्योंकि हफ्ता लगता है एक एग को हैच करके बन के एक एडल्ट मस्किटो बनने में, तो हफ्ते से 10 दिन में जरूर अपने कूलर्स को, जहां पे कंटेनर्स हैं और जिन चीजों को, जैसे आपकी बर्ड ट्रे हैं या और चीजें हैं, तो उनको आप पलट के भी रख सकते हैं ताकि उनके अंदर दोबारा में पानी ना इकट्ठा हो। तो हफ्ता या 10 दिन में, जिसे हम ड्राइंग डे कहते हैं, एक जरूर ऑब्जर्व करें और अपने चारों तरफ चेक करें कि कहीं पानी गले।
0: और डॉक्टर साहब, अगर कूलर ऊपर है, कई बार ऐसा होता है, तो क्या एंटी मॉस्किटो स्प्रे से फायदा होता है?
2: नहीं, स्प्रे तो एज सच वहां जाके करने का कोई जरूरत नहीं है, देर इज अ टैबलेट जो आप यूज कर सकते हैं उसके अंदर में, तो वो जरूर इफेक्टिव होती है। अगर आपको लगता है कि आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं, तो आप उसको जरूर यूज कर सकते हैं।
0: कहां से मिलते
2: हैं? आपको जहां पे भी गवर्नमेंट प्रोग्राम चलाती है वो अपने आप ही प्रोवाइड करेगा,
0: और आप जाकर भी ले सकते हैं,
2: मतलब आप
0: जो भी सेंटर है पास में,
2: आप अपने सेंटर पे अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन ये सारा जो हमारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, अर्बन लोकल बॉडीज है या रूरल लोकल बॉडीज हैं, उनके पास ये सब कुछ उपलब्ध होता है। और खास के मैं कहना चाहूंगी, आपके घर में अगर कोई चेक करने आए तो जरूर उसको अलाउ करें चेक करने के लिए, ताकि
0: वो आपको पता बता सके,
2: पता लग सके कि आपके कहां कहां पे ब्रीडिंग हो रही है। और घर के अंदर जो गमले हैं उनको जरूर चेक करें टाइम टू टाइम, क्योंकि उसके अंदर में पानी इकट्ठा होकर ब्रीडिंग करता है।
0: एक और कॉलर है हमारे साथ, कॉल लाइन पे ले लेते हैं इनका कॉल। हेलो,
3: जी

0: नमस्कार
1: नमस्कार
0: मेरा मैम से सवाल है कि बारिश के टाइम में ना मुझे बहुत ज्यादा हेडेक और बॉडी पेन बहुत रहता है, जबकि मैं बाहर का ऐसा कुछ खाना पीना नहीं रहता, लेकिन समटाइम पेट में दर्द और बॉडी पेन बहुत रहता है, तो ये नॉर्मल है या मतलब क्या है, ये मैं जानना चाहती हूँ। थैंक यू
1: जी। तो जो आपने सवाल पूछा है कि आपको बॉडी पेन रहता है, तो अब ये मुझे नहीं आपके बात से पता चल पा रहा कि ये हमेशा ही रहता है या कुछ दिन पहले होता है। तो क्योंकि ऐसा बॉडी पेन हर वक्त तो किसी को नहीं रहना चाहिए बरसात के टाइम में। ये हो सकता है कि आप बहुत ठंडे में बैठ जाते हों, या इस टाइम पे लोग बहुत ठंडा ले लेते हैं तो उस वजह से शायद आपको हो रहा हो, या हल्का आपको वायरल हुआ हो, आपको पता ना चला हो, वायरल होके पास हो गया हो। जैसे इवन वायरल जो बुखार होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर बुखार बहुत ज़्यादा सिम्टम्स करेगा, हल्के सिम्टम्स के साथ भी निकल जाता है। डेंगू में भी आप देखेंगे तो लगभग 60% केसेस ऐसे होंगे जो कि बहुत तेज़ बुखार नहीं होगा, बल्कि उनको पता ही नहीं चलेगा हमें डेंगू हो गया। तो हो सकता है इस तरह के हल्के वायरल इन्फेक्शन आपको हुए हों जिससे आपको बॉडी एक हो रहा हो। तो ज़रूर आप जो हैं बरसात के टाइम पर अपना ध्यान ये रखें कि ठंडा पानी ना पिएं, गर्म पानी पिएं, अपने आप को बचा के रखें सर्दी से भी, और आसपास की गंदगी से बचाएं। और पेट में दर्द भी आपने कहा, तो क्योंकि बहुत ज़्यादा इस वक्त खाने का और पानी का दूषित होने का संभावना रहती है, क्योंकि ड्रेनेज वगैरह कभी ओवरफ्लो करते हैं तो वो आपके पीने के पानी में या खाना पकाने वाले पानी में मिक्स हो सकते हैं। तो ध्यान रखें कि पका हुआ ही खाना खाएं, गर्म खाना खाएं, तो ये सारी चीजें, ताज़ा पका हुआ गर्म खाना खाएं, रखा हुआ खाना ना खाएं, और बाकी बहुत डिटेल्स तो नहीं पता है, बट ये सारे प्रिकॉशंस लेंगे तो आई एम श्योर आप बेटर फील करेंगे।
2: दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आज वेक्टर बॉर्न डिजीजेस यानी मच्छर जनित रोगों से बचाव। कार्यक्रम जारी रहेगा इस ब्रेक के बाद भी।

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: आप सभी का एक बार फिर स्वागत है कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में, और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर तनु जैन, जो हमें बता रही हैं वेक्टर बोर्न डिजीज़ से होने वाली परेशानियों के बारे में। डॉक्टर साहब, हम बात करें उससे पहले एक कॉलर है हमारे साथ, कॉल लाइन पर ले लेते हैं उनका कॉल। हेलो हेलो
2: हेलो
1: जी जी जी
2: हाँ जी मैम, मेरा सवाल ये था, मैंने जैसे सुनने में आया है कि
1: आप अपना नाम बताइए पहले।
2: मैम मैं संजीव बोल रहा हूँ रांची से।
1: जी जी पूछिए।
2: मैम मेरा सवाल ये था कि जैसे सुनने में आया कि कालाजार देश से खत्म होने वाला है, तो ये कब तक पॉसिबल है?
1: जी
3: जी ये बहुत अच्छा सवाल है, और हम लोग को बहुत गर्व भी है इस बात का कि कालाजार जैसी एक बीमारी जो कि हमारे देश में बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, अब वो बहुत कम हो गई है। और इसकी एक डेफिनेशन होती है कि एक केस 10,000 पॉपुलेशन में हो, उससे कम केसेस अगर रहें एक ब्लॉक पे तो उसको हम एलिमिनेशन मानते हैं, जैसा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है। तो 2023 से अब हमारे जो ज़िले हैं, ये हमारे 54 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और 633 ब्लॉक्स हैं, जिसके अंदर में कि अब ये बीमारी एलिमिनेशन के लेवल से नीचे पहुंच गई है। तो ये अगर हम इसको सस्टेन कर पाते हैं एक साल और, जैसे मैंने बताया ये सैंड फ्लाई के काटने से होती है, और इसकी ये काफ़ी मतलब एक तरह से डेंजरस बीमारी रहती है। इसके अंदर में आपकी स्प्लीन बढ़ जाती है, लिवर बढ़ जाता है, बुखार आता है, पूरा शरीर काला पड़ जाता है। तो इसको इसमें बच्चे अगर ट्रीटमेंट ना हो तो इसमें डेथ्स भी हो सकती हैं, और ये काफ़ी सीरियस बीमारी हो जाती है। तो अब ये इसमें हमारे पास डेथ्स के केसेस बहुत ही नेग्लिजिबल हो गए हैं, और अगर ये हम सस्टेन कर पाए तो सून हमको WHO से इसका सर्टिफिकेशन मिल जाएगा।
1: तो तब तक के लिए मैम प्रिवेंशन के लिए आप क्या?
3: तो प्रिवेंशन के लिए इसके लिए यही है सबसे इम्पोर्टेंट, प्रिवेंशन तो हमेशा मैं वही कहूंगी, लेकिन कालाजार के लिए थोड़ा डिफरेंट है। इसकी जो ब्रीडिंग हैबिटेट है वो फर्क होती है। ये थोड़े से कच्चे घरों में, जैसे क्रेवाइसेस होते हैं या क्रैक्स आ जाते हैं ना कच्चे घरों में, उसके अंदर में ये सैंडफ्लाई पसंद करती है ब्रीड करना। जैसे कैटल शेड होते हैं उसके अंदर में भी ये सैंडफ्लाई प्रेफर करती है। तो हॉट ह्यूमिड डार्क प्लेसेस में ये सैंडफ्लाई ब्रीड करती है, बहुत छोटी सी फ्लाई होती है, और इसको काटने से ये इतनी भयंकर बीमारी होती है। तो अपना बचाव सबसे ज्यादा, तो बचाव के तरीके हर वेक्टर बॉर्न डिजीज के लगभग सेम है कि आप अपने घर के आसपास में सफाई रखें, मच्छरदानी के अंदर में सोएं, जब आपके घर में स्प्रे करने कोई आए तो प्लीज अपना स्प्रे कराएं। पर ये याद रखें कि स्प्रे हर जगह नहीं होता है, गवर्नमेंट एक देखती है कि कहां पे बहुत हाई एंडेमिसिटी है, बहुत ज्यादा केसेस जहां होते हैं, तो उसी के एक पैरामीटर होता है जहां पे हम स्प्रे करते हैं, क्योंकि कोई भी इंसेक्टिसाइड या कुछ यूज करना बहुत ज्यादा क्वांटिटी में वो अपने लिए ठीक भी नहीं रहता है। और जहां पे कि बहुत सिंपल से मेजर्स काम करें वहां पे बहुत ज्यादा स्प्रे की, तो जहां जहां जरूरत पड़े वहां पे आप साथ दें स्वास्थ्य कर्मचारियों का जो आपके घर में आए। इसी तरह से डोमेस्टिक ब्रीडर चेकर्स आते हैं या आशा बहनें आती हैं आपके घरों में, तो प्लीज उनको चेक करने दें अपने सराउंडिंग्स को और बचाव का बताएं। तो बहुत ही मुझे लगता है कि बाय नेक्स्ट ईयर, कल नेक्स्ट ईयर तक हम लोग इस बीमारी को एलिमिनेट कर पाएंगे।
1: डॉक्टर जैन, हमारे पास व्हाट्सएप से मैसेजेस भी आ रहे हैं। हमें अकोला महाराष्ट्र से राजकुमार जी लिख रहे हैं कि आपका कार्यक्रम जो आज का विषय है बहुत ही अच्छा है। और इसके साथ ही हमें एक और मैसेज आया है प्रीति का, वो लिखती हैं कि डेंगू के मच्छर की पहचान कैसे हो, हालांकि ये आप बता चुकी हैं, तो कैसे करें?
3: तो सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि दिन में अगर मच्छर काट रहा है तो मोस्टली वो डेंगू का मच्छर ही होगा। और ये मच्छर मैंने बताया आपको एडीज़ एजिप्टाई से टाइगर मस्किटो भी कहते हैं, इसके ऊपर स्ट्राइप्स भी आ सकती हैं, तो उस तरह से आप इसको पहचान भी सकते हैं। बट कोशिश करें कि ऐसा मच्छर आपके घर के आसपास ना ही आए। तो
1: जी। और हमें आमिर लिख रहे हैं कि क्या एंटी मॉस्किटो जो क्रीम्स होती हैं क्या वो सेफ होती हैं स्किन के लिए?
3: तो जो एंटी मस्किटो क्रीम्स मार्केट में हैं वो सेफ होती हैं, अगर आप चाहें तो आप उनको यूज़ कर सकते हैं, पैचेस भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये रेपेलेंट्स होती हैं, ये हेल्पफुल होती हैं, लेकिन ज़रूरी है कि आप अपने शरीर को ढक के रखें, वो ज़्यादा मदद करेगा, क्योंकि एंटी रेपेलेंट क्रीम्स हैं, पसीना आया तो वो बह जाएंगी और एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी आपको देंगी। तो ज़रूर अपने शरीर पे पूरे ढकने वाले कपड़े पहन के और मच्छरों से काटने वाली जगह से थोड़ा सा बचाव रखें।
1: मैम दिल्ली से साक्षी हमें लिख रही हैं कि कुछ लोगों को बहुत मच्छर काटते हैं और कुछ को नहीं, ऐसा क्यों होता है, क्या इसका संबंध ब्लड ग्रुप से है? और दूसरा, जो हम स्मोक करते हैं घर में, यानी कि अगर हमने कुछ जलाया मच्छरों को भगाने के लिए, तो क्या वो सेफ है?

0: देखिए ऐसा है कि अब मुझे नहीं पता आप कौन से स्मोक की बात कर रही हैं। कुछ मस्किटो रेपेलेंट कॉइल्स होती हैं तो वो उनकी टेस्टिंग है वो सेफ हैं, बट फिर भी कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए, खास करके कुछ पेशेंट्स होते हैं अस्थमा के होते हैं
1: जी
0: जिनको
1: बिल्कुल
0: स्मोक
1: मैम,
0: से
1: उसी के
0: हाँ
1: लिए
0: एलर्जीज
1: पूछा
0: या वो हो सकती हैं, तो डेफिनेटली उससे प्रॉब्लम हो सकती है। उससे अच्छा ये है कि आप जाली के दरवाजे रखें, बंद करें, रात में मच्छरदानी में सोएं, पूरी वहां के कपड़े पहने,
1: जी
0: लेकिन फिर भी अगर आपको जरूरत पड़ती है तो लिमिटेड उसमें आप जरूर इस्तेमाल कर सकती हैं।
1: जी
0: और जो इनका एक सवाल था ब्लड ग्रुप का, ऐसा तो कुछ साइंटिफिकली
1: ये
0: प्रूवन नहीं है,
1: जी
0: बट हाँ देखने में आता है कुछ लोगों को ज्यादा काटते हैं
1: जी
0: मच्छर, कुछ को कम, बट कोई ऐसा साइंटिफिक प्रूफ नहीं है
1: जी मैम,
0: उसका।
1: उत्तराखंड कोटद्वार से नरदेव सिंह चौहान हमें लिख रहे हैं कि आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है और परिवार में दो तीन लोगों को बुखार आ जाता है तो दवाई के अलावा खान पान उनको क्या दे, बच्चे जवान बुजुर्गों को क्या अलग अलग खान पान देने की
0: हाँ
1: जरूरत होती है?
0: ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब
1: जी
0: भी बुखार किसी को आता है तो बदन में उसको खाने को जो कॉम्प्लेक्स खाना है, बहुत फैट है, बहुत मसाले हैं, उसको
1: जी
0: पचाने की कैपेसिटी कम हो जाती है, वो इंसान को और बीमार कर सकता है। तो सिंपल खाना दें, ताज़ा पका हुआ खाना दें
1: जी
0: और इजीली डाइजेस्टेबल फूड दें। जितना लिक्विड्स आप देंगे, खास करके आप लिक्विड पे तरल पदार्थों पे बहुत फोकस रखें, किसी भी
1: जी
0: तरह के तरल पदार्थ दें। बहुत ये नहीं कि फ्रूट जूसेस वगैरह देना शुरू कर दें, क्योंकि वो शुगर बहुत होता है उनके अंदर, तो ये
1: जी
0: सब आप दे
1: जी
0: सकते
1: जी डॉक्टर साहब इसके ऊपर बात करेंगे। एक कॉलर जुड़ गए हमारे साथ कॉल लाइन पे, पहले उनका कॉल ले लेते हैं। हेलो
2: हाँ नमस्कार सर, मेरे को सुन पा रहे हैं आप?
1: जी, आप अपना सवाल पूछिए
2: हाँ,
1: मैडम
2: मैं
1: सर।
2: दिल्ली
1: जी
2: से बोल रहा हूँ, नई दिल्ली 84 से। ये आप तो डॉक्टर साहब को भी, आपको भी नहीं, पर आप जो सुझाव दे रहे हैं ना, ये घर के आसपास नाली ये कर रहा हूँ, दूसरा नहीं कर रहा है, तो वो कह रहा है नाली मेरी है, मैं साफ करूँ न करूँ, जो फिर आगे कार्रवाई करो जल बोर्ड वगैरह, वो बोल रहे आप कॉलोनी में आपके अलावा किसी को कंप्लेंट नहीं है, तो व्हाट इज द मैटर कि ये उल्टा सुलटा क्या है?
0: जी, तो इसके लिए ये बहुत अच्छी बात इन्होंने बताई कि
1: मैम ये हम
0: जो
1: सबकी भागीदारी
0: जी
1: है,
0: ये
1: किसी
0: सबकी
1: एक की नहीं।
0: भागीदारी है, और इसको हमें सबको मिलजुल के
1: जी
0: और एक उस स्पिरिट में करना पड़ेगा कि ये हमारी जिम्मेदारी है। देखिए 1.4 बिलियन पॉपुलेशन इंडिया की है,
1: जी
0: अगर हर इंसान सफाई रखेगा तभी सफाई हो पाएगी। कोई भी एक एजेंसी या कोई भी एक इंसान या कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन उसकी जिम्मेदारी नहीं उठा
1: हाँ
0: सकता है अकेले,
1: अकेले हाँ
0: तो ये
1: बिल्कुल
0: जन भागीदारी ही सबसे बड़ी चीज है। और हमें अच्छी स्पिरिट में, लोगों की मदद की स्पिरिट में,
1: जी
0: अपनी मदद की, आप दूसरों की मदद करते हैं तो खुद अपनी मदद हो
1: जी
0: जाती है।
1: जी
0: तो मुझे
1: बिल्कुल
0: लगता
1: मैम
0: है कि जरूर जब आपको पता चल गया है कि ये जरूरी है कि आप सफाई रखें तो उसको जरूर मेंटेन करें और आसपास में भी सद्भावना बना के काम कर
1: बिल्कुल
0: सकते हैं।
1: एक और कॉलर है मैम हमारे साथ कॉल लाइन पे। हेलो
3: हेलो
1: जी
3: जी मैम, मैं साक्षी बोल रही हूँ लखनऊ से। नमस्ते,
1: नमस्ते
3: मेरा क्वेश्चन डॉक्टर तनुजैन मैडम से है।
1: जी
3: मैडम, अगर घर में किसी एक मेंबर को मलेरिया हो जाए तो बाकी फैमिली मेंबर्स को क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए?
0: जी हालांकि मैं बता चुकी हूँ,
1: जी
0: ये मैं फिर से बता देती हूँ। देखिए दो तीन चीजें बहुत ध्यान रखनी है। अगर किसी को मलेरिया हुआ है तो मतलब जरूर कहीं आसपास मच्छर हैं जो ब्रीड कर रहे हैं, और जरूर आसपास कोई पेशेंट और भी हैं जहां से आपको ये बीमारी आ रही है।
1: जी
0: तो एक तो आपने अपने घर के आसपास मस्किटो प्रूफिंग जितनी कर सकते हैं करनी चाहिए, फिर जिसको मलेरिया हुआ है उसको थोड़ा आइसोलेट करके एक मच्छरदानी के अंदर रखें, अगर घर में ही है। अगर अस्पताल में भर्ती हैं तो भी वही प्रिकॉशंस लेने हैं, हॉस्पिटल्स के अंदर भी मच्छरदानी में रखना है। तीसरा इंपॉर्टेंट यह है कि जिसको भी बीमारी हुई है और डायग्नोज हो गई, उनका ट्रीटमेंट जरूर कंप्लीट करें। देखिए दो तरह का मलेरिया होता है, एक फैल्सिपेरम होता है, एक वाइवैक्स होता है।
1: जी
0: तो वाइवैक्स का जो ट्रीटमेंट होता है उसमें 14 दिन तक हमको दवाई खानी होती है। यूजुअली क्या होता है, 3-4-5 दिन के बाद हम अच्छा फील करने लगते हैं
1: और दवाई
0: और
1: छोड़
0: दवाई
1: देते
0: छोड़
1: हैं।
0: देते हैं, तो आपके जो लिवर होता है उसके अंदर में इसके कीटाणु जाके बैठ जाते हैं। आपने जब दवाई छोड़ दी तो 1-1.5 महीना बाद वो वापस आपके ब्लड में आ जाते हैं, तो ये पैरासाइट जो है वो वहां पे डोरमेंट स्टेज में रहता है। तो बहुत ही जरूरी है, बहुत ज्यादा मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूंगी अपने श्रोताओं को कि बीच में दवाई ना छोड़ें, 14 दिन की दवाई जरूर खाएं, उसको कंप्लीट करें ताकि बाकी लोगों को भी आप बचा सकें। क्योंकि अब जब आपके बॉडी में ये पैरासाइट रह जाएगा तो हो सकता है आपको सिम्टम्स नहीं आएंगे, लेकिन जो मच्छर आसपास रहेगा वो आपकी बॉडी से उस पैरासाइट को दूसरे लोगों में ट्रांसमिट कर सकता है, तो ये बहुत एक डेंजरस चीज होती है। तो ये 3-4 चीजों का जरूर ध्यान रखें, और जिसको भी मलेरिया है या बीमारी है उसको तरल पदार्थ, सादा खाना जो पच सके, फ्रेश फूड दें, एकदम पका हुआ तुरंत एकदम ताजा खाना खिलाएं। जी
1: मैम, अभी आपने खाने की बात की तो बरसात में संक्रमण बढ़ने के कारण बाहर का खाना तो अवॉइड करना ही चाहिए, घर के बने खाने में भी

0: क्या सावधानी बरतनी चाहिए? और इसमें एक सवाल ये भी है कि जिनको बाहर का खाना पड़ता है किसी कारणवश, तो वो क्या सावधानी बरतें?
1: तो जैसे अगर आप बहुत श्योर नहीं है कि जो सैलेड काटा हुआ है वो सेफ है कि नहीं है, साफ पानी से धुला हुआ है कि नहीं है, तो उसको अवॉइड कर सकते हैं। दही है काफ़ी दिन का रखा हुआ है या दही के अंदर कुछ वेजिटेबल्स हैं, वो उस तरह की चीज़ों को आप अवॉइड कर सकते हैं। जो भी खाना गर्म है, पका हुआ है, उसको आप खा सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जहां तक पानी का सवाल है, हर बार पानी उबाल के पीने की जरूरत नहीं है। कोशिश करें सेफ ड्रिंकिंग वाटर, तो जो आपके घर में पाइप वाटर सप्लाई से सेफ पानी आता है उसको पिए। आप फिल्टर यूज करते हैं तो फिल्टर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी के घर में कोई संक्रमण हो जाता है और आपको ये डर है कि आपके घर में पानी दूषित हो सकता है, तो उसको उबाल के पीने के लिए जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं, खास करके बच्चों में और बुजुर्गों में और उन लोगों में जिनमें कोई और भी बीमारियां हैं, जिनकी थोड़ी सी इम्यूनिटी कम है।
0: जी मैम, आपने बच्चों और बुजुर्गों की बात की, तो इसी से जुड़ा एक सवाल है कि इस मौसम में बच्चों के लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए ताकि वो बीमार ना पड़े और उन्हें स्कूल और अन्य वजहों से बाहर भी जाना पड़ता है, तो क्या तरीके हैं जो आसानी से वो उन तरीकों को अपना सके, क्योंकि बच्चे कई बार लापरवाही करते हैं।
1: जी बिल्कुल, बच्चे तो कम लापरवाही करते हैं, कुछ पेरेंट्स भी करते हैं जी, लेकिन ये है कि बच्चे हैं, खेलेंगे जरूर है ना। सपोज बारिश में भीग गए खेले, तो जरूर उस वक्त प्रिकॉशंस ये लें कि भीग गए हैं तो जब आ जाएं तो उनके कपड़े सुखा दें, उनको वार्म वाटर दें या कुछ गर्म पदार्थ पीने के लिए दें
0: जी।
1: और मेरे ख्याल से एक ही सी चीजें हैं सबके लिए कि आप फ्रेश फूड खाएं, साफ पानी लें। बच्चों के लिए खास करके जरूरी है, अगर उनके टीके नहीं लगे हुए हैं तो उनको टीकाकरण जरूर करा लें, क्योंकि बहुत सारी और बीमारियां हैं जो फैलती हैं, जैसे मीजल्स है आपकी, तो ये सारी बीमारियां जो बचपन की होती हैं, वो सारी बीमारियों से टीकाकरण जरूर अपने बच्चों का कराएं। और ध्यान रखें कि बहुत ज्यादा ऐसे बाहर ऐसी जगहों पे शाम को ना खेलें जहां बहुत ज्यादा मच्छर हो या जहां बहुत ज्यादा,
0: खासकर पार्क्स में मैम इस टाइप इस टाइम में,
1: और जाएं तो फिर वो एटलीस्ट अपने आप को ठीक से कवर करके जाएं
0: जी। और मैम अगर बच्चों के बाद हम बाद उनके बाद बात बुजुर्गों की करें, तो कैसे घर के बड़ों का ख्याल रखा जाए इस मौसम में?
1: हाँ, और बुजुर्गों के लिए तो बहुत जरूरी है कि थोड़ा वर्जिश जरूर करें, थोड़ा टहलें, थोड़ा बाहर निकलें, थोड़ा डेफिनेटली अपना ख्याल रखें। और खाने में तो बिल्कुल सभी को एक ही सा खान पान रखना है, जितना सादा आप खान पान इस बरसात के मौसम में रखेंगे उतना ही आपको हेल्थ में बेनिफिट।
0: मैम जिनको डायबिटिक है या जो बीपी के पेशेंट्स हैं उनके लिए भी आपकी कोई एडवाइस है क्या?
1: तो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए तो डेफिनेटली शुगर तो नहीं लेना है, और इस सीजन में मन करता है कि बहुत सारी मीठे मीठे,
0: क्योंकि फेस्टिव सीजन भी आ चुका होता है, थोड़ा
1: जूस लेना है या इस तरह की चीजें लेनी है। और फ्रूट्स भी बड़े अच्छे अच्छे आते हैं आजकल, वाटरमेलन और ये सारी चीजें आ रही हैं, तो उसको बहुत लिमिटेड क्वांटिटीज में लें। अपना मेडिकेशन का पूरा ध्यान रखें, और बीपी के लिए सॉल्ट, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हम निगलेक्ट कर जाते हैं ना, हम अचार खा लेते हैं, ध्यान नहीं देते कि उसमें नमक कितना चला जाता है। दही तो शायद हम बिना नमक के खाएंगे, बट अचार खा लेंगे या सॉस ले लेंगे, तो इस तरह की चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करें और अपनी हेल्थ का पूरा ख्याल रखें।
0: जी जी, तो श्रोताओं कार्यक्रम जारी है बस इस छोटे से अंतराल के बाद।

0: कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं वेक्टर बोर्न डिजीजेस जैसे खास विषय पर, और इस पर हमें बेहद ही खास जानकारी दे रही हैं डॉक्टर तनु जैन। डॉक्टर साहब, मेरा आपसे एक और सवाल है कि इस मौसम में एक और बीमारी जो अक्सर हो जाती है, आई फ्लू, क्या ये क्यों होती है और कैसे इससे बचाव किया जाए?
1: जी देखिए, आई फ्लू बड़ी कॉमन बीमारी है। ये बैक्टीरिया से होती है और ये एक दूसरे से ट्रांसमिट हो सकती है, कभी वायरस भी होते हैं इसमें, तो ये भी इन्हीं चीज़ों से ट्रांसमिट होती है। और जैसे आपने आंख रगड़ी अपनी और कहीं टच किया तो ये टच से ट्रांसफर हो जाती है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है आप अपना हाथ धोते रहें, तो ये जो हाथ धोना है और इसको हम यूनिवर्सल हैंड वॉशिंग प्रैक्टिस कहते हैं, तो हाथ को जरूर 20 से 30 सेकंड के लिए अच्छे से धोएं, जिसमें कि आप अपनी डिजिट्स को, सारी उंगलियों को, थंब को, उसके बीच में जो आपके डिजिट्स होती हैं उसके बीच में जरूर धोएं और साबुन से अच्छी तरह धोएं। तो बार बार हाथ धोने पे आप 3-4 बीमारियों से अपना बचाव कर सकते हैं। वाटर जो बॉर्न बीमारियां हैं, फूड बॉर्न बीमारियां हैं, और जो बीमारियां आपकी खाने पीने की या नाखून में जैसे आपके कुछ चले जाते हैं कीटाणु, तो उनसे जो बीमारियां होती हैं उन सबसे आप टाइफॉइड खास करके है, तो जरूर आप लोग ये हैंड वॉशिंग प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। हर थोड़ी देर पे आपको लगता है कुछ टच किया है तो 2-1 घंटा पे जाके आप हाथ धो सकते हैं। दूसरा ये है कि आंख को रगड़े ना, साफ पानी से साफ करें, और अगर आपको लगता है कि ज्यादा परेशानी है तो डॉक्टर को जरूर कंसल्ट करें। ऐसा ना करें कि आप अपनी आंख में ऑफ द काउंटर जाके कोई दवाई डालना शुरू करें, क्योंकि आंख एक बहुत बड़ी देन है और उसको थोड़ा लाइटली नहीं लेना चाहिए हमें। तो अगर लगता है कि ये फ्लू में ज्यादा ही आपको प्रॉब्लम हो रही है, यूजुअली आंखें लाल हो जाती हैं, चिपचिपाहट सी होने लगती है, तो सादे पानी से, साफ पानी से उसको फ्रीक्वेंटली वॉश करें, और डॉक्टर जो भी आपको ड्रॉप्स सजेस्ट करें वही ड्रॉप्स यूज करें। ऑफ द काउंटर खरीदें, कुछ ड्रॉप्स बहुत हार्मफुल हो सकती हैं, जैसे कुछ लोग स्टेरॉइड ड्रॉप्स यूज कर लेते हैं, उसकी वजह से आपका इन्फेक्शन और बढ़ सकता है। तो ये जरूर अवॉइड करें, एंड आंख को लेके कभी लापरवाही ना करें।
0: और मैम, कुछ लोग केमिस्ट से जाकर बस दवाई ले लेते हैं।
1: केमिस्ट से जाके प्लीज दवाई ना लें, क्योंकि इसमें आंख की बात है और ये कहीं भी अगर ज्यादा बढ़ गई तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है।
0: मैम, इस मौसम में कुछ लोगों को स्किन एलर्जी भी हो जाती है, इसका क्या कारण है और बचाव के लिए क्या करें? क्योंकि कुछ लोगों को

0: चकते या रेड स्पॉट से हो जाते हैं
1: जी। तो एक्चुअली क्या है कि यूजुअली इस मौसम में तो स्किन एलर्जी थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन जब स्पोर्स होते हैं, हवा में ज्यादा स्पोर्स फैलने शुरू होते हैं, तब जो ये आपका सीजन आता है जब पतझड़ जिसको कहते हैं, उस वक्त पूरे में स्पोर्स जाते हैं, फूल ज्यादा खिलते हैं, तो उसकी जो एलर्जन उसमें से जो निकलते हैं दे कॉज दिस काइंड ऑफ एलर्जी। कुछ लोग बहुत प्रोन होते हैं और कुछ लोग को इतना फर्क उससे नहीं पड़ता है। तो जो लोग ज्यादा प्रोन होते हैं वो एंटी हिस्टामिनिक एंटी एलर्जिक ड्रग ले सकते हैं, और ऐसी जगहों पे अगर वो पता लगा सकते हैं एलर्जी टेस्ट करा के कि उनको स्पेसिफिकली किस चीज से एलर्जी है, तो उसको वो अवॉइड कर सकते हैं।
0: जी डॉक्टर साहब, एक सवाल हमारा और है आपसे कि मलेरिया डेंगू चिकनगुनिया हो जाए तो पूरी तरह ठीक होने में कितना टाइम लगता है और इसके डेंजरस साइंस
1: जी
0: क्या
1: तो
0: है?
1: अब मैं डेंगू से ही पहले फिर भी शुरू करूंगी क्योंकि डेंगू सबसे ही कॉमन यहाँ पर बीमारी है। तो 7 से 10 दिन में यूजुअली ठीक हो जाते हैं और लगभग 60% लोगों को तो पता भी नहीं चलता कि उनको डेंगू हुआ है। मोस्टली लाइट वायरल फीवर होता है और ठीक हो जाता है, लेकिन कुछ लोगों में ऐसा होता है कि ये जो वायरस है ना वो बॉडी में आपके 7 दिन से ज्यादा नहीं रहता है। उसके बाद जैसे इन्फ्लेमेशन जो छोड़ के जाता है उसकी वजह से आपको सारे सिम्टम्स आते हैं। तो अगर आपको बुखार हुआ है और 5 से 7 दिन के अंदर में आपका बुखार ठीक हो गया है लेकिन फिर भी आपको अच्छा नहीं लग रहा, या बुखार दोबारा वापस आ गया है, तेज हो रहा है, 5 दिन 6 दिन हो चुका है, बुखार तेज है, दोबारा वापस आ गया, या शरीर पे चकत्ते आ रहे हैं, या आपको पेट में दर्द मतलियां हो रही हैं, तो जरूर जरूर डॉक्टर को कंसल्ट करें। ये डेंजर साइंस हैं और ये इंडिकेशन देते हैं कि आप का कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। तो इस सिचुएशन में आप जरूर जाएं। और जो मोस्टली एक भ्रांति रहती है कि सिर्फ एक प्लेटलेट्स को देखना है कि प्लेटलेट कम हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, तो उस पर इतना ध्यान ना दें, वो डॉक्टर अपने आप देख लेंगे। ऑफकोर्स वो भी एक इंडिकेशन है जो आपकी बॉडी पे छोटे छोटे पिटिकी जिनको कहते हैं चकत्ते आते हैं या रैशेज आते हैं, तो वो ये इंडिकेट करते हैं कि आपके प्लेटलेट्स हो सकता है कम हो रहे हों। तो ये सारे डेंजर साइंस हैं। अगर आप नहीं ठीक फील कर रहे हैं, बुखार ज्यादा तेज आ रहा है, पेट में दर्द है, तो 5वें 6वें दिन में तो जरूर एक बार कंसल्ट करें
0: जी मैम। और मलेरिया और चिकनगुनिया की बात करें तो
1: मलेरिया में अगर आप बात करें तो यूजुअली मलेरिया में भी वही 7 से 10 दिन मैक्सिमम आपको लगता है ठीक होने में, खासकर आप जब दवाई ले रहे हैं तो वो। और इसी तरह के सिम्टम्स मलेरिया में भी रहते हैं, अगर बुखार नहीं टूट रहा है, बहुत तेज फीवर आ रहा है, वॉमिटिंग है, हेडेक ज्यादा बढ़ रहा है, या किसी तरह के सीजर्स शुरू हो जा रहे हैं, तो ये बहुत ज्यादा डेंजर साइंस होते हैं। इसीलिए मैंने पहले भी बताया कि इसमें ट्रीटमेंट कंप्लीट करना और ठीक टाइम पे डायग्नोसिस कराना बहुत जरूरी है। चिकनगुनिया के भी वो वायरल डिजीज है तो कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट तो नहीं है, तो ट्रीटमेंट वही है कि आप तरल पदार्थ लें और अपना जो भी डॉक्टर आपको फिजियोथेरेपी या जो एक्सरसाइजेस बताएं उनको फॉलो करें। कभी कभी चिकनगुनिया का पेन साल भर तक भी रह जाता है
0: जी, जोड़ों में, क्योंकि कई बार लोग कहते हैं कि बाद में भी उनको
1: डेंगू में भी कई बार आपको काफी दिन तक बॉडी एक रह जाता है, लेकिन चिकनगुनिया में खास करके जोड़ों में पेन 1 साल तक भी कभी कभी चल जाता है। तो डॉक्टर से कंसल्ट करें, जो भी वो दवाइयां आपको सजेस्ट करें वो जरूर लें।
0: मैम, वेक्टर जनित रोग जो है नियंत्रण जागरूकता अभियान से कितनी मदद मिल सकती है?
1: तो एक्चुअली ये जो जागरूकता अभियान है ये जगह जगह पर हमारा चलता है और रेडियो के माध्यम से, जैसे आपका शो है, या रेडियो पे जो छोटे छोटे जिंगल्स हैं, या टीवी के माध्यम से, या स्कूल्स में, कॉलेजेस में, और बड़े बड़े संस्थानों में जो हमारे कार्यक्रम चलते हैं वो लगातार जानकारी देते हैं लोगों को इस बारे में। और ख़ास करके हमारे ग्रामीण इलाकों में जो हमारी आशा बहनें हैं
0: जी,
1: है ना, जो हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के स्टेक होल्डर्स हैं, टीचर्स हैं, या बाकी हमारी ANMs हैं, और हमारे जितने भी पंचायती राज मेंबर्स हैं, वो सारे लोग मिलके इस जागरूकता अभियान का एक पार्ट बनते हैं और एक जन आंदोलन की शेप में जब ये चलता है तो इसके तहत बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। और इसी के चलते हुए हमारे देश में इतनी भारी गिरावट वेक्टरबॉर्न डिजीजेज में हाल के टाइमों में देखी गई है। तो मेरे को ज़रूर लगता है कि सब लोग अगर इसमें मिलके सहयोग देंगे और साथ देंगे, क्योंकि ये ऐसी जगहों पे ब्रीड करता है जहाँ पे हर सरकार का इंसान तो नहीं पहुँच सकता, क्योंकि घर घर में ब्रीडिंग हो रही है। तो घर घर को एक एम्बेसडर बनना पड़ेगा, इसके लिए
0: आगे आना,
1: मेहनत करनी पड़ेगी और आगे आना पड़ेगा
0: जी। क्योंकि मैम आप कार्यक्रम में समय बहुत थोड़ा सा रह गया है, हम आपसे जानना चाहेंगे कि वेक्टर बोर्न डिजीजेस से बचने के डूज एंड डोंट्स क्या है, क्योंकि आपने बहुत अच्छे से विस्तार से हमें जानकारी दी, लेकिन अगर हमारे कोई श्रोता स्टार्टिंग में हमारा प्रोग्राम नहीं सुन सके तो वो अब जान लें कि डूज एंड डोंट्स क्या है।
1: तो हम डोंट्स से पहले शुरू करते हैं कि आप अपने घर के आसपास गंदगी ना जमा होने दें, अपने घर में कहीं पर भी पानी का ठहराव ना होने दें। अगर

0: आपके घर में कहीं पानी का ठहराव है तो उसको खाली करके ज़रूर, जैसे मैंने बताया, रगड़ के अच्छे से साफ करके सुखा के वहाँ पे रखें। इसके साथ साथ ही अपने घरों में जितना हो सके आप अपने जाली के खिड़की दरवाजे रखें जो शाम को बंद करें। मच्छरदानी के अंदर ज़रूर धोएं, खास करके प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, छोटे बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं जिनके ऊपर बीमारी का असर ज़्यादा पड़ सकता है, जिनकी इम्यूनिटी लो होती है और उनको सिम्टम्स और कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होते हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि पूरा ख्याल रखा जाए। अगर किसी को बुखार होता है तो बहुत ज़्यादा उसको डिले ना करें, ज़रूर डॉक्टर से सलाह लें। पैनिक करने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन 24 से 48 घंटे के अंदर में आप डॉक्टर से सलाह लें और अगर ज़रूरत है तो टेस्ट ज़रूर कराएं। और बाकी खान पान का ख्याल रखें, हल्का खाना खाएं, हाथ ज़रूर धोते रहें, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और अगर किसी को खांसी जुकाम या वायरल जो आजकल फ्लू चल रहा है वो है, तो खुद भी एक हमारे अंदर चेतना होनी चाहिए कि हम दूसरों को ना फैलाएं,
1: आइसोलेट
0: जी अपने को आइसोलेट कर लें, थोड़ा मास्क पहन लें, दूरी बनाए रखें, या जब खांसे या छींकें तो अपना मुंह या हाथ लगा के कवर करके मुंह को, तब जी। तो ये सब प्रिकॉशंस हम लेंगे तो जरूर हम मॉनसून को एंजॉय कर सकेंगे, बरसात को एंजॉय कर सकेंगे और बीमारियों में भी स्वस्थ रह सकेंगे।
1: तो श्रोताओं, ये था हमारा आज का विषय जो जुड़ा था वेक्टर बोर्न डिजीजेस या मच्छर जनित रोगों से होने वाली समस्याओं से, और इस पर हमें बेहद खास जानकारी दी हमारी विशेषज्ञ डॉक्टर तनु जैन ने, जो है डायरेक्टर नेशनल सेंटर फॉर वेक्टर बोर्न डिजीजेस, DGHS, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। डॉक्टर तनु, आप यहाँ आई और हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारियों से अवगत कराया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: पूजा जी, धन्यवाद आपका।
1: श्रोता हूँ आज के लिए, अपने दोस्त पूजा को भी दीजिए इजाजत। नमस्कार।
2: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।

नमस्कार, पेश है एफएम रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापान की रक्षा मंत्री शिंजीरो कोई जूमी के बीच आज नई दिल्ली में बैठक हुई। दोनों नेताओं ने समुद्री सुरक्षा सहयोग पर प्रबंधन समझौते पर हस्ताक्षर किए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सिंगापुर में प्रधानमंत्री लॉरेंस वॉन्ग से

0: मुलाकात की। दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक साझेदारी के प्रारूप के कार्यान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा की। गृह मंत्री अमित शाह चेन्नई के कोवलम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। वे आज पश्चिम बंगाल में कई कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। दिल्ली के उप राज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने राजधानी में आगामी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की तैयारियों की समीक्षा बैठक की। बैठक में सभी मोर्चों पर निर्बाध बहु एजेंसी समन्वय और समयबद्ध क्रियान्वयन की आवश्यकता पर बल दिया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पटना में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत चालू वित्त वर्ष में निर्मित 2,35,000 मकानों की चाबी लाभार्थियों को सौंपी। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 68 लाख रूपये से अधिक की बेहिसाब नकदी बरामद की। सड़क और परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने आज नई दिल्ली में दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा के साथ एक पेड़ मां के नाम पहल के तहत पौधारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। शिक्षा मंत्रालय ने युवा संगम के 7वें चरण के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख इस महीने की 31 तारीख तक बढ़ा दी है। बांग्लादेश में 35 साल के लंबे अंतराल के बाद आज राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ नए आर्थिक युद्ध की घोषणा की है। रूस ने कल रात यूक्रेन की राजधानी कीव पर मिसाइलों से हमला किया। इसमें 6 लोग मारे गए और 33 अन्य घायल हो गए। BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद महिला डबल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची और FIH हॉकी विश्व कप के पूल डी के अपने अंतिम मैच में भारतीय महिला टीम आज इंग्लैंड का सामना करेगी। मैच भारतीय नियमानुसार शाम 6:30 बजे से शुरू होगा। तो ये थे अब तक के मुख्य समाचार और अब हम आपको लिए चलते हैं अपने अगले कार्यक्रम की ओर, जिसका नाम है संदेश टू सोल्जर्स।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स।

नंदन वंदन अभिनंदन आप सभी का हमारे आज के कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स के इस अंक में हार्दिक अभिनंदन है। मैं गीतिका ओनियाल आप सभी का स्वागत करती हूं और आपसे वादा करती हूं कि हर बार की तरह आज का हमारा ये कार्यक्रम आपके दिलों में एक नई उम्मीद जगाने वाला है, क्योंकि हमारे लिए कोई कहीं मुस्तैद है, कार्यरत है, जो अपनी जान को अपनी हथेलियों में लेकर चलता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो देश की सेवा में सर्वत्र अपना सर्वत्र न्योछावर किए आगे बढ़ रहा है, हर दिन हर रात। आपसे साझा करना चाहेंगे कि आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं शिव शंकर कुमार जी, जो इंस्पेक्टर हैं जनरल ड्यूटी सहस्त्र सीमा बल में, आजकल गैंगटॉक में कार्यरत हैं और इन्हें गैलेंट्री मेडल से भी सम्मानित किया गया है। और सबसे प्यारी और खूबसूरत बात आज के अंक की ये है कि ये सीधा गैंगटॉक से यहाँ पहुंचे हैं आकाशवाणी के स्टूडियोज में आपको अपनी यात्रा से अवगत कराने के लिए, रूबरू कराने के लिए। हर सिपाही हर ऑफिसर की अपनी यात्रा होती है, लेकिन उस यात्रा का

0: मंतव्य सिर्फ देश सेवा होती है। तो देश सेवा को समर्पित हमारे आज के मेहमान शिव शंकर कुमार जी का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। शिव शंकर कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं इंस्पेक्टर शिव शंकर कुमार SSB की ओर से आप सभी श्रोताओं को जय हिंद कहना चाहूँगा। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी से जुड़ने का अवसर मिला है, इसके लिए मैं ऑल इंडिया रेडियो टीम का भी धन्यवाद करना चाहूँगा। SSB का मुख्य उद्देश्य देश की सुरक्षा के साथ साथ सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति सुरक्षा को बनाए रखना है। इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए हमारे SSB के सभी कार्मिक दिन रात पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ अपना काम कर रहे हैं। SSB हमारी इंडो नेपाल बॉर्डर, इंडो भूटान बॉर्डर के साथ साथ इलेक्शन ड्यूटी, इंटरनल सिक्योरिटी ड्यूटी को भी बखूबी अंजाम दे रही है। एक बार फिर से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा पूरी टीम का।
0: जी इंस्पेक्टर शिव शंकर कुमार जी, आपने जिस तरह से व्याख्या की यहाँ पर SSB की, इससे ये साबित होता है कि आप देश के साथ साथ अपनी सेवाओं से, सेनाओं से कितना प्रेम करते हैं। और आज आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं सहस्त्र सीमा बल का, उन तमाम सैनिकों का, उन तमाम अधिकारियों का जो कहीं ना कहीं अपनी कर्तव्य निष्ठा के साथ अपनी, आप कहते हैं ना कि अपने आत्मनोबल या आत्मबल तो हमें हमारी सेवाएं सेनाएं देती हैं, पर हम किस तरह से अपने आप को समर्पित करते हैं वो भी सेनाओं के माध्यम से काबिल-ए-तारीफ है। अगर आपके व्यक्तिगत जीवन की बात की जाए तो नन्ना मन
1: जी,
0: लंबी उड़ान, छोटे छोटे पंख, आपका जो जीवन है खास तौर पर आपके बचपन की बात की जाए तो किस तरह के बच्चे थे आप? क्या शैतान थे और पढ़ाई में कितना मन लगता था? कैसा माहौल था घर में?
1: बचपन तो मेरा बिहार में सीतामढ़ी, जो एक बाजपट्टी पड़दौरा गांव है, वहाँ बीता है। मेरा परिवार का माहौल बहुत खुशनुमा माहौल था और हमेशा इनकरेजिंग मिलता था काम करने के लिए। शरारती बच्चे तो थे ही, लेकिन हमारे परिवार से हमें मेहनत और अनुशासन के प्रति हमेशा सजग रहने को सिखाया गया है
0: जी।
1: और अपने काम को पूरी ईमानदारी से करने का भी एक हमारे पिताजी सिखाते थे कि पूरी ईमानदारी से कोई भी काम को करना है तो पूरी ईमानदारी से करना है, लगन के साथ करना है। तो वो हमारे अंदर हमेशा के लिए रह गया और आगे चल के हमारे जब भी हमारे प्रोफेशन लाइफ में भी वो काम किया है
0: जी। कहते हैं कि हमारा जो परिवेश है, हमारा जो परिवार है, उसका बहुत बड़ा हाथ होता है हमारे विकास में। आज हम जो कुछ भी हैं अपने परिवार की वजह से और जो भी संस्कार आपको प्राप्त हुए वो देश सेवा में निहित है, नजर आ रहे हैं। और आज जब आप अपनी वर्दी पहने यहाँ FM रेनबो के स्टूडियोज, आकाशवाणी के स्टूडियोज में बैठे हैं, तो आपके माता पिता जिस वक्त आपको सुन रहे होंगे, घर परिवार वाले सुन रहे होंगे, वो इस बात की मिसाल दे रहे होंगे कि हाँ, हमारे बच्चे ने अपने लिए नहीं, अपने देश के लिए जो बेड़ा उठाया है काबिले तारीफ है। तो शिव कुमार जी, आप, शिव शंकर कुमार जी, आप हमें ये बताइए कि कहाँ से प्रेरणा मिली कि आपको देश सेवा में इस पथ पर चलना है और SSB ज्वाइन करने का फैसला कैसे लिया?
1: मेरे लिए वर्दी हमेशा सम्मान और जिम्मेदारी की प्रतीक रहा है। मन में हमेशा ऐसी इच्छा थी कि फौज के प्रति, देश के प्रति कुछ करना है, ऐसा काम करे जो देश और समाज में अपना योगदान भी दे सके। इसी सोच को जब हमने ग्रेजुएशन पास किया तो सुरक्षा बल में जाने का फैसला किया। उसके बाद SSC की फॉर्म आई, उसमें मैंने पास करके और फिर SSB को ज्वाइन किया है। एक SSB एक ऐसा माध्यम रहा, एक ऐसा अवसर रहा जिसके देश सेवा के साथ साथ देश सेवा करने का पूर्ण मौका मिला
0: जी। और ये मौका आपके जीवन में एक सुखद अनुभूति लेकर आया, वर्दी पहनना, फिर देश सेवा में जितने भी ऑपरेशंस में आप कार्यरत रहे उनके माध्यम से कहीं ना कहीं ये अनुभूति जरूर हुई होगी कि अगर मैं सेना ना ज्वाइन करता तो ये मौका मुझे कहाँ मिलता, कहाँ मैं अपने देश का परचम लहरा पाता। तो ये सौभाग्य की बात है कि सेनाओं ने आपको चुना और सहस्त्र सीमा बल आपको बल दे रहा है आज, और आप इस बल से देश सेवा कर रहे हैं, इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती। तो ये बताइए कि आपने ग्रेजुएशन किया और ग्रेजुएशन के उपरांत आपने एग्जाम क्लियर किया, क्या प्रक्रिया रही, कैसे पहुंचे और कितने अटेम्प्ट्स किए, कितने अटेम्प्ट्स में आपको यह हासिल हुआ, क्या कुछ और भी करने की सोच रहे थे साथ साथ या सिर्फ ये था कि फौज में ही जाना है?
1: ठीक, ये मेरी पहली अटेम्प्ट ही थी और मैंने 2012 में ये SSB को ज्वाइन किया था और इसकी

0: ये जो फॉर्म थी एसएससी के थ्रू आई और 2010 में इसका प्रोसेस शुरू हो गया था। पूरी भर्ती जो होती है वो फिजिकल होता है, मेडिकल होता है, रिटेन होता है, इंटरव्यू होता है, सारी प्रक्रिया के चयन करने के बाद, पास करने के बाद मेरा चयन हुआ था। इसमें फिजिकल टफनेस के साथ साथ मेंटल टफनेस की भी परीक्षा होती है इसमें। अगर वो सारा चीज़ आप पास कर जा रहे हैं तो फिर आपका चयन हो जाता है। उस समय एक ही बात मन में था कि अगर मौका मिले तो मैं भी अपने इस काम को पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ ये करूँगा।
1: जी, तो वो कौन सा वर्ष था जब आपका चयन हुआ, और चयन होने के बाद जब ये खबर आप अपने परिवार तक ले गए तो उनकी क्या प्रतिक्रिया थी?
0: ये 2012 में हुआ है। 2012 में हमें SSB ज्वाइन करने का मौका मिल गया था। परिवार के लिए तो ये बहुत खुशी और गर्व का विषय था। लेकिन एक छोटा सा वो भी था कि फौज में जा रहा है तो फौज में घर से दूर रहेगा। उनके मन में एक था कि घर से दूर रहेगा, लेकिन उनका हमेशा सपोर्ट रहा है कि हाँ चलो जो भी करना है अपने मन से ईमानदारी से करते रहना है, मुश्किल परिस्थितियों में भी ड्यूटी करना है तो उसके लिए भी परिवार का साथ होना बहुत जरूरी है। उन्होंने हमेशा साथ किया दिया है
1: और उसी साथ के चलते आप आज यहाँ तक पहुँच गए। सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर तक का सफर आपने पूरा किया, इसके बारे में चर्चा जरूर करेंगे। ये भी बताएं कि जब आप घर परिवार के साथ साथ जब जिस जगह से आप संबंध रखते हैं, आपके नाते रिश्तेदार दोस्त, उन तक जब ये बात पहुंची कि हमारा दोस्त या हमारा परिवारजन अब SSB ज्वाइन करने वाला है, तो उन्होंने क्या कहा आपसे? क्या कभी किसी ने ऐसा कहा कि आप जैसा बनना चाहते हैं, हम भी SSB ज्वाइन करना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं देश की?
0: सभी के लिए ये, हमारे गांव वालों के लिए भी ये गर्व की बात था कि हमारे बीच का एक लड़का कोई जाकर फौज में भर्ती हो रहा है, वो सब के लिए गर्व की बात था। और एक तो आइडल बन ही जाता है गांव समाज के लिए कि हाँ कोई भी जाए तो वो उसके जैसा बनना है। मैं ये नहीं मानता हूँ कि मेरे जैसा ही बनना है, सब अपने अपने क्षेत्र में काम करे वो ज़्यादा जरूरी है।
1: जी, पर ऐसा तो ज़रूर होता होगा कि जब आप अपने घर जाते होंगे तो आपके अपने आपके दोस्त, आपके परिवारजन एक जमावड़ा सा लग जाता होगा और कहते होंगे सुनाओ ना कुछ किस्से कहानियां, क्या कुछ होता है SSB में, जहां जिस बटालियन के साथ जाते हो क्या कुछ खास हुआ? क्योंकि कहीं ना कहीं हमें बहुत उत्सुकता रहती है कि हमारे जो देश के जो वीर हैं ना कैसी जिंदगी जीते हैं। हम आम जनमानस बस आपके किस्सों को दोहराते हैं, लेकिन जब आपकी जुबानी इनको सुनते हैं ना तो गर्व से सीना फूल जाता है। आज जिस कार्यक्रम के माध्यम से भी जितने लोग हमें सुन रहे हैं, संदेश आने हम तक पहुंच चुके हैं, तो कहीं ना कहीं मन में जिज्ञासा रहती है कि कैसा जीवन जीते हैं। ये तो जानते हैं कि मुस्तैद रहते हैं, लेकिन उसके अलावा भी कोई जिंदगी ऐसी होती होगी जो हम नहीं जी पाते, और यही कारण है कि आज देश के युवा भावी पीढ़ी फोर्सेस ज्वाइन करना चाहते हैं। तो ऐसा होता होगा आपके साथ?
0: ये होता है। फौज ऐसी संस्था है जो एक जॉब नहीं देती, एक लाइफ देती है
1: जी,
0: ये पूरा जीवन देती है हमको। आप अगर आप इसमें जीना चाहते हैं तो पूरी लाइफ जो है वो देती है। और किस्से कहानियां तो चलते रहते हैं, घर पे जाते हैं तो जो भी किस्से कहानियां वो चलते रहते हैं, सभी उत्सुक रहते हैं कि कुछ तो बताएं फौज में कैसे चलता है, क्या होता है, नहीं होता है, ये सब तो चलते रहता है। और ड्यूटी के टाइम में ड्यूटी, और ड्यूटी जब नहीं रहती है तो हम लोग भी रिलैक्स होके रहते हैं और काम करते हैं
1: जी। लेकिन लक्ष्य, जिस लक्ष्य के लिए, जिसकी प्राप्ति के लिए आपने मेहनत की, वो लक्ष्य आपको प्राप्त हुआ, और लक्ष्य प्राप्ति के साथ साथ जैसे ही आप अपना एग्जाम क्लियर किया, हर चरण में आप उत्तीर्ण हुए, पास हुए, उसके उपरांत तो ट्रेनिंग जो एक अहम हिस्सा रही, तो ट्रेनिंग का सफर कैसा रहा, कहाँ ट्रेनिंग हुई, और क्या आप ये मानते हैं कि इस ट्रेनिंग ने आपको पूर्ण रूप से तैयार कर दिया था सेवाएं देने के लिए?
0: मेरी पोस्टिंग सबसे पहले 2012 में हुई, जब मैं बेसिक ट्रेनिंग करने के लिए CTC सलोनीबारी असम में है वहाँ गया। वहाँ से एक सिविलियन को कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाता है एक फौज में आने के लिए, फौजी बनने के लिए, उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया गया 13 महीना का जो बेसिक ट्रेनिंग था उसमें। इससे ये होता है कि हमारा सिविल लाइफ और फौज के लाइफ थोड़ा डिफरेंस होता है। मतलब फौज में कैसे किससे बात करना है, कैसे चलना है, कैसे रहना है, सारा चीज़ को वो 13 महीने के अंदर में हमें हमारे इंस्ट्रक्टर लोग ने, हमारे जो भी अधिकारी लोग हैं उन्होंने हमें सिखाया, उसको पूरी तरह से मजबूत बनाया। फिजिकल टफनेस से लेकर मेंटल टफनेस तक सभी चीज़ को हमने सिखाया गया उसके उसी दौरान। उसके बाद हमारी पोस्टिंग आगे होती चली गई। उसके बाद मेरी पोस्ट

0: सबसे पहले 53 बटालियन फालाकाटा में हुई, जो इंडो भूटान बॉर्डर को मैन करती है, वहाँ पे ड्यूटी करती है। उसके बाद 2018 में मेरी पोस्टिंग सीतामढ़ी 51वीं बहनी है, वहाँ पे जो इंडो नेपाल बॉर्डर को ड्यूटी करती है, मैन करती है, वहाँ पे हमारी ड्यूटी हो गई। वहाँ से होने के बाद हमें 2021 में ANO जो एंटी नक्सल ऑपरेशंस है वो 16वीं वाहिनी जमुई बिहार में हमारी पोस्टिंग हो गई, वहाँ पे हमने दी। और फिलहाल मैं SSQ गैंगटोक में अपनी सेवाएं एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में, एक ऑफिस ड्यूटी के रूप में दे रहा हूँ।
1: बहुत खूब, बहुत खूब। तो हम यही कहेंगे कि ये सफ़र, ये कारवां यूं ही जारी है और जारी रहेगा। सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर बने हमारे शिव शंकर कुमार जी, और आज इंस्पेक्टर के रूप में हमारे साथ, हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। तो इनके सफ़र के बारे में और चर्चा करेंगे। और आप सभी श्रोता जो संदेश भेजना चाहते हैं 9868107070 इस नंबर के माध्यम से आप संदेश भेजिए और अपनी भागीदारी निभाइए। इस बात का प्रतीक चिन्ह बनिए कि हम देशवासी अपने देश से कितना प्रेम करते हैं। सेवाओं के माध्यम से हमारे जो सोल्जर्स हैं, हमारे जो ऑफिसर्स हैं, जो नित्य प्रति कार्यरत रहते हैं और जिनके लिए सिर्फ देश सेवा ही सर्वोपरि है, उनको सलाम करते हैं संदेश के माध्यम से।

0: ये तो हम अपनी फौजियों से ही सीखते हैं। अपनी तीक्ष्ण बुद्धि, कर्तव्य निष्ठा और देश के प्रति प्रेम ने हमेशा इन्हें लक्ष्य प्राप्त करना ही तो सिखाया है, और इस लक्ष्य प्राप्ति की वजह से हमारे देश भारत ने हमेशा परचम लहराया है, अपने फौजियों की वजह से और इनके देश प्रेम की वजह से। और इसी कड़ी में आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं इंस्पेक्टर शिव शंकर कुमार सहस्त्र सीमा बल से। और जैसा कि मैं साझा कर चुकी हूँ कि आजकल ये गैंगटॉक में कार्यरत हैं और सीधे गैंगटॉक से यहाँ आकाशवाणी के स्टूडियो आए हैं, यही इनकी कर्तव्य निष्ठा है, यही देश प्रेम है। और सहस्त्र सीमा बल ने जैसे ही इन्हें कहा कि आपको जाना है और पहुँचना है, देखिए ये तुरंत कल चले और आज यहाँ पहुँच गए। आपसे ये जानना चाहते हैं हम शिव शंकर कुमार जी, एक लंबा सफ़र तय करता है एक फौजी, 2012 में आपकी नियुक्ति हुई, आप सब इंस्पेक्टर बने, फिर 2018 में इंस्पेक्टर बने, ये सफ़र कितना चुनौतीपूर्ण और जिम्मेदारियों से भरा हुआ था। पदोन्नति अपने आप में हमें सुखद अनुभूति कराती है, लेकिन वो अपने साथ बहुत सारी चुनौतियां और जिम्मेदारी लेकर आती है।
1: ये सफ़र मेरे लिए बहुत सीखने वाला रहा है। 2012 में मैं सब इंस्पेक्टर नियुक्त हुआ था, उसके बाद एक प्रक्रिया है, अगर वैकेंसीज हो और आपका सर्विस रिकॉर्ड ठीक हो तो आपको एक डिपार्टमेंट आपको प्रमोशन देती ही देती है
0: जी।
1: उसके साथ जब 2018 में मुझे इंस्पेक्टर बनाया गया था, रैंक बढ़ने के बाद जिम्मेदारियां भी बढ़ती है
0: जी।
1: इस दौरान मैंने अपने जितने भी वरिष्ठ अधिकारी हैं उनसे भी बहुत कुछ सीखा, और जो हमारे सहपाठी है, कार्मिक है, उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि एक सिविलियन होकर आकर फौज में ट्रेनिंग के बाद अगर ऑन ग्राउंड जो ड्यूटी करता है उसको सीखने के लिए, जो पहले से जो भी काम कर रहे हैं उनसे सीखने को मिलता है, वो हमारे दिनचर्या में शामिल हो जाता है
0: जी। जी, वो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता है और आपको ज़िंदगी को जीने लगते हैं और लगने लगता है हम इसी के लिए बने थे, और जिसके लिए बने थे आज उसके लिए कार्यरत है, आपकी रग रग में शामिल हो जाता है। शायद सेनाएं आपको इस तरह से तैयार करती हैं कि बस आपके रगों में, आपके खून में सिर्फ सेना है और देश प्रेम रह जाता है जी। अच्छा, हमें ये भी बताएं कि जब आप सेनाएं ज्वाइन करते हैं, जब आपने SSB ज्वाइन की, तो निश्चित परीक्षण के अंतर्गत आपको फिर आगे पोस्टिंग्स मिली, लेकिन प्रशिक्षण का सिलसिला फौज में जाने के बाद कभी खत्म नहीं होता, वो तो बरकरार रहता है ना। तो क्या आपको लगता है कि जो भी ट्रेनिंग्स आपने बीच बीच में की या करते आ रहे हैं, इसने आपका निर्माण किया है, इसने आपको पूर्ण रूप से एक फौजी होना भी सिखाया है और कैसे चुनौतियों से लड़ा जाए ये भी बताया है?
1: प्रशिक्षण ही किसी को बेटर बनाती है। पहले हमने बेसिक ट्रेनिंग किया, उसके बाद समय समय पर ऑर्गेनाइजेशन हमको कोर्सेज कराती रहती है, इन प्रोफेशनल कोर्सेज हो और ट्रेनिंग भी हो वो कराते रहती है। जैसे आपको प्रमोशन भी मिलता है तब भी आपको कोर्सेज करने पड़ते, कोर्सेज क्वालिफाई करने पड़ते, तब आपको प्रमोट किया जाता है। उसी तरह से हर कोर्स के लिए, हर ड्यूटी के लिए अलग अलग कोर्सेज है जो आपको प्रोफेशनली साउंड बनाने के लिए कराए जाते हैं। जिस प्रकार से कोई भी कोर्सेज हो, जंगल वारफेयर का कोर्सेज हो, जंगल में कैसे रहना है उसकी ट्रेनिंग कराना हो, जैसे बॉर्डर पर ड्यूटी करना है, इंडो नेपाल बॉर्डर को कैसे मैन करना, इंडो भूटान बॉर्डर को कैसे मैन करना, उसकी भी ट्रेनिंग, ये अनवरत जारी रहता है। और फौज, मैंने पहले भी बताया, एक लाइफ है, तो इसमें अनवरत जारी रहेगा कोर्सेज कराना, जिससे कि आप और टफ हो सके और अपने काम को अच्छे तरह से कर सके, इसीलिए ट्रेनिंग हमेशा जरूरी है
0: जी। और ना शब्द तो कभी होता ही नहीं आपकी डिक्शनरी में, क्योंकि सेनाएं आपको हमेशा यही सिखाती हैं,
1: ना तो है ही नहीं,
0: इम्पॉसिबल तो है ही नहीं। बस जैसा कि हमने कहा कि लक्ष्य प्राप्ति ही आपका अल्टीमेट गोल है, जिस काम को आपको दिया गया उसको आपको पूर्ण करना है, यही आपकी जिम्मेदारी है,
1: और हम लोग उस जिम्मेदारी को पूरी तरह बखूबी निभाते भी है
0: जी, निभाते हैं। और एक बात व्यक्तिगत पूछना चाहूंगी, एक फौजी होने के नाते घर भी है, परिवार है, तमाम रिश्ते हैं और एक तरफ देश प्रेम है, तो इस कहते हैं कि एक फौजी के मन में कभी कोई जंग नहीं होती, उसके वक्त उस मतलब परिवार और देश को लेकर उसके मन में सिर्फ देश प्रेम होता है कि बस अब देश के लिए समर्पित है, माना कि घर है, परिवार है, भावनाएं हैं, तो इस चीज को आप किस तरह से अपने जीवन में समाहित करते हैं?
1: थोड़ा मुश्किल है, लेकिन परिवार का अगर सहयोग मिलते रहे तो ये सब आसान हो जाता है।

0: परिवार और नौकरी के बीच में ये सामंजस्य बैठाना, अगर परिवार से साथ मिलता है तो ये एकदम आसान हो जाता है। सुरक्षा बल की नौकरी में कई बार परिवार के जो महत्वपूर्ण अवसर होते हैं उसमें भी हम लोग नहीं आ पाते हैं, तब भी एक परिवार का जो सहयोग होता है अगर वो मिलते रहता है तो सारा आसान हो जाता है।
1: जी, सब कुछ आसान हो जाता है। घर परिवार से आपको ये कहा जाए कि जाओ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करो और जाओ अपने कर्तव्यों को पूर्ण करो, क्योंकि हमारा सम्मान तुम्हारे सम्मान में है, क्योंकि जब जब तुम अपनी जिम्मेदारी निभाओगे तब तब हम गर्व से कहेंगे कि हमारा बेटा जो है देश प्रेम में है और देश के लिए कार्यरत है। तो यही तो जज्बा है जो हमें हर वक्त अपनी ओर आकर्षित करता है, और कितने ही युवा ये चाहते हैं कि हम फोर्सेस ज्वाइन करें और देश का नाम ऊंचा करें। तो मिट्टी के रखवालों को हमारी ओर से सलाम है।

आप सभी का पुनः स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में। सशस्त्र सीमा बल से इंस्पेक्टर शिव शंकर कुमार आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं और इनकी यात्रा इन्हीं की जुबानी सुनने में जो सुखद आनंद प्राप्त हो रहा है ना जाने कितनों के लिए ये प्रेरणा स्रोत बन रहा है। बहुत सारे संदेश हम तक पहुँच रहे हैं, आप सभी के नाम हम जरूर लेंगे, लेकिन इससे पहले इनकी यात्रा

0: जिसको हम सुनने के लिए इतने ललायत हैं, कहीं भी छूट न जाए। दिल चाहता है इनसे बार बार बहुत सारे प्रश्न किए जाएं। जितना हमें आपके बारे में पता लगा है कि आपको नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कई बार तैनात किया गया है, आपको तैयार किया गया है। कभी महसूस होता है कि अगर आपको ये कार्यभार ना सौंपे गए होते तो आप जो आज हैं वो आज ना होते।
1: जी, ऐसे क्षेत्रों में सबसे जरूरी होता है हमेशा सतर्क रहना। हमारी अपनी ट्रेनिंग और जो हमारे ऑफिसर्स के निर्देशों के अनुसार हम लोग काम करते हैं, ड्यूटी के लिए हमेशा मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार रहना पड़ता है। टीम के साथ साथ एक टीम के भावना के रूप में काम करते हैं, टीम का कम्युनिकेशन एक दूसरे के प्रति ठीक रहना चाहिए और एरिया के बारे में जानकारी होना चाहिए जहाँ पे हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं, तो कोई भी काम आसान हो जाता है।
0: जी, कोई भी काम आसान हो जाता है, लेकिन आसानी से पहले अपने आप को बहुत ज़्यादा तैयार करना होता है। और आपकी तीक्ष्ण बुद्धि, आपकी कर्तव्य निष्ठा और कर्तव्यों का पालन करने की जो आप में गुण निहित हैं, इसकी वजह से ही आपको शायद ऑपरेशन जोश के लिए भी चयनित किया गया, जहां पर आपने अपनी टीम के साथ मिलकर दमखम स्थापित किया और उस, कहते हैं कि उस ऑपरेशन को सक्सेसफुल किया।
1: जी, ये 8 जून की घटना है, 8 जून 2022 की घटना है। ये मेरे टीम के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन था। ये बिहार राज्य के जमुई ज़िले की घटना है, जिसमें हम एक ऐसे सफल ऑपरेशन के बारे में आज बात करेंगे जिसमें हमारी टीम ने एक हार्डकोर नक्सल को न्यूट्रलाइज किया था और उसमें भारी मात्रा में गोला बारूद और अन्य सामग्री भी बरामद किया गया था।
0: जी,
1: ये सफलता मेरी नहीं, पूरी टीम की सफलता है, जिसमें आपसी तालमेल हो, सही समय पे जो मिली सूचना को परिणाम था कि हमने ये ऑपरेशन सफल किया। उसके बाद वरिष्ठ अधिकारियों का मार्गदर्शन, उसके बाद पूरी तैयारी के साथ टीम ने कार्रवाई की और नक्सल को न्यूट्रलाइज किया था। इस तरह के ऑपरेशन किसी एक व्यक्ति की भूमिका नहीं होती है, एक पूरी टीम होती है, पूरी टीम का योगदान होता है इसमें। आसूचना मिलने प्राप्त करने से लेके ऑपरेशन को अंजाम देने तक एक सभी कार्मिकों की अपनी अपनी जिम्मेदारी है और वो अपनी पूरी ईमानदारी और साहस के साथ इस जिम्मेदारी को निभाया था। एसएसबी इस ऑपरेशन के बाद जमुई ज़िले में बहुत सारे नक्सलियों ने अपने आप इस ऑपरेशन के बाद खुद ब खुद सरेंडर किया सुरक्षा बलों के सामने आकर।
0: उनके मन में इतना डर
1: इनके मन में डर भर बन गया था और जस्ट एक सप्ताह के अंदर ही जो ये ऑपरेशन होने के बाद बहुत सारे नक्सलियों ने सुरक्षा बलों और पुलिस के सामने आके खुद ब खुद सरेंडर कर दिया। मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत गर्व के साथ बताना चाहूँगा कि एसएसबी के महत्वपूर्ण योगदान के कारण जम्मू जिला आज पूर्णतः नक्सल फ्री घोषित हो चुका है। इसमें एसएसबी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मैं इस अवसर पर अपनी टीम को भी, सभी साथी कार्मिकों को उनके साहस और मेहनत एवं कर्तव्य निष्ठा के लिए बधाई देना चाहूँगा। सही समय पे सही कार्रवाई करना एक ऑपरेशन के लिए सबसे जरूरी होता है, जो हमारी टीम ने उसको किया।
0: जी, एक बात और पूछना चाहूंगी, जब इस तरह के ऑपरेशंस का आप हिस्सा बनते हैं, एक टीम का हिस्सा बनते हैं, तो निश्चित रूप से अपने सहकर्मियों से भी आप बहुत कुछ सीखते होंगे।
1: काफी कुछ सीखने को मिलता है। मैंने पहले भी बताया कि ये टीम को लेकर काम करने की पूरी टीम काम करती है, जिसमें हम लोग हमेशा कोई भी ऑपरेशन करते हैं तो एक टीम के साथ काम करते हैं। इसमें किसी एक की जिम्मेवारी नहीं होती, सभी की अलग अलग जिम्मेवारियाँ बांटी हुई होती है और वो सभी मिलके इस काम को अंजाम देते हैं। एक सूचना मिलने से लेके ऑपरेशन करने तक सारी की जिम्मेदारियाँ अलग अलग होती है और जब ये ऑपरेशन सफल होता है तो वो सभी के लिए उतना ही गर्व का बात है जितना अगर मैं क्या कहूँ इसको, सभी के लिए गर्व की बात
0: है, हर मेंबर के लिए, जितने भी मेंबर्स हैं। अच्छा, हर मेंबर को उसका कार्यभार सौंप दिया जाता होगा और ये कहा जाता होगा कि आपको ऐसा करना है, ऐसा करने पर जिस तरह से कमांड दिया जाएगा आपको उसी वक्त डिसीजन लेकर कि आपको उसको सुचारू करना है, आप उसी वक्त अपनी बुद्धि से, अपनी, कहते हैं कि हमारी बुद्धि जो है हमें निर्णय लेने में मदद करती है, कमांडर आपका आपको निर्देश देता है, उसके बाद आप तैयार हो जाते हैं उस काम को करने।
1: ग्राउंड में आने के बाद सभी को ऑन ग्राउंड के हिसाब से ही काम करना पड़ता है, लेकिन पहले जो भी प्रशिक्षण मिला हुआ है

0: उसको अपने निहित करते हुए और काम को आगे किया जाता है। हमेशा जो भी ऑपरेशन होता है तो सबसे पहले सभी का काम को बता दिया जाता है कि आपका ये काम है, आपका ये काम है, आपका ये काम है, और सभी अपने अपने काम को बखूबी करते हैं और उसके कारण हमें सफलता मिलती है।
1: बहुत खूब। अच्छा, यहाँ पर आकर आपको लगता होगा जब आप ऑपरेशंस का हिस्सा बनते हैं और जैसा कि हमने कहा कि आप बहुत से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आपने कार्य भी किया है, तो जो प्रशिक्षण आपने हासिल किए हैं, जो आपको प्रशिक्षण दिए हैं सशस्त्र सीमा बल ने, वो आपको लगता होगा कि वो आपके साथ बहुत अच्छा हुआ कि आपको वो ट्रेनिंग मिली, नतीजतन आप आज इतने सारे ऑपरेशंस का हिस्सा बन रहे हैं।
0: ट्रेनिंग सबसे जरूरी है, जितना टफ ट्रेनिंग होगा उतना फायदा मिलेगा ग्राउंड में काम करने के लिए और कुछ बेहतर करने के लिए हमेशा काम करेगा। ट्रेनिंग सबसे जरूरी चीज़ है, टफ जितना ट्रेनिंग होगा उतना फायदा हमको ग्राउंड में काम करने के लिए मिलेगा।
1: जी, और कहते हैं कि कुछ विपत्ति जो है ना बताकर आती है लेकिन कुछ अनदेखी होती हैं, उसके लिए आपको सशस्त्र सीमा बल किस तरह से तैयार करता है?
0: हमेशा कठिन परिस्थितियों के लिए तैयार करके रखता है। फौज ऐसा ही है कि जो कठिन परिस्थिति जब भी आए तब भी एक फौजी खड़ा रहता है वहाँ पे, उसी के लिए फौज रहती ही है।
1: जी, जैसा कि हम ने सभी श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि आपको आपके ऑपरेशन जोश के लिए, जिसमें आपने अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर उस नक्सली प्रभावित क्षेत्र को नेस्तनाबूद किया, और अगर हम गलत नहीं है तो जितने भी आर्म्स और एम्यूनेशन थे उनको भी आपने जब्त किया आखिर में, और आपको 2024 में गैलेंट्री पदक से भी नवाजा गया, वो अनुभूति किस तरह की थी? सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर बनना अपने आप में एक अलग अनुभूति, लेकिन सम्मान मिलना आपके कार्य के लिए वो उससे भी बड़ी बात, उस वक्त कैसा महसूस हुआ?
0: ये पल तो मेरे लिए गर्व और इमोशनल भी था। जब देश की सेवा करते हुए कोई सम्मान मिलता है तो बहुत खुशी भी होती है। इस सम्मान को केवल अपना सम्मान नहीं मानता हूँ, ये पूरी टीम का सम्मान है, और मेडल आगे अपनी जिम्मेदारी को और बेहतर तरीकों से करने की प्रेरणा देता है, और आगे हम लोग भी और मेहनत से और लगन के साथ कार्य करते रहेंगे।
1: जी बिल्कुल, आपने सही बात की कि जब मेडल प्राप्त होता है सुखद अनुभूति होती है, लेकिन उसके साथ बहुत सारी जिम्मेदारियां आप अपने ऊपर और लेते हैं, और ये कहते हैं अपने आप से स्वयं से बात करते हैं और कहते हैं कि अगली बार इससे भी बेहतर कर दिखाएंगे, है ना, और जितनी भी जिम्मेदारियां मिलेंगी उनका भी निर्वाह करते हुए चलेंगे, मन में बात जरूर आती होगी।
0: हमेशा कोई भी ऑपरेशन होता है तो उसके बाद में उसकी समीक्षा होती है कि इस ऑपरेशन को और कितने बेहतर किया जा सके, तो आगे नेक्स्ट ऑपरेशन में उसको और उससे बेहतर किया जा सकता है, और करते हैं हम लोग।
1: जी बहुत बढ़िया। अच्छा, गैलेंट्री पदक के अलावा भी आपको और कई सम्मान दिए हैं SSB ने, उनके बारे में भी हमें बताएं।
0: तो उनके अलावा बहुत सारे सम्मान वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा प्रोत्साहन मिलता है, जिसे हमारे DG महोदय के द्वारा भी DG सिल्वर डिस से नवाजा गया है। एंटी नक्सल ऑपरेशंस में अगर ड्यूटी कर रहे थे वहाँ भी रिवॉर्ड्स मिले हैं, कमेंडेशन भी मिले हैं। हर सम्मान एक खुशी देता है और साथ साथ एक जिम्मेदारी का एहसास भी कराता है कि और इससे बेहतर करना है कुछ।
1: जी, इससे बेहतर करना है, और देश की, चाहे फौज की बात की जाए तो चाहे वो आंतरिक सुरक्षा की बात हो, चाहे वो बाहम सुरक्षा की बात हो, और हर फोर्स अपना अपना कार्य करता है, जो आंतरिक सुरक्षा के लिए कार्यरत है वो आंतरिक करते हैं, जो बाहम के लिए जिम्मेदार है वो बाहम सुरक्षा के लिए कार्य करते हैं, लेकिन उद्देश्य एक ही है, देश।
0: जी,
1: है ना, सिर्फ देश ही याद आता है और बस देश ही समझ में आता है, उसके अलावा कुछ और नहीं।
0: सबसे पहले देश है, देश के लिए कुछ भी करने के तैयार रहते हैं हम लोग।
1: जी बिल्कुल, आपने ठीक बात कही, देश के लिए तो मर मिटने तक के लिए तैयार रहते हैं। जब अपने घरों से निकलते हैं और फौज ज्वाइन करते हैं, और फौज ज्वाइन करने के बाद तो जिस भी ऑपरेशन का हिस्सा बनते हैं तो कभी ये नहीं सोचते कि घर भी लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे, और शायद यही आपकी जो कर्तव्य निष्ठा है, यही जो आपका प्रेम है देश के प्रति, हम देशवासियों को हमेशा ये प्रेरित करता है कि आप हमें जहां भी मिले हम आपको सलाम करें और कहें आप हैं तो हम हैं और आप नहीं तो हम नहीं।

0: और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स, और संदेश टू सोल्जर्स में आज हमारे साथ हैं सशस्त्र सीमा बल से इंस्पेक्टर शिव शंकर कुमार, जिनकी बातें सुनने के बाद कहीं ना कहीं दिल में खुक उठ रही होगी आपकी, और आप भी ये सोच रहे होंगे कि हम भी फोर्सेस ज्वाइन करें और देश के प्रति अपने सम्मान को, हर कोई व्यक्ति ना यही चाहता है कि देश के लिए काश हम कुछ कर पाएं, और सेना ज्वाइन करना हर किसी के दिल में हुक जरूर मारता है। आज हम बात कर रहे हैं इंस्पेक्टर शिव शंकर कुमार जी से, इनकी यात्रा हमने इनकी जुबानी सुनी। शिव शंकर कुमार जी, आपसे जानना चाहते हैं कि अलग अलग बटालियंस में आप तैनात रहे, आप अलग अलग बटालियंस का हिस्सा रहे, क्या कुछ कार्यभार आपको सौंपे गए और वो कार्यभार आपको कितने अच्छे लगे, वो तो आपकी मुस्कान से पता लग रहा है कि आपके लिए हर बटालियन दिल के करीब रही है और बहुत सारी यादें देखी गई है हर बटालियन, तो कुछ कहना चाहेंगे, बताना चाहेंगे अपनी बटालियंस के बारे में?
1: मेरे लिए हर वाहिनी अपने अलग अलग यादें हैं, हर वाहिनी की अलग अलग यादें हैं, वहाँ पे काम करने वाले साथी जो भी रहते हैं वो एक फैमिली का हिस्सा बन जाते हैं, हम अपना सारा सुख दुख जो भी है उस के इर्द गिर्द ही बुनते हैं, हम एक टीम की तरह एक टीम भावना के साथ काम करते हैं, कठिन परिस्थितियों में भी जो भी कार्य किए गए हैं वो साथियों के साथ बिताए हुए छोटे छोटे पल हमेशा याद रहते रहते हैं। मैंने पहले भी बताया कि हमने सभी बॉर्डर पे काम किया है, इंडो भूटान बॉर्डर सबसे पहले हमने किया, इंडो भूटान बॉर्डर का सीनेरियो अलग, फिर इंडो नेपाल बॉर्डर पे आया, इंडो नेपाल बॉर्डर का भी अलग ड्यूटी, उसके बाद हमने एंटी नक्सल ऑपरेशंस में काम किया 16 बटालियन में, जिससे हमें बहुत बड़ी सफलता भी मिली थी वहाँ पे। इसके बाद अभी हम पूरी तरह से ऑफिस ड्यूटी में है, गैंगटोक में पोस्टेड है, तो सारा काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है इसी ड्यूटी के दौरान।
0: जी, ये बहुत प्यारी बात होती है कि जब आपको अलग अलग ऑपरेशन साथ ही साथ अलग अलग तरह के कार्यभार संभालने का मौका मिलता है अपने कार्यकाल में, इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती है। आप फोर्सेस को उतनी अच्छी तरह से जान पाते हैं कि हमारी जो फोर्सेस है क्या कुछ करती हैं, कैसे करती हैं, और यही शायद बहुत खूबसूरत बात होती है। अच्छा, ये बताइए कि हर बटालियन या हर जब जिस जिस बटालियन में आप रहे हैं, तीन तीन साल के अंतराल के बाद आपकी पोस्टिंग बदली होगी, एक बटालियन छोड़ने के बाद, एक पोस्टिंग छोड़ने के बाद कितना दुख होता है?
1: ये काफ़ी दुख होता है, कभी लगता ही नहीं कि वहाँ से निकल के दूसरे जगह चले जाए एक फैमिली बन जाती है, लगता है कि यहीं पे अपनी पूरी नौकरी कर ले, यहीं पे अपनी ड्यूटी कर ले, लेकिन एक प्रोसेस है और उसको हमको मानना पड़ता है। जब ऊपर से आदेश आ गया कि आपकी पोस्टिंग दूसरे जगह कर दी गई है, वो बिना हिचक के हम लोग अपना बैग पैक करते हैं और चल देते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए।
0: जिस तरह जो भी निर्देश दिया जाता है उसी के तहत आप अपने आप को मुस्तैद करते हैं, फिर नई जगह में पहुंचते हैं और फिर अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हैं। अच्छा, ये बताइए, जब किसी टीम में रहते हैं तो आपसी प्रेम तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिस वजह से आप जब उस यूनिट को, उस पोस्टिंग को छोड़ते हैं तो बहुत दुख होता है, लेकिन वो तीन साल का समय कहते हैं कि बहुत आत्मीयता लेकर आता है, सारे सुख दुख एक दूसरे के साथ, अपने टीम मेंबर्स के साथ, अपने यूनिट के सहकर्मियों के साथ आप साझा करते हैं। पार्टी वार्टी करते हैं?
1: पार्टियां होती रहती है।
0: अच्छा,
1: ऐसा कुछ नहीं है, मैंने पहले भी बताया कि फौज एक लाइफ देती है, आप उस लाइफ को पूरी तरह से एंजॉय कीजिए, ड्यूटी है और वो लाइफ भी देती है जो जिसके लिए हम लोग भर्ती होते हैं।
0: जी, अच्छा, आप कुछ देर पहले मुझसे कह रहे थे कि अगर आप यूनिट में ना भी हों, अपने घर गए हों और आपके घर में कोई खुशी का माहौल हो तो वो खुशी आपकी यूनिट में भी मना ली जाती है?
1: फौज में ये परंपरा भी है कि अगर घर में खुशी है तो फोन कर दो और यहाँ पे पार्टी पहले हो जाती है।
0: अरे वाह, क्या बात है मतलब आपके जितने भी दोस्त हैं वहाँ पर अपने हिस्से की पार्टी वहाँ कर लेते हैं, आपकी खुशी में शामिल हो जाते हैं, इससे बड़ी बात और कुछ नहीं। जब आपके साथ है यूनिट में है तब भी एंजॉय कर रही है, तब भी मना रही है, एक दूसरे को सेलिब्रेट कर रही है, और अगर दूर भी है बस बताने भर से वो आपकी खुशी में शामिल हो जाते हैं।
1: फौज की ड्यूटी 24 घंटे की ड्यूटी है, हमेशा सुख दुख उन्हीं के साथ बांट के रहना है, तो उनके लिए ही सारा चीज समर्पित रहता है, हम अपनी टीम के लिए ही हमेशा समर्पित रहता है।
0: अच्छा, ये बताइए कि

0: जब घर आप जाते हैं तो घर से वापस जब आप यूनिट जाते होंगे तो माँ घर परिवार वाले कुछ डब्बे खाने पीने का सामान देते होंगे, आपके साथ बंद कर जरूर जाता होगा।
1: वो सबके लिए होता है,
0: वो सबके लिए होता है। ऐसा तो नहीं होता ना कि एक महीने का सामान है तो वो एक महीने में खत्म होना है, या वो उससे पहले खत्म हो जाता है?
1: नहीं, वो सबके लिए होता है, जो टीम है हमारी वो सबके लिए होता है।
0: हाँ,
1: वो।
0: हाँ, हाँ, हाँ। तो मुझे लगता है कि जाते साथ सब डब्बे खाली हो जाते होंगे।
1: जरूर जरूर।
0: और बड़ी चाह होती है, अरे घर से आए हो ये बताओ क्या लेकर आए हो,
1: हमेशा रहती है चाहत रहती है कि कुछ तो लेकर आया होगा।
0: अच्छा ये बताइए, वैसे तो आप बहुत ज़्यादा अपने काम में व्यस्त रहते होंगे, लेकिन आपके साथ ऐसा कौन है जो साथ चलता है, जिसको आप ये कहते हैं कि ऐसा लगता है कोई ज़िंदगी में है, जिससे बात कर रहे हैं, जो चल रहा है साथ, कोई है ऐसा?
1: एक टीम रहता है, वो हमेशा हमारे साथ चलती है।
0: और रेडियो?
1: रेडियो भी है, वो रेडियो एक लाइफ का हिस्सा है, वो हमेशा आपको चलते रहता है, साथ साथ चलते रहता है, दिन दिनचर्या में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है वो आपको बताते रहती है। हाँ, हमेशा हाँ,
0: ऐसा महसूस होता है किसी की आवाज़ कानों तक पहुंच रही है, लेकिन आप व्यस्त हैं अपने काम में मग्न हैं, लेकिन अपना साथी, वो साथी तो है ही, सहकर्मी तो है ही, लेकिन रेडियो भी साथ साथ है। अच्छी बताइए कि त्यौहार कैसे मनाते हैं आप, सारे त्यौहार मनाते हैं वहाँ?
1: अगर हम यूनिट में मौजूद है तो त्यौहार हमेशा मनता है और एकदम धूमधाम से सेलिब्रेट के साथ सभी चीज होते के साथ मनता है। अगर अगर घर पे नहीं है, अगर यूनिट में है तो यूनिट में बहुत धूमधाम से त्यौहार मनता है, जिससे किसी को ये मलाल ना रहे कि मैं इस बार घर नहीं गया हूँ।
0: हाँ।
1: और बहुत धूमधाम से मनता है
0: जी। और खेलने का शौक कितना है आपको?
1: हम लोग उतने बड़े खिलाड़ी तो नहीं है, लेकिन खेलते हैं, सभी गेम खेलते हैं, वॉलीबॉल हो, क्रिकेट हो, बैडमिंटन हो, सभी खेल में रुचि है और सब समय मिलता है, खेलते रहते हैं हम लोग।
0: और खेल कहीं ना कहीं आपकी इच्छा शक्ति और आपके विकास, आपके शारीरिक विकास में एक अहम भूमिका निभाता है, जो हमेशा आपको सजीव रखता है।
1: फौज की नौकरी करने के लिए सबसे जरूरी है फिटनेस, और अगर आप खेल अपने नियमित हिस्सा रखते हैं तो आपकी फिटनेस भी बनी रहती है।
0: जी बहुत खूब, बहुत बढ़िया। और आपको इतने सारे दोस्तों ने सलाम भेजा है, जय हिंद सर लिखकर भेजा है, यहाँ पर दोस्त ने अपना नाम नहीं लिखा, माफी चाहूंगी दोस्त, नाम लिखते तो शायद आसान हो जाता मेरे लिए पढ़ना। संदेश टू सोल्जर्स का नियमित श्रोता हूँ, तिरुचिरापल्ली विजय कुमार ने आपको नमस्कार भेजा है, और सेना नायक इंस्पेक्टर शिव शंकर जी को जय हिंद वंदे मातरम इन्होंने कहा है, इनकी राष्ट्र सेवा के लिए हमारा हृदय पूर्ण नमस्कार आप स्वीकार करें। आप
1: सभी को जय हिंद मेरा
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों संदेश भेजने के लिए। अच्छा यहाँ पर एक संदेश आया है, नाम इन्होंने नहीं लिखा पर ये कहा है कि अगर हम फोर्सेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो कैसे, हम जब डिग्निटी की बात होती है, साहस की बात होती है, समर्पण की बात होती है, ये आम जनमानस को भी हम कैसे प्रेरित करें कि वो भी अपने जीवन में आत्मसात करें, कैसे उस स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन को अपनी जिंदगियों में शामिल करें?
1: डिसिप्लिन अपने अंदर से आता है, डिसिप्लिन के लिए कहीं से ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप को अनुशासित रखिए, अपने आप डिसिप्लिन आ जाएगी।
0: और वैसे भी हमारे फौजी अपने आप में एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है, जब भी हम इनकी गाथा सुनते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से जब आप घर घर तक पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं मोटिवेशन, डिसिप्लिन सब हमें मिल जाता है। संदेश हमारे पास आया है यहाँ पे यश शिंदे का, और इनको कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा, जय भारत वंदे मातरम इन्होंने लिख भेजा है, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। जय हिंद लिख भेजा है मोनू सेठ ने, और इन्होंने लिखा है मत देख लेना निगाह उठाकर मेरे वतन की तरफ, वरना वक्त भी तुम्हारा होगा, जगह भी तुम्हारी होगी, बस तिरंगा हमारा होगा। बहुत खूब। अगला संदेश हम तक पहुंचा है यहाँ पर शबनम का, बीके कॉलोनी से, और बीके दत्त कॉलोनी से, और ये कह रही है कि जब आपको प्रथम ड्यूटी मिली और ये इन्हीं का गांव है जहाँ आपको मिली, और ये बहुत ज़्यादा खुश हैं, और बहुत ज़्यादा खुश हैं कि आप गैंगटॉक से सीधा यहाँ आकाशवाणी स्टूडियोज पहुंचे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ पर अदा कर रहे हैं सभी दोस्त। मंसूर का यहाँ पर संदेश आया, जय हिंद। यहाँ पर पीयूष ने संदेश भेजा है, चेतन पटेरिया ने ग्वालियर से संदेश भेजा है, यहाँ पर समय कम है, संदेश पूरे नहीं पढ़ पाऊंगे, लेकिन हम शिव शंकर कुमार जी को आपके संदेशों से जरूर अवगत कराएंगे। संदेश भेजने वालों में हमारे पास बिजनौर से संदेश है, और ये है चरण कुमार का, और बहुत बहुत शुक्रिया दो संदेश भेजने का। शिव शंकर कुमार जी संदेश भेजा है इन्होंने, शिव पांडे

0: लखनऊ से संदेश भेज रहे हैं। मोनिश इद्रिस ने बिलासपुर से संदेश भेजा है। संदेश भेजने वालों में बहुत सारे दोस्त हैं हमारे, हम शुक्रिया देना चाहते हैं आपका। नितिश कुमार ने हमें संदेश भेजा है, देखिए आपसे प्रेम करने वालों की फहरिस्त बहुत बड़ी है और हम तो बहुत ज़्यादा खुश हैं इस बात को जानकर कि हमारे फौजियों से कितना प्रेम किया जाता है। अनिल कुमार का चंपावत उत्तराखंड से संदेश आया है। संदेश भेजने वालों में पंडित स्वार्षद संदेश भेज रहे हैं। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दोस्तों का। संदेश भेजने वालों में से एक क्लास 12th के स्टूडेंट भी हैं जो एनडीए एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, अजय अहिरवार ने संदेश हमें भेजा है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त आप सभी का संदेश भेजने के लिए। और इंस्पेक्टर शिवशंकर कुमार जी जो SSP में कार्यरत हैं, आजकल गैंगटॉक में हैं, आपने जिस तरह से व्याख्या की और आप SSB का नाम ऊंचा कर रहे हैं, आप देश का नाम ऊंचा कर रहे हैं। संदेश भेजने वालों में और भी कई दोस्त हैं। KKS रायपुर छत्तीसगढ़ से संदेश आया है। यहाँ पर दोस्त आपका नाम KKS रायपुर CG इन्होंने लिखा है। क्या जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका महोदय। आप आम जनमानस में सैनिक जैसी कर्तव्य निष्ठा और श्रेष्ठ नागरिक बनने की प्रेरणा कैसे दी जा सकती है, इस पर हमने भी बात की है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त। अगर किसी का नाम मैं यहाँ पर नहीं ले पाई हूँ तो आप सभी से माफी चाहूंगी। अवधेश कुमार का औरंगाबाद बिहार से संदेश है। सुमन कर्माकर का सोनितपुर आसाम से संदेश है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपके संदेश हम तक पहुंचे इसके लिए हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं। और धन्यवाद देना चाहते हैं इंस्पेक्टर शिव कुमार जी का जो कार्यरत हैं गैंगटॉक में और सशस्त्र सीमा बल में कार्यरत हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आकाशवाणी के स्टूडियोज में आने के लिए और हमें SSB से जुड़ी हुई इतनी सारी बातों से अवगत कराने के लिए।
1: धन्यवाद सभी को, सभी को जय हिंद। मैं देश के युवाओं से भी इतना कहना चाहूँगा, अपने सपनों पर भरोसा रखिए और मेहनत करते रहिए। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। सभी जी, जो भी देश के युवा है, देश के सेवा और सुरक्षा बल में आना चाहते हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि अपनी फिटनेस को और अनुशासन को बनाए रखिए, आप जरूर चयनित होइएगा। अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि सबके लिए कि अपनी जिम्मेदारी और पूरी ईमानदारी के साथ काम करते रहिए, ये हमारे लिए सबसे बड़ा सम्मान की बात है। सभी को जय हिंद।
0: जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद इंस्पेक्टर शिव शंकर कुमार जी SSB से हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होने के लिए और इतनी सारी बातें साझा करने के लिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं धर्मेंद्र मणि राजेश। भारत और जापान के रक्षा मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी ने बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक में समुद्री सुरक्षा मजबूत करने, मेक इन इंडिया के तहत रक्षा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने और रणनीतिक विश्वास बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों मंत्रियों ने समुद्री सुरक्षा सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जापान के कुमामोतो में आए भीषण भूकंप के बाद भारत की संवेदना और एकजुटता व्यक्त की।
1: हम यह दोहराते हैं कि कठिन समय में भारत किसी भी जरूरी असिस्टेंस, रिलीफ और सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित है। हमारे दोनों देशों के संबंध साझे लोकतांत्रिक मूल्यों, परस्पर सम्मान और एक पुराने सिविलाइज्ड कनेक्ट पर आधारित हैं। अगले वर्ष हम अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस के 75 ईयर्स मनाएंगे और इन वर्षों के दौरान हमारी यह दोस्ती सिर्फ हमारे दोनों देशों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्टेबिलिटी, रेजिलियंस और रूल्स बेस्ड ऑर्डर का एक कॉर्नरस्टोन बन गई है।
0: चेन्नई के पास महाबलीपुरम में गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 31वीं दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की बैठक हुई। इस बैठक में मुख्यमंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने चर्चा की और क्षेत्र की प्रगति, विकास

0: और हितों से जुड़े साझा मुद्दों तथा प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श किया। बैठक में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कोष, बुनियादी ढांचे, पर्यावरण संरक्षण और क्षेत्रीय सुरक्षा के मामलों में सहकारी संघवाद पर बल दिया गया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज उत्तराखंड के मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में 2024 बैच के आईएएस प्रशिक्षु अधिकारियों के द्वितीय चरण के प्रशिक्षण समापन समारोह को संबोधित किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि प्रशासनिक सेवाओं ने देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और जमीनी स्तर पर नीतियों को लागू करने में अहम भूमिका निभाई है। तमिलनाडु के उच्च शिक्षा मंत्री पी विश्वनाथन ने कहा है कि राज्य सरकार का छात्रों और युवाओं के कानूनी अधिकारों को रोकने का कोई इरादा नहीं है। महाविद्यालयों में छात्रों के प्रदर्शन को लेकर विधानसभा में चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि राज्य में अनुशासन और कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से ये परिपत्र जारी किया गया था। उन्होंने बताया कि परिपत्र में कुछ गलतियां थीं जिन्हें सुधार कर इसे दोबारा जारी किया गया है। सरकार ने आज दिल्ली मास्टर प्लान 2047 का अनावरण किया। ये प्लान दिल्ली को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी, पर्यावरण के अनुकूल और समावेशी राजधानी में बदलने के लिए दीर्घकालिक ढांचा प्रदान करता है। विकसित भारत 2047 के अनुरूप दिल्ली मास्टर प्लान का उद्देश्य राजधानी को लोगों के लिए विश्व स्तरीय, समावेशी और आर्थिक रूप से जीवंत शहर में बदलना है। झारखंड उच्च न्यायालय ने आज राज्य सरकार के उस फैसले पर रोक लगा दी जिसके तहत झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC द्वारा आयोजित कई भर्ती परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया था। न्यायालय ने उन उम्मीदवारों को राहत दी है जिन्होंने परीक्षाएं पास कर ली थीं और अपनी नियुक्ति को लेकर अनिश्चितता का सामना कर रहे थे। जस्टिस दीपक रोशन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सफल उम्मीदवारों की याचिकाओं के बाद ये अंतरिम रोक लगाई। अगली सुनवाई के लिए 15 सितंबर की तारीख तय की गई है। बांग्लादेश में 35 साल में पहली बार राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हो रहा है। सांसद देश के 23वें राष्ट्रपति को चुनने के लिए वोट डाल रहे हैं। वोटिंग जातीय संसद में ओपन बैलेट से हो रही है। इस चुनाव में सत्ताधारी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP के उम्मीदवार मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर का मुकाबला पूर्व सेना अधिकारी ओली अहमद से है। ओली अहमद लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के चेयरमैन हैं और जमात इस्लामी के नेतृत्व वाले 11 पार्टियों के विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार हैं। बांग्लादेश के चुनाव के मुताबिक नतीजे आज रात आने की उम्मीद है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK में विरोध प्रदर्शन लगातार बढ़ता जा रहा है जिससे पाकिस्तान का ये दावा झूठा साबित हो रहा है कि अशांति केवल रावलकोट तक ही सीमित है। संयुक्त अवामी कार्रवाई समिति JAAC ने पाकिस्तान के इस दावे को खारिज करते हुए कहा है कि विरोध प्रदर्शन अब पूरे अधिकृत क्षेत्र में फैल चुके हैं। दिल्ली में BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद ने महिला डबल्स के अंतिम 8 में जगह बना ली है। भारतीय जोड़ी ने आज प्री क्वार्टर फाइनल में जापान की रिन इवानागा और की नाकानिशी को लगातार गेम में 21-16, 21-12 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Shagun Chopra. The India-Japan Defense Ministers' meeting was held in New Delhi today. Defense Minister Rajnath Singh and his Japanese counterpart Shinjiro Koizumi co-chaired the meeting. The discussions focused on deepening maritime security, Make in India defense technology and expanding strategic trust. Both ministers signed a memorandum of arrangement on maritime security cooperation. In his opening remarks, Minister Rajnath Singh said, two leading democracies in Asia, India and Japan, share a profound responsibility to ensure peace, stability and prosperity. The minister said a close alignment between India's Mahasagar vision and Japan's free and open Indo-Pacific initiative is more important now than ever before.
2: In difficult times, India remains committed to providing every possible assistance, relief and support. Our relationship is rooted in shared democratic values, mutual respect and a deep civilizational connection. As we mark 75 years of diplomatic relations next year, this enduring friendship will not only benefit our two countries but also strengthen stability, security and resilience across the Indo-Pacific, making it a cornerstone of cooperation.

0: এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। প্ৰিয় শ্ৰোতা, খন্তেক পাছতেই হিন্দী আৰু ইংৰাজীত বাতৰি দিল্লী কেন্দ্ৰৰ পৰা ৰিলে কৰি শুনোৱা হ'ব।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व न्यायाधीश आर सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय उच्चाधिकार प्राप्त जांच समिति का गठन किया है। ये समिति दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस और सुरक्षा कर्मियों के जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग और पुलिस कर्मियों के खिलाफ हिंसा के आरोपों की जांच करेगी। समिति में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा, दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश शैलेंद्र कौर, सीबीआई के पूर्व निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला और मेघालय के सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक एलआर बिश्नोई भी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, जॉय माल्या बागची और न्यायाधीश वी मोहना की खंडपीठ ने कहा कि उच्च स्तरीय जांच समिति कुछ मुद्दों पर प्राथमिकता के आधार पर काम करेगी। इनमें सबसे प्रमुख मुद्दा महिला प्रदर्शनकारियों के खिलाफ लक्षित हिंसा और छेड़छाड़ की कथित घटनाओं से जुड़ा है। झारखंड उच्च न्यायालय ने 11वीं से 13वीं झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा और खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा के अंतर्गत नियुक्तियों को रद्द करने के झारखंड सरकार के फैसले पर रोक लगा दी है। न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक रोशन ने सरकार की परीक्षा रद्द करने की अधिसूचना को चुनौती देने वाली 3 अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। न्यायालय ने निर्देश दिया है कि चुने गए उम्मीदवारों को बहाल किया जाए। न्यायालय ने कहा कि उचित प्रक्रिया और न्याय के सिद्धांतों का पालन किए बिना उन्हें नहीं हटाया जा सकता। मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी। चेन्नई के पास महाबलीपुरम में गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 31वीं दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की बैठक हुई। बैठक में मुख्यमंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने क्षेत्र की प्रगति, विकास और हितों से जुड़े साझा मुद्दों तथा प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श किया।

0: बैठक में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कोष, बुनियादी ढांचे, पर्यावरण संरक्षण और क्षेत्रीय सुरक्षा के मामलों में सहकारी संघवाद पर बल दिया गया। भारत और जापान के रक्षा मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में संपन्न हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी ने बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक में समुद्री सुरक्षा मजबूत करने, मेक इन इंडिया के अंतर्गत रक्षा प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने और आपसी विश्वास बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों मंत्रियों ने समुद्री सुरक्षा सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जापान के कुमामोतो में आए भीषण भूकंप पर भारत की संवेदना और एकजुटता व्यक्त की।
1: हम यह दोहराते हैं कि कठिन समय में भारत किसी भी जरूरी असिस्टेंस, रिलीफ और सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित है। हमारे दोनों देशों के संबंध साझे लोकतांत्रिक मूल्यों, परस्पर सम्मान और एक पुराने सिविलाइज्ड कनेक्ट पर आधारित हैं। अगले वर्ष हम अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस के 75 ईयर्स मनाएंगे और इन वर्षों के दौरान हमारी यह दोस्ती सिर्फ हमारे दोनों देशों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्टेबिलिटी, रेजिलियंस और रूल्स बेस्ड ऑर्डर का एक कॉर्नरस्टोन बन गई है।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज उत्तराखंड के मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में 2024 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा प्रशिक्षु अधिकारियों के प्रशिक्षण समापन समारोह को संबोधित किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि प्रशासनिक सेवाओं ने देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और जमीनी स्तर पर नीतियों को लागू करने में प्रमुख भूमिका निभाई है। सरकार ने आज दिल्ली मास्टर प्लान 2047 का अनावरण किया। ये प्लान दिल्ली को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी, पर्यावरण अनुकूल और समावेशी राजधानी बनाने के लिए दीर्घकालिक रूपरेखा प्रदान करता है। 2047 तक विकसित भारत की परिकल्पना के अनुरूप दिल्ली मास्टर प्लान का उद्देश्य राजधानी को लोगों के लिए विश्व स्तरीय, समावेशी और आर्थिक रूप से जीवंत शहर बनाना है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी के वरिष्ठ नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर को आज देश का 23वां राष्ट्रपति चुन लिया गया। 78 वर्षीय नेता ने देश की संसद जाति संसद में हुए राष्ट्रपति चुनाव में 255 वोट हासिल किए। उन्होंने पूर्व सेना अधिकारी ओली अहमद को हराया है। दिल्ली में बीडब्ल्यूएफ बैडमिंटन विश्व कप चैंपियनशिप में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद ने महिला डबल्स के अंतिम आठ में जगह बना ली है। भारतीय जोड़ी ने आज प्री क्वार्टर फाइनल में जापान की रिन एवानागा और की नाकाशिकी को लगातार गेम में 21-16, 21-12 से हराया। मिक्स डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रिस्टो को चीन की गुओ शिनवा और चेन फांग हुई से 16-21, 5-21 से हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। The Supreme Court has formed a five-member high-powered inquiry committee headed by former top court judge Justice R. Subhash Reddy to examine allegations of excessive use of force by police authorities and security personnel against student protesters in Delhi recently and violence against police personnel. A bench of Chief Justice Suryakant and Justices Joymalia Bakshi and V. Mohana said the committee would also comprise former Punjab and Haryana High Court Chief Justice Ravi Shankar Jha, former Delhi High Court Judge Justice Shalinder Kaur, former CBI Director Rishi Kumar Shukla and retired Meghalaya DGP L.R. Bishnoi. The top court clarified that as a matter of abundant caution, the inquiry undertaken by the high-powered inquiry committee shall not be a one-time exercise. It asked the committee to undertake a continuous and periodic assessment of the issues and shall submit its interim findings periodically. The Jharkhand High Court today stayed until further orders the state government's decision to cancel appointments made through the 11th to 13th JPSC Civil Services Examination and the Food Safety Officer Recruitment. Justice Deepak Roshan passed the order while hearing three separate petitions challenging the government's Tuesday notification cancelling the examinations and appointments. The court directed that the selected candidates be reinstated, observing that they could not be removed without following due process and the principles of natural justice. The court sought a response from the state government and the Jharkhand Public Service Commission and fixed 15th of September for the next hearing. The India-Japan Defence Ministers' meeting was held in New Delhi today. Defence Minister Rajnath Singh and his Japanese counterpart Shinjiro Koizumi co-chaired the meeting.

0: ইমান পৰে শ্ৰোতাসকলে ছানি বৰ্মনৰ কণ্ঠত আধুনিক গীত শুনিলে। প্ৰিয় শ্ৰোতা, খন্তেক পাছতেই সংস্কৃতত বাতৰি দিল্লী কেন্দ্ৰৰ পৰা ৰিলে কৰি শুনোৱা হ'ব।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः जतिन शर्मा। आदौ मुख्य वार्ताः। भारत जापान देशाभ्याम रक्षा सहभागितां दृढ़ीकर्तुं सहमति प्रकटिता। उभावपि देशौ सामुद्रिक सुरक्षा सहयोगाय च व्यवस्था सम्मति पत्रे हस्ताक्षरं कृतवन्तौ। गृहमंत्री अमित शाहः अन्ताराज्यिक विवादान सुरक्षा विकास विषयान् च चर्चयितुं तमिलनाडु राज्यस्य कोवलम नगरे 31वें दक्षिण क्षेत्रीय परिषद उपवेशनस्य अध्यक्षताम् अकरोत्। झारखंड उच्च न्यायालयः जेपीएससी नियुक्तिनाम खाद्य सुरक्षा अधिकारी चयनस्य च निरस्तीकरणादेशे स्थगनादेशं प्रायच्छत्। पाक अधिकृत जम्मू कश्मीरे प्रतिरोध प्रदर्शनानि तीव्रीभूतानि, पाक शासनतंत्रं च जनाक्रोशेन त्रस्तं वर्तते। अपि च भारतस्य त्रिसा जौली अथ गायत्री गोपी चंदः च बीडब्ल्यूएफ विश्वस्पर्धायाः महिलायुगलद्वन्द्वे प्रागुपान्त्यचरणे प्रविष्टवत्यौ। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। नवदिल्ल्यामद्य भारत जापान रक्षा मंत्री स्तरीयोपवेशनं सम्पन्नम्। अस्योपवेशनस्य सहाध्यक्षतां भारतस्य रक्षा मंत्री राजनाथ सिंहः अथ च तस्य जापानी समकक्षीयः शिंजिरो कोइजुमी अकुर्वताम्। अस्मिन् उपवेशने सामुद्रिक सुरक्षायाः दृढीकरणं, मेक इन इंडिया इत्यस्यान्तर्गतं रक्षा प्रौद्योगिक्याः सहैव रणनीतिक विश्वासस्य च विस्तारः इति प्रमुख विषयेषु गभीर

0: वायुयान संचालन स्वातन्त्र्यम् अथ च अबाधित वैध वाणिज्यम् सुनिश्चेतुम् क्रियमाणाः प्रयासाः केवलम् आर्थिक आवश्यकता एव न अपितु एकम् अनिवार्यम् रणनीतिक दायित्वमपि अस्ति। सः प्रतिपादितवान् यत् हिन्द महासागरस्य प्रशान्त महासागरस्य च सुरक्षा परस्परं दृढतया संलग्ना वर्तते। मन्त्रिणा स्पष्टीकृतं यत् भारतस्य महासागरीय दृष्टौ सहैव जापानस्य मुक्त एवं प्रकट हिन्द प्रशान्त उपक्रमे च निकट समन्वयः सम्प्रति पूर्वस्मादपि अधिकम् आवश्यकं जातम्।
1: हम यह दोहराते हैं कि कठिन समय में भारत किसी भी जरूरी असिस्टेंस, रिलीफ और सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित है। हमारे दोनों देशों के संबंध साझे लोकतांत्रिक मूल्यों, परस्पर सम्मान और एक पुराने सिविलाइज्ड कनेक्ट पर आधारित हैं। अगले वर्ष हम अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस के 75 ईयर्स मनाएंगे और इन वर्षों के दौरान हमारी यह दोस्ती सिर्फ हमारे दोनों देशों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्टेबिलिटी, रेजिलियंस और रूल्स बेस्ड ऑर्डर का एक कॉर्नर स्टोन बन गई है।
0: जापानी रक्षा मंत्री कोइजुमी महोदयः कुमामोटो प्रान्ते आगतेन भूकम्पेन प्रभावितान् जनानालक्ष्य भारतेन प्रकटीकृतां संवेदनां प्रशंसितवान्। सः जापानी सामुद्रिक आत्मरक्षाबलस्य पोते दुरापन्नायाम् आपत्कालीन चिकित्सा स्थितौ भारतस्य नौसेनायाः सहायतायै कार्तज्ञं प्राकटयत्। अस्य वर्षस्य जुलाई मासे द्वयोः देशयोः शीर्षनेतृभ्यां निस्सारितस्य संयुक्त वक्तव्यस्य स्मरणं कुर्वन्तौ द्वावपि मन्त्रिणौ मुक्त तथा प्रकट हिन्द प्रशान्त क्षेत्रस्य निर्माणाय रक्षा सहयोगं सुदृढीकर्तुं स्वसंकल्पं पुनरुच्चारितवन्तौ। चेन्नई नगरस्य समीपे महाबलीपुरम नगरे केन्द्रीय गृहमन्त्रिणः अमितशाहस्य अध्यक्षतायां एकत्रिंशत्तमं दक्षिण क्षेत्रीय परिषदुपवेशनं सम्पन्नम्। अस्मिन् उपवेशने मुख्यमन्त्रिणः उच्चाधिकारिणश्च क्षेत्रस्य प्रगति विकास सम्बद्धेषु विषयेषु विस्तृत रूपेण विचार विमर्शम् अकुर्वन्। उपवेशने तमिलनाडु राज्यस्य मुख्यमंत्री जोसेफ विजयः, कर्णाटकस्य मुख्यमंत्री डीके शिवकुमारः, केरलस्य मुख्यमंत्री सतीशनः, तेलंगानायाः उपमुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्कः, सहैव आंध्रप्रदेशस्य मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू इत्येते भागम् अगृह्णन्। एतैः सह पुदुच्चेरी राज्यस्य उपराज्यपालः, अण्डमान निकोबार द्वीप समूहस्य उपराज्यपालः, लक्षद्वीपस्य प्रशासकः अथ च विविध मन्त्रालयानां वरिष्ठाधिकारिणः अपि उपस्थिताः आसन्। उपवेशने उपस्थिताः सदस्याः स्वास्थ्य निधि वितरणम्, आधारभूत संरचना, पर्यावरण संरक्षणम् अथ च क्षेत्रीय सुरक्षा सम्बद्धेषु विषयेषु सहकारी संघीयतायाः महत्वे च बलं प्रदत्तवन्तः। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः वन्दे मातरमिति राष्ट्रिय गीतस्य सम्पूर्णगानस्य स्थाने केवलं पद्यद्वयस्य गानसन्दर्भे कांग्रेस कार्यसमित्याः निर्णयस्य तीव्रां निन्दां कृतवान्। वार्ताहरैः सह संलपन श्रीशाहः अकथयत् यतेषः निर्णयः संसदा निर्मितस्य विधेः प्रत्यक्षम् उल्लङ्घनम् अथ च राष्ट्रविरोधी कृत्यं वर्तते। गृहमन्त्री प्रतिपादितवान् यत् 37-29 शततमे वर्षे कांग्रेसपक्षेण तुष्टीकरणार्थं वन्दे मातरं गीतं भागद्वये विभक्तम्। श्रीशाहः आरोपितवान् यत् राहुलगान्धिनः नेतृत्वे कांग्रेसदलं पुनः एकवारं तुष्टीकरणस्य मार्गम् अनुसरति।
2: मैं देश की जनता को अपील करना चाहता हूं कि एक बार इस देश ने गलती करी थी वंदे मातरम के दो टुकड़े होने देने की और एक गलती के गंभीर परिणाम हमने भुगते हैं। अब देश की जनता एकजुट हो और कांग्रेस पार्टी के इस फैसले के खिलाफ आवाज बुलंद करे कि अब इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी। आजादी के 80 साल के बाद 1937 में जो फैसला कांग्रेस ने किया था, जिसको नरेंद्र मोदी जी ने सुधारा है, उसके सामने का कोई विरोध इस देश की जनता नहीं सहन करेगी।
0: संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ newsonair चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। झारखण्ड उच्चन्यायालयः 11-13 जे

0: यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षायाः अथ च खाद्य सुरक्षा अधिकारी नियुक्तेः निरस्तीकरण सम्बन्धे राज्य सर्वकारस्य अधिसूचनायाम् अग्रिम आदेश पर्यन्तं स्थगनादेशं प्रायच्छत्। न्यायमूर्तिना दीपक रोशनेन याचिकानां श्रवणावसरे स्पष्टीकृतं यत् विधि प्रक्रियां नैसर्गिक न्याय सिद्धान्तांच उल्लंघ्य पूर्वं नियुक्ताः अधिकारिणः पदात् निष्कासयितुं न शक्यन्ते। न्यायालयेन सर्वकारः सहैव झारखण्ड लोकसेवा आयोगः आगामिवादश्रवणाय सितम्बर मासस्य 15 दिनांकं यावत् स्वप्रतिवचनं दातुं आदिष्टौ। जम्मू कश्मीरस्य कठुआ जनपदस्य सीमाक्षेत्रेषु संदिग्ध व्यक्तिनां गमनागमनस्य सूचनां प्राप्य सुरक्षाबलैः अद्य सघनं अन्वेषणाभियानं प्रारब्धम्। आकाशवाण्याः जम्मू संवाददात्र वृत्तानुसारम् एतत् अभियानं उधमपुर कठुआ सीमावर्तिषु बिलावर क्षेत्रस्य वनभागेषु च प्रचालितम्। स्थानीय जनानामनुसारं बुधवासरे चिररात्रौ बिलावर क्षेत्रस्य एकस्मिन् ग्रामे अज्ञात व्यक्तिभिः कस्यचित् गृहस्य द्वारं शब्दापितम्। पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीरे निवसन्तः जनाः सम्पूर्णे क्षेत्रे विरोध प्रदर्शनानि तीव्रीकृतवन्तः। अनेन पाकिस्तानस्य शासन व्यवस्थायाः वास्तविकता पुनः प्रकाशिता। पीओजेके इत्यस्मिन् क्षेत्रे विरोध प्रदर्शनानां विस्तारः निरन्तरं वर्धते, येन इस्लामाबादस्य तत्कथनं निरस्तं भवति यत् अशान्तिः केवलं रावलकोट क्षेत्रे एव सीमिता अस्ति। जीएएसी इत्यनया कार्यसमित्या इस्लामाबादस्य तत् कथनं निराकृत्य कथितं यत् विरोध प्रदर्शनानि अधुना सम्पूर्णे अधिकृत क्षेत्रे प्रसृतानि सन्ति। बैडमिंटन क्रीडायां भारतस्य महिला युगलक क्रीडिके त्रिसा जौली अथ गायत्री गोपी चंदः च नवदिल्ल्यां आयोजितायां बीडब्ल्यूएफ विश्व प्रतिस्पर्धायाः प्रागुपान्त्य चरणे प्रविष्टवत्यौ। इति वार्ताः।
1: बातरी भाषाते उभति आहिछ जुबानीर स्टुडियोर मजियालय। আমাৰ অনুষ্ঠান প্ৰচাৰিত হৈছে মিডিয়াম ৱেভৰ 299.9 মিটাৰ, 1035 কিলোহাৰ্টজ আৰু ডি আৰ এম ফ্ৰিকুৱেঞ্চিৰ 1026 কিলোহাৰ্টজত আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰৰ পৰা। প্ৰিয় শ্ৰোতা, এতিয়া আগবঢ়াইছো বৰষা শৰ্মাৰ দ্বাৰা পৰিৱেশিত দুটি লোকগীত।

0: इन इंडिया के तहत रक्षा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने और आपसी विश्वास बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों मंत्रियों ने समुद्री सुरक्षा सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जापान के कुमामोतो में आए भीषण भूकंप पर भारत की संवेदना और एकजुटता व्यक्त की।
1: हम यह दोहराते हैं कि कठिन समय में भारत किसी भी जरूरी असिस्टेंस, रिलीफ और सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित है। हमारे दोनों देशों के संबंध साझे लोकतांत्रिक मूल्यों, परस्पर सम्मान और एक पुराने सिविलाइज्ड कनेक्ट पर आधारित हैं। अगले वर्ष हम अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस के 75 ईयर्स मनाएंगे और इन वर्षों के दौरान हमारी यह दोस्ती सिर्फ हमारे दोनों देशों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्टेबिलिटी, रेजिलियंस और रूल्स बेस्ड ऑर्डर का एक कॉर्नरस्टोन बन गई है।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज उत्तराखंड के मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में 2024 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवक प्रशिक्षु अधिकारियों के प्रशिक्षण समापन समारोह को संबोधित किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि प्रशासनिक सेवाओं ने देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और जमीनी स्तर पर नीतियों को लागू करने में प्रमुख भूमिका निभाई है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीपीएन के वरिष्ठ नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर आज बांग्लादेश के 23वें राष्ट्रपति चुने गए। 78 वर्षीय नेता ने देश की संसद जातीय संसद में हुए राष्ट्रपति चुनाव में 255 वोट हासिल किए। उन्होंने पूर्व सेना अधिकारी ओली अहमद को हराया जो दक्षिण पंथी बांग्लादेश जमात इस्लामी और नेशनल सिटीजन पार्टी एनसीपी के नेतृत्व वाले 11 दलीय विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार थे। ओली अहमद को 88 वोट प्राप्त हुए। एम्स्टलवीन में महिला हॉकी विश्व कप में इस समय भारत का मुकाबला इंग्लैंड के साथ चल रहा है। ताजा समाचार मिलने तक दोनों ही टीमें गोल रहित बराबरी पर हैं। दिल्ली में बीडब्ल्यूएफ बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद ने महिला डबल्स के अंतिम आठ में जगह बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay. The Supreme Court has formed a 5-member high-powered inquiry committee headed by former top court judge Justice R. Subhash Reddy to examine allegations of excessive use of force by police authorities and security personnel against student protesters in Delhi recently and violence against police personnel. A bench of Chief Justice Surya Kant and Justices Joy Mallya Bagchi and V. Mohan said the committee would also comprise former Punjab and Haryana High Court Chief Justice Ravi Shankar Jha, former Delhi High Court Judge Justice Shalinder Kaur, former CBI Director Rishi Kumar Shukla, and retired Meghalaya DGP L.R. Bishnoi. The top court clarified that as a matter of abundant caution, the inquiry undertaken by a high-powered inquiry committee should not be a one-time exercise. It asked the committee to undertake a continuous and periodic assessment of the issues and shall submit its interim findings periodically. The Jharkhand High Court today stayed until further orders the state government's decision to cancel appointments made through the 11th to 13th JPSC Civil Services Examination and the Food Safety Officer recruitment. Justice Deepak Roshan passed the order while hearing three separate petitions challenging the government's Tuesday notification cancelling the examinations and appointments. The court directed that the selected candidates be reinstated, observing that they cannot be removed without following due process and the principles of natural justice. The court sought a response from the state government and the Jharkhand Public Service Commission JPSC and fixed 15th of September for the next hearing. The India-Japan Defence Ministers meeting was held in New Delhi today. Defence Minister Rajnath Singh and his Japanese counterpart Shinjiro Koizumi co-chaired the meeting. The discussions focus on deepening maritime security, making India defense, technology, and expanding strategic trust. Both ministers signed a memorandum of arrangement on maritime security cooperation. Prime Minister Narendra Modi has said that India's BRICS chairship is advancing sustainable development through people-centric climate action. Sharing an article written by Union Environment, Forest and Climate Change Minister Bhupendra Yadav, the Prime Minister said that India's progress in reducing emissions intensity and expanding non-fossil energy capacity reinforces a sustainable and green approach. Mr. Modi also highlighted

0: ভজনৰ অনুষ্ঠানটি ইমানতে অন্ত পৰিল। শ্ৰোতাসকলে শুনি আছে আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। খন্তেক পিছতে অৰ্থাৎ 8:45 সমাচাৰ সন্ধিয়া, 9:00 নিউজ এট 9 আৰু 9:15 স্পটলাইট দিল্লী কেন্দ্ৰৰ জৰিয়তে আপোনালোকক ৰিলে কৰি শুনোৱা হ'ব। এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया, मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की एक पीठ स्थापित करने का निर्णय लिया। सर्वोच्च न्यायालय ने देश भर में छात्र प्रदर्शनों के दौरान हिंसा की जांच के लिए 5 सदस्यीय समिति गठित की। झारखंड उच्च न्यायालय ने 11वीं से 13वीं झारखंड लोक सेवा आयोग और खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षाएं रद्द करने के राज्य सरकार के निर्णय पर रोक लगाई। सरकार ने 31 अक्टूबर तक 10 लाख टन कच्ची चीनी के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को वर्ष 2047 तक समावेशी और विश्व स्तरीय शहर बनाने के लिए मास्टर प्लान जारी किया। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर बांग्लादेश के 23वें राष्ट्रपति निर्वाचित। और महिला हॉकी विश्व कप में इंग्लैंड के साथ गोल रहित ड्रॉ खेलने के बाद भारत ने दूसरे दौर में प्रवेश किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की एक पीठ स्थापित करने को स्वीकृति दे दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज सोशल मीडिया के माध्यम से इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से लद्दाख के दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों के लिए न्याय तक पहुंच आसान हो जाएगी। श्री शाह ने कहा कि सरकार लद्दाख के सर्वांगीण विकास और संवैधानिक सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व न्यायाधीश आर सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की है। हमारे संवाददाता ने बताया है, ये समिति पिछले महीने नई दिल्ली के जंतर मंतर और देश की अन्य जगहों में विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के आरोपों की स्वतंत्र जांच करेगी।
2: समिति में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा, दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश शैलेंद्र कौर, सीबीआई के पूर्व निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला और मेघालय के सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक एलआर बिश्नोई भी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायाधीश जॉय माल्या बागची और न्यायाधीश वी मोहना की खंडपीठ ने कहा कि उच्च स्तरीय जांच समिति कुछ मुद्दों पर प्राथमिकता के आधार पर काम करे, जिनमें सबसे अहम मुद्दा महिला प्रदर्शनकारियों के खिलाफ लक्षित हिंसा और छेड़छाड़ की कथित घटनाओं से जुड़ा है। अदालत ने समिति से कहा कि वो मुद्दों का लगातार और समय समय पर आकलन करे और अपनी अंतरिम रिपोर्ट समय पर सौंपे। समाचार कक्ष से मुनीश शर्मा।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने विद्यार्थियों के लिए सीबीएसई की त्रिभाषा नीति के कई पहलुओं पर सवाल उठाए हैं। इनमें पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों की उपलब्धता, विद्यार्थियों पर बोझ और स्कूलों में इस नीति को लागू करने का तरीका शामिल है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायाधीश न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए सीबीएसई की त्रिभाषा नीति को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। झारखंड उच्च न्यायालय ने आज 11वीं से 13वीं झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा और खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा के अंतर्गत नियुक्तियों को रद्द करने के झारखंड सरकार के निर्णय पर रोक लगा दी है। न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक रोशन ने सरकार की परीक्षा रद्द करने की अधिसूचना को चुनौती देने वाली 3 अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया। एक रिपोर्ट।
3: न्यायालय ने निर्देश दिया कि चुने गए उम्मीदवारों को

0: हल किया जाए। न्यायालय ने कहा कि उचित प्रक्रिया और न्याय के सिद्धांतों का पालन किए बिना उन्हें हटाया नहीं जा सकता। न्यायालय ने राज्य सरकार और झारखंड लोक सेवा आयोग से जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी। दो याचिकाएं 11वीं से 13वीं झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा और नियुक्तियों को रद्द करने को चुनौती देती है, जबकि तीसरी याचिका खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा से संबंधित है। याचिकाकर्ताओं के अनुसार 11वीं से 13वीं झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा के जरिए चुने गए 342 उम्मीदवार अभी नौकरी कर रहे हैं। झारखंड सरकार ने 22 परीक्षाओं को रद्द करने, 6 परीक्षा प्रक्रियाओं को रोकने और 17 परीक्षाओं को जांच के दायरे में लाने की अधिसूचना जारी की थी। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक में देश के विकास में दक्षिण भारत के योगदान की सराहना की है। तमिलनाडु के महाबलीपुरम में बैठक को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि दक्षिण भारत ने देश के सूचना प्रौद्योगिकी, ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल्स और अवसंरचना विकास के सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि यही कारण है कि दक्षिण में भारी मात्रा में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भी आया है।
2: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि दक्षिण भारत की संपूर्ण विकास यात्रा 3 स्तंभ, उच्च साक्षरता दर, प्रशिक्षित मानव संसाधन और गहरे समुद्र के उपयोग में तकनीकी विशेषज्ञता पर टिकी है। इन्हीं 3 स्तंभों ने दक्षिण भारत को देश के विकास में सबसे बड़ा योगदानकर्ता बनाया है। उन्होंने कहा कि 2014 से क्षेत्रीय परिषद को एक सार्थक मंच में बदलने के प्रयास किए जा रहे हैं। श्री शाह ने बताया कि उत्तर भारत में नदी जल बंटवारे से संबंधित 8 मुद्दों में से 5 मुद्दे ब्रिटिश काल से पहले से ही चले आ रहे थे। उन्होंने कहा कि ब्रह्मपुत्र से लेकर कावेरी और गोदावरी तक प्रमुख नदियों को जोड़ने से यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि भारत को अगले 100 वर्षों तक पानी की कमी का सामना न करना पड़े। चेन्नई से आर चिदम्बर नाथन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने इस वर्ष 31 अक्टूबर तक 10 लाख मीट्रिक टन कच्ची चीनी के शुल्क रहित आयात को अनुमति दे दी है। महानिदेशक विदेश व्यापार ने आज जारी एक सूचना में कहा कि कुछ शर्तों के साथ 10 लाख मीट्रिक टन कच्ची चीनी का शुल्क के बगैर आयात किया जा सकेगा। ये फैसला त्योहारों के मौसम से पहले लिया गया है, जब आम तौर पर चीनी की मांग बढ़ जाती है। घरेलू बाजार में आपूर्ति को लेकर चिंता के बाद ये निर्णय लिया गया। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश है। सरकार ने आज दिल्ली मास्टर प्लान 2047 का अनावरण किया। ये प्लान दिल्ली को पर्यावरण अनुकूल और समावेशी राजधानी बनाने के लिए दीर्घकालिक ढांचा प्रदान करता है। वर्ष 2047 तक विकसित भारत की परिकल्पना के अनुरूप दिल्ली मास्टर प्लान का उद्देश्य राजधानी को विश्व स्तरीय, समावेशी और आर्थिक रूप से जीवंत शहर बनाना है।
3: दिल्ली मास्टर प्लान 2047 में दो तरीके अपनाए गए हैं। मौजूदा विकसित क्षेत्रों के लिए क्षेत्र आधारित पुनर्विकास और नए विकसित होने वाले क्षेत्रों के लिए सड़क मार्ग आधारित योजना। मौजूदा क्षेत्रों में परिवहन केंद्रित विकास, मिश्रित उपयोग वाली जगहों और बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने पर ध्यान दिया जाएगा। वहीं नए क्षेत्रों में जुड़े हुए सड़क नेटवर्क विकसित किए जाएंगे। इसके लिए लैंड पूलिंग और कम घनत्व वाले क्षेत्रों का उपयोग किया जाएगा। इन दोनों तरीकों से जमीन का बेहतर उपयोग, शहर के अंदर और दूसरे शहरों से बेहतर संपर्क तथा टिकाऊ और व्यवस्थित विकास सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। इस योजना में लोगों को शहरी विकास के केंद्र में रखा गया है। इसमें खास तौर पर युवाओं, महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों की जरूरतों और उनकी आकांक्षाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सरकार ने दिल्ली मास्टर प्लान 2047 का आज अनावरण किया। ये प्लान दिल्ली को पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए तैयार किया गया है। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आने वाले वर्षों में राष्ट्रीय राजधानी में लगभग 30 से 40 लाख नए फ्लैट जोड़े जाएंगे। इसका उद्देश्य शहर की विशाल आबादी की आवास मांग पूरा करना है। भारत और जापान ने रक्षा सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। नई दिल्ली में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी की बैठक में यह निर्णय लिया गया। दोनों देशों के बीच समुद्री सुरक्षा सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए गए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जापान के कुमामोतो में आए भीषण भूकंप पर भारत की संवेदना और एकजुटता व्यक्त की।
4: दोनों देशों के संबंध साझे लोकतांत्रिक मूल्यों, परस्पर सम्मान और एक पुराने सिविलाइज्ड कनेक्ट पर आधारित हैं। अगले वर्ष हम अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस के 75 ईयर्स मनाएंगे और इन वर्षों के दौरान हमारी यह दोस्ती सिर्फ हमारे दोनों

0: देशों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्टेबिलिटी, रेजिलियंस और रूल्स बेस्ड ऑर्डर का एक कॉर्नर स्टोन बन गई है।
1: श्री कोइजुमी ने कुमामोतो में भूकंप से प्रभावित लोगों के प्रति भारत की संवेदना पर आभार व्यक्त किया। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लागू कर रहा है। इसका उद्देश्य देश में ग्रीन हाइड्रोजन का एक मजबूत तंत्र बनाना है और भारत को इसके उत्पादन तथा निर्यात के लिए एक संभावित ग्लोबल हब के तौर पर स्थापित करना है। इस मिशन को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनवरी 2023 में स्वीकृति दी थी। इसके लिए 2029-30 तक की अवधि के लिए शुरुआती तौर पर 19,744 करोड़ रुपए का बजट रखा गया था। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में एनटीपीसी नवीकरणीय ऊर्जा के कार्यकारी निदेशक डीएमआर पांडा ने बताया कि अभी हाइड्रोजन से चलने वाली 5 बसों में हाइड्रोजन ईंधन भरा जा रहा है और हर बस एक बार फुल टैंक भरने पर 720 किलोमीटर तक चल सकती है। उन्होंने कहा कि हाइड्रोजन बनाने में भूजल यानी ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल नहीं होता।
2: हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलिसिस से बनता है एंड जिस चीज के लिए पानी चाहिए बहुत ज्यादा। वाटर रिसोर्स को कंजर्व करने के लिए हमने जो ट्रीटेड सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट निकलता है पानी, उसी को फर्दर ट्रीटमेंट करके उसी हाइड्रोजन से बसेस चला रहे हैं। बनाने का टाइम में कोई प्रदूषण नहीं, वाटर कंजर्व कर रहे हैं और जो बसेस चलते हैं एग्जॉस्ट से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बल्कि वाटर वेपर निकलता है।
1: भारत कल पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे। बैठक का विषय लचीले भविष्य के लिए नवाचार, सहयोग और परिवर्तन ICT है। ये आयोजन ब्रिक्स सदस्य देशों को उभरती प्रौद्योगिकियों, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, भविष्य के नेटवर्क, साइबर सुरक्षा, क्षमता निर्माण और समावेशी डिजिटल कनेक्टिविटी पर विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर आज बांग्लादेश के 23वें राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। 78 वर्षीय नेता ने देश की संसद जाति संसद में हुए राष्ट्रपति चुनाव में 255 वोट हासिल किए। उन्होंने पूर्व सेना अधिकारी ओली अहमद को हराया। ओली दक्षिणपंथी बांग्लादेश जमाते इस्लामी और नेशनल सिटीजन पार्टी के नेतृत्व वाले 11 दलीय विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार थे। ओली अहमद को 88 वोट मिले। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शन लगातार बढ़ता जा रहा है। इससे पाकिस्तान का ये दावा झूठा साबित हो रहा है कि अशांति केवल रावलकोट तक ही सीमित है। संयुक्त अवामी कार्रवाई समिति JAAC ने पाकिस्तान के इस दावे को खारिज करते हुए कहा है कि विरोध प्रदर्शन अब पूरे अधिकृत क्षेत्र में फैल चुके हैं। कोलंबिया ने 10 अगस्त को आए भूकंप से प्रभावित क्षेत्रों में 30 दिन के लिए आर्थिक, सामाजिक और पारिस्थितिक आपातकाल की घोषणा की है। राष्ट्रपति अलेबाल्डो डे ला एस्प्रियला ने बोगोटा में कैबिनेट बैठक के बाद इस आदेश पर हस्ताक्षर किए। कोलंबिया की राष्ट्रीय आपदा जोखिम प्रबंधन इकाई ने बताया कि आज सवेरे तक 7.4 तीव्रता के भूकंप में 319 लोगों की मौत हो गई जबकि 4,469 लोग घायल हैं और 260 लोग लापता हैं। भारत में नेपाली गोरखा समुदाय ने आज नेपाली भाषा को संवैधानिक मान्यता मिलने की 35वीं वर्षगांठ मनाई। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने गोरखा समुदाय को बधाई देते हुए कहा कि भारत एक बहुभाषी देश है। उन्होंने कहा कि विविधता में एकता का बंधन हर भारतीय को मजबूती से जोड़ता है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग पहाड़ तथा तराई डुअर्स में आज 100 से अधिक स्थानों पर नेपाली भाषा मान्यता दिवस भव्य रूप से हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। हजारों युवा, दोनों पुरुष महिला तथा प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने पारंपरिक परिधानों में शोभा यात्रा, साहित्यिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लिया। रोशनी छेत्री, आकाशवाणी समाचार, कश्यंग।
1: और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
4: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक आज कई दिन बाद बढ़त के साथ बंद हुए जिसमें सभी सेक्टर में व्यापक खरीदारी देखी गई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 0.82% यानी 628 अंक बढ़कर 77,538 पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी 0.64% यानी 154 अंक ऊपर चढ़कर 24,232 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 5 पैसे मजबूत होकर 95 रुपए 71 पैसे पर बंद हुआ।
1: एमिस्टल फेन में एफआईएच